एफएम बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 21 अगस्त 2026। इस समय सुबह के 5:57 होने वाले हैं। अब आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों के बाद हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीकों में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर बल दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सके। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री, वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इसकी जानकारी दी। श्री शाह ने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर की चुनौती प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज कर दिया है। एनटीए ने बताया कि यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें जेईई मेन, नीट या यूजीसी नेट परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। और खेलों में नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। पुरुष डबल्स की जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का मुकाबला चीन के तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई खेंग और वांग चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शू शियान से होगा। वहीं हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज अम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। यह मैच

0: भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी में समाचार अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। आइए आप और हम मिलकर करते हैं अपनी प्रातःकालीन सभा का आरंभ, भक्तिभाव से ओतप्रोत होकर, अपने राष्ट्र के प्रति असीम श्रद्धा में डूबकर, आराधना की भक्ति पंक्तियों से, और सुनते हैं ये देश वंदना समूह स्वर में।

इस देश वंदना के बाद आइए शीश झुकाते हैं उस परम सत्ता के सन्मुख जिनकी दिव्य कृपा से ये सारा संसार चलता है। सुनते हैं ये भक्ति रचना किशोरी अमोनकर के स्वर में।

और अब आइए आराधना की अगली पुष्पांजलि अर्पित करते हैं इस भजन के रूप में, और आवाज है चित्रा सिंह की, लीजिए सुनिए।

जीवन की अशांति, बेचैनी और अधीरता, इन सब का एक ही हल है, वो है प्रभु का सिमरन। प्रभु का सिमरन मनुष्य को अधोगति से ऊर्ध्वगति की ओर ले जाता है। आइए हम भी प्रभु का सिमरन करें इस भजन के द्वारा। स्वर है सुधा मल्होत्रा का।

और अब आइए आराधना के भक्ति पुष्प अर्पित करते हैं ईश्वर के श्री चरणों में, और सुनते हैं सुमन कल्याणपुर का गाया ये भजन।

और इसी भजन के बाद आराधना कार्यक्रम का ये अंक पूरा होता है। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 MHz पर। लीजिए सुनिए कार्यक्रम खेती की बात। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे सामयिक सुझाव ज्वार के प्रमुख रोग एवं नियंत्रण।

0: चित्रण वाचन स्वर अभिनव गौराहा का है।
1: किसान भाई हो, राम राम, जय जोहार। खेती के बात में आज हम चर्चा करबो ज्वार के फसल में लगे वाले प्रमुख रोग और ओकर से बचाव के आसान उपाय के बारे में। ज्वार हमर बर अनाज के संग संग पशु मन बर महत्वपूर्ण काम आते, लेकिन कई पैत मौसम में नमी, लगातार पानी बरसना, खेत में ज़्यादा पानी, संक्रमित बीज और फसल के उचित देखभाल नहीं होने से कई पैत ज्वार में आनी बानी के रोग लग जाते। समय में पहचान और नियंत्रण नहीं करे जाए तो उत्पादन में बड़ कमी देखे जा सकते है। तो सबले पहली रोग के बात करबो झुलसा रोग। ज्वार में झुलसा रोग होए में पत्ती में छोट छोट भूरवा या लाल भूरवा रंग के धब्बा बन जाते। धीरे धीरे ये धब्बा मन बड़े होके पूरा पत्ती ला प्रभावित कर सकत है। ज़्यादा प्रकोप होते तो पत्ती सूखे लगते और पौधा के बढ़वार हा प्रभावित होते। एकर बचाव बर स्वस्थ और रोग मुक्त बीज के उपयोग करना चाहिए। खेत में बहुत ज़्यादा नमी झन रहे और फसल में संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरक के प्रयोग कमल करना है। रोग दिखाई देते तक कृषि विशेषज्ञ के सलाह से अनुशंसित फफूंदनाशी के उपयोग करे जा सकते फसल में। दूसर रोग के बात करी ज्वार के डाउनी मिल्ड्यू या मृदु रोमिल आसिता रोग। ये रोग विशेष रूप से नमी, ज़्यादा नमी और लगातार पानी वाले मौसम में तेजी से फैलते। संक्रमित पौधा के पत्ती में हल्का प्यूरा या सफ़ेद धारी दिखाई दे सकत है। पत्ती के निचला सतह में सफ़ेद या धूसर फफूंद जैसे वृद्धि दिखाई देते। गंभीर अवस्था में पौधा कमजोर हो जाते और उखर बढ़वार रुक सकत है। ये रोग से बचे बर रोग मुक्त बीज के प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण है। खेत में जल निकास के अच्छा व्यवस्था रखना है। संक्रमित पौधा दिखाई देते तौला निकाल के खेत से बाहर करना है ताकि दूसर पौधा में रोग झन संचरे। तीसर रोग के बात करी ज्वार के कंडुआ या स्मट रोग। कंडुआ रोग ज्वार में सबले ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते। ये रोग में सामान्य दाना के जगह करिया रंग के पाउडर जैसन बीजाणु मन के गुच्छा दिखाई देते। कुछ प्रकार के कंडुआ रोग में बाली के दाना पूरा तरह से नष्ट हो जाते। ये रोग से बचाव बर प्रमाणित और स्वस्थ बीज के इस्तेमाल करना चाहिए हमला। बीज उपचार करके बुआई करना कोनो भी फसल पर बड़ा लाभदायक होते। रोगग्रस्त बालीला समय रहते सावधानी से तोड़ के खेत से बाहर करके नष्ट कर देना चाहिए। अगला रोग के बात करबो ज्वार के एंथ्रेक्नोज या पत्ती धब्बा रोग। ये रोग में पत्ती और तना में छोटे छोटे लाल या भूरवा गहरा रंग के धब्बा दिखाई देते। धब्बा मन धीरे धीरे बढ़ सकते है और पत्ती मन सूखे लगते। रोग के प्रकोप ज़्यादा होए में पौधा के प्रकाश संश्लेषण क्षमता कम हो जाते और उत्पादन घलो प्रभावित होते। रोकथाम बर फसल अवशेष ला खेत में सड़े बर नहीं छोड़ना है। फसल चक्र अपनाना है और स्वस्थ बीज के उपयोग हमला खेत में करना है। जरूरत पड़े तो कृषि विभाग या कृषि विशेषज्ञ के सलाह से उपयुक्त फफूंदी नाशक के उपयोग हमन कर सकते हैं। किसान भाई हो, ज्वार में रोग नियंत्रण बर केवल दवाई के छिड़काव ही समाधान नहीं है। सबले पहली रोग के सही पहचान करना जरूरी है। बुआई बर हमेशा प्रमाणित और स्वस्थ बीज लेना है। बीज ला उपचार करके ही बुआई करना है। खेत में पानी जमा होए नहीं देना है और उचित जल निकास की व्यवस्था रखना है। खेत के नियमित निरीक्षण और रोगग्रस्त पौधा ला समय में अलग करके नष्ट कर देना है। एक ही खेत में लगातार ज्वार की खेती करे के बजाय फसल चक्र अपनाना भी रोग मन ला कम करे में मदद करते। संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरक देना है और खेत में अनावश्यक रूप से ज़्यादा यूरिया के उपयोग नहीं करना है। सबले महत्वपूर्ण बात, बिना रोग के सही पहचान के कोनो भी फफूंदनाशक दवाई के अंधाधुन उपयोग नहीं करना है। दवा के मात्रा और छिड़काव के समय हमेशा कृषि विशेषज्ञ, कृषि विभाग या दवाई के लेबल में दिए गए अनुशंसा के अनुसार ही करना चाहिए। राम राम, जय जोहार।
0: खेती की बात कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सामयिक सुझाव ज्वार के प्रमुख रोग एवं नियंत्रण, वाचन स्वर अभिनव गौराहा का था। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर।

0: सुबह के 6:35 होने वाले हैं। आइए अब सुनते हैं रामचरित मानस गान। गायक कलाकार हैं भूपेंद्र सिंह और संगीत संयोजन सतीश भाटिया का है।
1: वन सेवन

अनुज लक्ष्मण तथा भार्या सीता के साथ पर्णकुटी में निवास करते हुए श्रीराम इस प्रकार सुशोभित हैं, जिस प्रकार इंद्र अपनी पत्नी शची तथा पुत्र जयंत के साथ अमरावती में सुखपूर्वक निवास करते हैं। किंतु उधर अयोध्या पर आसन्न शोक का आभास पशु पक्षियों की उस व्याकुलता से मिलता है जो निषाद राजगुह ने वापस आकर देखा। रथ के साथ सुमंत्र को आकुल देखकर निषाद राजगुह को अत्यंत दुख हुआ। निषाद राज को अकेले लौट आया देख सुमंत्र हा राम हा लक्ष्मण हा सीते कहकर धरती पर गिर पड़े। रथ में जुते अश्व दक्षिण दिशा की ओर देख देख कर जिधर उन्होंने राम को जाते देखा था जैसे करुण हिनहिनाहट में अपनी व्यथा व्यक्त कर रहे हैं। चारा पानी छोड़ उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। निषाद राज ने सुमंत्र को पंडित और ज्ञानी संबोधित करके समझाया, अब विषाद छोड़ विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। रथ पर बिठाए जाने के बाद भी शोक से शिथिल हुए सुमंत्र से रथ हांका नहीं जाता। घोड़ों को शोकातुर देख निषाद राज भी विह्वल हो गए। उन्होंने अपने चार सेवक सारथी के साथ कर दिए जो रथ को अयोध्या की ओर ले चले।

अभी आप रामचरितमानस गान सुन रहे थे। गायक कलाकार थे भूपेंद्र सिंह और संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 MHz पर। सुबह के 6:45 हुए हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है फ्लैगशिप कार्यक्रम नवविहान। आज नवविहान कार्यक्रम के इस अंक में हम चर्चा करेंगे स्मार्ट सिटीज मिशन की। स्मार्ट सिटीज मिशन यानी SCM एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे जून 2015 में स्मार्ट सॉल्यूशंस के अनुप्रयोग के माध्यम से नागरिकों को जीवन की गुणवत्ता एवं स्वच्छ तथा संवहनीय वातावरण प्रदान करने के लिए 100 शहरों के आवश्यक बुनियादी ढांचे को बदलने के लिए प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य सतत और समावेशी विकास के माध्यम से नागरिकों के जीवन को सुविधापूर्ण बनाना था। इस मिशन के मुख्य मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो ये इस प्रकार से हैं: मुख्य बुनियादी ढांचा और जीवन की गुणवत्ता प्रदान करना, स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण प्रदान करना, सतत और समावेशी विकास, स्मार्ट समाधानों का अनुप्रयोग करना, सघन क्षेत्र का विकास करना और अनुकरणीय मॉडल बनाना। स्मार्ट सिटी मिशन के घटक हैं क्षेत्र आधारित विकास। इसके अंतर्गत उन विकास कार्यों को जैसे बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में सुधार के लिए मौजूदा शहरी क्षेत्रों का नवीनीकरण, जैसे भिंडी बाजार मुंबई में रेट्रोफिटिंग के कार्य, मौजूदा क्षेत्रों को अधिक उपयोगी और टिकाऊ बनाने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना, जैसे क्षेत्र विकास अहमदाबाद में ग्रीनफील्ड परियोजनाएं लागू करना, जैसे स्थिरता और स्मार्ट प्रौद्योगिकियों पर ध्यान देने के साथ नए शहरी क्षेत्रों का विकास करना, जैसे न्यू टाउन कोलकाता, नया रायपुर, गिफ्ट सिटी। पैन सिटी समाधान के अंतर्गत ई गवर्नेंस, अपशिष्ट प्रबंधन, जल प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन, शहरी गतिशीलता एवं कौशल विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी समाधानों का कार्यान्वयन भी पैन सिटी समाधान के अन्य घटक हैं। श्रोताओं, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए शहरी पहल के अंतर्गत शहरी कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल अमृत मिशन, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, जलवायु स्मार्ट शहर आकलन रूपरेखा 2.0, ट्यूलिप द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम उल्लेखनीय हैं।

संक्षेप में, स्मार्ट सिटीज मिशन जून 2015 में लॉन्च किया गया योजना है, जिसका उद्देश्य 5 वर्षों में स्मार्ट सिटीज के विकास के लिए 100 शहरों का चयन करके वैश्विक परिवर्तनों को अनुकूलित करना है। स्मार्ट सिटी क्या है, आइए इसे समझते हैं। वर्ष 2009 के वित्तीय संकट के बाद स्मार्ट सिटी शब्द को प्रमुखता मिली। ये उन्नत आईसीटी एकीकरण के साथ डिजाइन किए गए शहरों का जिक्र करता है, जिनकी तुलना अक्सर नई सिलिकॉन वैली से की जाती है। हालांकि भारतीय संदर्भ में एक स्मार्ट सिटी वह होगी जो सुशासन के सिद्धांतों को बढ़ावा देते हुए अपने आकांक्षाओं और चुनौतियों को स्थायी तरीके से पूरा करने के लिए विवेकपूर्ण योजना बनाती है। स्मार्ट सिटी वह है जिसमें बुनियादी ढांचे और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट समाधानों का उपयोग किया जाता है, जो क्षेत्र के आधारित विकास पर निर्भर होता है। अभी आप सुन रहे थे फ्लैगशिप कार्यक्रम नवविहान, यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

पहले सुनिए इस सभा के शेष कार्यक्रमों की जानकारी। आज सुबह कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होंगे रोज की भांति 7:05 पर। गांधी चर्चा का प्रसारण समय रहेगा 7:20 पर। यादों के झरोखे से कार्यक्रम सुनिएगा 7:30 पर। 8:30 पर इनसे मिलिए कार्यक्रम हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे। गुंजेश्वर गांव के कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे 10:00, जिसमें पारंपरिक भोजली गीत सुनिएगा केजाबाई, निर्णेजक, कौशल्याबाई, परमेश्वरी, प्रियंका साहू और साथियों के स्वर में, एवं पंडवानी सुनिएगा तिजनबाई और साथियों के स्वर में। आपकी पसंद कार्यक्रम लेकर हम उपस्थित होंगे 10:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का प्रसारण समय रहेगा दिन में 11:00। विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे दिन में 11:30 से।

श्रोताओं, आज संध्या 5:35 पर युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युवा जगत में आज की बात का विषय रहेगा वन्य जीव जंतुओं के प्रति हमारा दायित्व। इसके अलावा क्रम रहेगा कौशल विकास और उद्यमिता। ग्रामीण श्रोताओं के कार्यक्रम ग्राम सभा में संध्या 7:30 पर बेरा के गोट का विषय रहेगा ई नेम और किसान मोबाइल ऐप, डिजिटल कृषि की ओर बढ़ता देश। इसके अलावा फोन इन कार्यक्रम के अंतर्गत धान रोपाई, व्यासी में खरपतवार नियंत्रण विषय पर कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर गीत शर्मा से फोन पर बातचीत की रिकॉर्डिंग हमारे श्रोता सुन सकते हैं।

रजनीगंधा कार्यक्रम हम पेश करेंगे रात 8:15 पर। विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे रात 9:15 से।

श्रोताओं, ईमेल करें। गीत सुने का प्रसारण समय रहेगा शाम 6:20 पर और संध्या 7:00। हम अपने श्रोताओं को बता दें, ग्रामीण श्रोताओं के कार्यक्रम ग्राम सभा में आज संध्या 7:30 पर बेरा के गुट का विषय रहेगा ई नेम और किसान मोबाइल ऐप, डिजिटल कृषि की ओर बढ़ता देश। इसके अलावा फोन कार्यक्रम के अंतर्गत धान रोपाई, व्यासी में खरपतवार नियंत्रण विषय पर कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर गीत शर्मा से फोन पर बातचीत की रिकॉर्डिंग हमारे श्रोता सुन सकते हैं।

0: कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही क्षणों के बाद संस्कृत में और 7 हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल आवश्यक है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीके में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर बल दिया, जिससे नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सकें। उन्होंने रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी बल दिया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को न्याय और मिलने वाली कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर की चुनौती प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज किया। एनटीए ने कहा कि ये एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें जेईई मेन, नीट या यूजीसी नेट परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थाई उत्तर में मौजूदा गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में सोमालिया के पुटलैंड तट के पास समुद्री लुटेरों ने कैमरून के ध्वज वाले एक कार्गो शिप पर कब्जा कर लिया। लुटुफ नामक जहाज को सोमवार को कब्जे में ले लिया गया और नुगाल तट की ओर ले जाया गया। इस जहाज पर मोगादिशु में एक सैनिक प्रशिक्षण केंद्र के लिए तुर्की के हथियार, संचार और सैटेलाइट उपकरण लदे हुए थे। चालक दल में 6 भारतीय सदस्य सवार थे। हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज अम्स्टलफेन में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इधर नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: समाचारों का अनुप्रसारण अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे थे। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है।

0: चारों ओर से हरी भरी सजी हुई धरती, हरियाली का नृत्य चारों ओर है। और ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि पर्यावरण ने, प्रकृति ने अपने सुंदरतम रूप को प्राप्त किया है। श्रोताओं, यह भी सही है पूरी तरह से कि जब तक वन नहीं होंगे तब तक हमारा जीवन सुखमय नहीं हो सकता। वन है तो हम हैं, क्योंकि वन ही हमें प्राणदायिनी गैस ऑक्सीजन प्रदान करती है। और वन का अभिन्न हिस्सा है वन्य जीव, जिनके बिना वन अधूरा है। इन्हीं वन्य जीवों का संरक्षण करने के लिए 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया। हम इस पर चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले सुनते हैं यातायात पुलिस बिलासपुर द्वारा प्राप्त ट्रैफिक अपडेट्स।
1: नमस्कार, नई सुबह के साथ नए संदेशों के साथ आप सुन रहे हैं ट्रैफिक अपडेट्स आप बिलासपुर उमा शंकर पांडे के साथ। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले के शहर या गांव, सभी जगह की प्रत्येक सड़कों में सभी प्रकार के वाहनों का स्वतंत्र आवागमन बना हुआ है। कहीं कोई जाम नहीं, कहीं कोई यातायात रुकावट नहीं, अर्थात संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। आप सभी से अनुरोध है सुगम यात्रा के लिए, सुरक्षित यात्रा के लिए भूल कर भी यातायात के नियमों के विपरीत ना जाएं। मित्रों, सावन माह के साथ ही अब अनेकों त्योहार पर्व प्रारंभ हो चुके हैं। निकट भविष्य में रक्षाबंधन का पर्व है, फिर श्री कृष्ण जन्माष्टमी, फिर महिलाओं का पर्व तीजा या हरदाल का, फिर पोला, श्री गणेश उत्सव और नवरात्रि पर्व आदि आदि क्रमशः आ रहे हैं। इन पर्व के कारण बाजारों में भी रौनकता बढ़ जाती है। स्थायी दुकानें तो अपनी जगह रहती हैं, किंतु अस्थायी दुकानदार शहरी यातायात व्यवस्था की दुर्दशा कर देते हैं। हाल ही में राखी का पर्व है, सड़क के किनारे टेंट लगाकर राखी आदि बिक्री करने वाले दुकानदारों में इन दिनों चौक चौराहों में बांस बल्ली लगाने की होड़ मची है। सभी बड़ी निर्दयता के साथ अधिक से अधिक जमीन घेरने की तैयारी कर रहे हैं। प्रायः हर चौक चौराहों या सड़क के किनारे ये दुकानदार सड़कों तक घेर कर दुकान बना रहे हैं। पर्व के दौरान जब सड़कों में लोगों की संख्या अधिक होती है, तब इन्हीं दुकानों के कारण यातायात बुरी तरह प्रभावित होती है, क्योंकि सड़कों के ऊपर तक इनकी दुकानें होती हैं। आधी सड़क में ग्राहकों के वाहन होते हैं और यही स्थिति सड़क के दोनों तरफ की होती है। परिणाम शहर का भागता दौड़ता यातायात रेंगता दिखाई देता है। लोग परेशान होते हैं। अतः ऐसे सभी दुकानदारों से अनुरोध है सड़कों में अव्यवस्था फैलाने या यातायात बाधित करने की तैयारी न करें, क्योंकि आजकल में नगर निगम की कार्रवाई होने ही वाली है, तब आपको अधिक क्षति का सामना करना पड़ सकता है। अतः सचेत रहें हमेशा।

0: कि यात्रा नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा शुभ हो।
1: श्रोताओं, ये थी ट्रैफिक अपडेट्स और अब आइए अपनी चर्चा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के बारे में करते हैं। श्रोताओं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ने अपनी स्थापना के 51 वर्ष पूरे कर लिए हैं और इन वर्षों में ये कई लुप्त प्राय वन्य प्रजातियों की रक्षा करने में सफल रहा है। इस अधिनियम ने देश की विभिन्न वन्य जीवों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइए इसकी स्थापना के वर्षगांठ पर इसकी बातें करते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जंगली जानवरों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण, उनके आवासों के प्रबंधन, जंगली जानवरों, पौधों और उनसे बने उत्पादों के व्यापार के विनियमन और नियंत्रण के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। यह अधिनियम उन पौधों और जानवरों की अनुसूचियों को भी सूचीबद्ध करता है जिन्हें सरकार द्वारा अलग-अलग स्तर की सुरक्षा और निगरानी प्रदान की जाती है। इस अधिनियम में अनेक अनुसूचियों के माध्यम से उन सभी वन्य जीवों को चिन्हित किया गया है जिन्हें कठोर संरक्षण की आवश्यकता है तथा कानून का उल्लंघन करने पर कठोरतम दंड का भागी बनाया जा सकता है। और अब जानते हैं कि 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वन्य जीव विकास की कौन-कौन सी पहल की गई है। पहला है बाघ संरक्षण परियोजना। इसका उद्देश्य बाघों की आबादी का संरक्षण करना है। 1973 में शुरू की गई ये परियोजना वन और पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सहायता से आज भी जारी है। एलिफेंट प्रोजेक्ट, हाथियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी। इस अधिनियम के तहत कुल 88 कॉरिडोर्स की पहचान की गई है। वन्य जीव गलियारे संरक्षित क्षेत्रों से जुड़े होते हैं और मानव बस्तियों में बाधा डाले बिना जानवरों की आवाजाही की अनुमति देते हैं। हाल ही में भारत का पहला शहरी वन्य जीव गलियारा नई दिल्ली और हरियाणा के बीच योजनाबद्ध तरीके से बनाया जा रहा है। यह गलियारा असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य के पास स्थित है ताकि तेंदुए और अन्य वन्य जीवों को सुरक्षित मार्ग मिल सके। 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या चुनौतियां हैं, आइए ये जानते हैं। श्रोताओं, 50 वर्षों से अस्तित्व में होने के बावजूद वन्य जीव संरक्षण का यह अधिनियम आम जनता तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच पाया है। बहुत से लोग अभी भी वन्य जीव संरक्षण के महत्व और इनसे संबंधित कानूनों से अनभिज्ञ हैं। मानव और वन्य जीवों का संघर्ष, मानव जनसंख्या में वृद्धि और वन्य जीव आवासों पर अतिक्रमण के कारण मानव वन्य जीवों में संघर्ष में वृद्धि हुई है। इसके परिणाम स्वरूप अक्सर वन्य जीवों की हत्या होती है जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत अवैध है। अपर्याप्त दंड, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्य जीव अपराधियों के लिए निर्धारित दंड इतने सख्त नहीं हैं कि अपराधियों में ऐसा करने से भय हो और उन्हें रोका जा सके। जुर्माने और सजाएं इतनी अक्सर कम होती हैं कि अपराधियों पर कोई खास असर नहीं दिखता। सामुदायिक भागीदारी का अभाव, स्थानीय समुदायों की भागीदारी के बिना संरक्षण के प्रयास सफल नहीं हो सकते। हालांकि वन्य जीव संरक्षण के प्रयासों में सामुदायिक भागीदारी की कमी अक्सर ही देखी जाती है। जलवायु परिवर्तन भी एक प्रमुख विपरीत तथ्य है। ये वन्य जीवों के आवासों के लिए एक खतरा है गंभीर, और इसे मौजूदा वन्य जीवों के लिए भी खतरे की गुंजाइश बढ़ गई है। WPA को वन्य जीवों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को ध्यान में रखने की जरूरत है। निष्कर्षतः वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को लागू हुए 50 साल से अधिक हो गए हैं, लेकिन इसे अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार, नागरिक समाज और जनता के संयुक्त प्रयास की जरूरत है और इस ओर सभी को सचेत होना ही होगा। और आइए अब बातें करते हैं छत्तीसगढ़ के लोक पर्व भोजली की। उल्लास उमंग सहित छत्तीसगढ़ का भोजली पर्व इस समय अपने प्रारंभ की अवस्था में है। यह अत्यंत लोकप्रिय और पारंपरिक लोक पर्व है छत्तीसगढ़ का। यह पर्व मुख्य रूप से अच्छी फसल, वर्षा की कामना

अटूट मित्रता के प्रतीक के रूप में सावन और भादों के महीने में मनाया जाता है। इसे छत्तीसगढ़ का फ्रेंडशिप डे भी कहा जाता है, जो रक्षाबंधन के आसपास पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी से नौमी तिथि के बीच यानी नाग पंचमी या उसके आसपास इस त्योहार की शुरुआत हो जाती है। भोजली बोने के लिए सबसे पहले कुम्हार के घर से विशेष खाद मिट्टी, दिए या मटके की राख लाई जाती है। बांस की एक छोटी सी टोकरी में मिट्टी भरकर उसमें गेहूं, धान या जौ के दाने भिगोकर बोए जाते हैं। इस टोकरी को घर के पवित्र और छायादार स्थान पर रखकर 7 से 9 दिनों तक रोज पानी दिया जाता है। अंकुरित होकर निकले हरे भरे पौधों को ही भोजली देवी कहा जाता है। पौधे उगने के बाद महिलाएं और युवतियां इसके चारों ओर बैठकर पारंपरिक भोजली गीत गाती हैं, जो छत्तीसगढ़ में हमारे इस अंचल में अत्यधिक लोकप्रिय है। इन गीतों में मां अन्नपूर्णा और भोजली देवी से गांव की खुशहाली, अच्छी बारिश और भरपूर फसल का आशीर्वाद मांगा जाता है। श्रोताओं, रक्षाबंधन के अगले दिन यानी सावन पूर्णिमा के अगले दिन विधि विधान से पूजा करने के बाद भोजली को सिर पर रखकर महिलाएं नदी या तालाब के घाट पर ले जाती हैं और नम आंखों से वह गीत गाते हुए भोजली को जल में विसर्जित करती हैं। विसर्जन के बाद भोजली के कुछ हरे तिनकों को एक दूसरे के कान में खोसा जाता है। इसके जरिए युवतियां और महिलाएं आपस में भोजली, गिया, मितान या सखी का रिश्ता बांधती हैं। इस अनूठे रिश्ते को जीवन भर निभाया जाता है और इन्हें कभी भी नाम से नहीं पुकारा जाता, यह सम्मान व्यक्त करने का एक तरीका है। इस तरह भोजली का यह लोक पर्व अत्यधिक श्रद्धा और उल्लास के साथ हमारे छत्तीसगढ़ में सभी ओर मनाया जाता है। और अब आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जाँचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: और इसी के साथ आज सुबह कार्यक्रम का ये अंक पूरा होता है।

यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 7:20 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं गांधी चर्चा। वाचन स्वर अरविंद माथुर का है।

0: सन 1896 में महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, तब उन्होंने यहाँ पर कई राष्ट्रवादी नेताओं से भेंट मुलाकात की, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति के बारे में जानकारी दी और यहाँ चल रहे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के बारे में जो रूपरेखा तय हो रही थी उस संबंध में चर्चा भी की।
1: सन 1896 में गांधी जी भारत लौटे और सर्वश्री रानाडे, जस्टिस बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, रामकृष्ण भंडारकर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि से और फिर दक्षिण अफ्रीका गए। सन 1901 में वे भारत लौटे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में सम्मिलित हुए। सन 1902 में वे फिर दक्षिण अफ्रीका गए। सन 1904 में गांधी जी के सहयोग से इंडियन ओपिन नामक साप्ताहिक निकला, जो महत्वपूर्ण और प्रभावकारी सिद्ध हुआ। इसी साल जोहान्सबर्ग में भयंकर प्लेग फैला। वहां उन्होंने मानवोचित सेवा शुश्रूषा की, इससे उनका सुयश और बढ़ा। इसी प्रवास में उन्होंने रस्किन की लिखी अंटूडिस्ट नामक पुस्तक पढ़ी, जिसका उनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। बाद में गांधी जी ने इसका सर्वोदय नाम से अनुवाद किया। इस पुस्तक में सैव कुटुम्बकम की भावना पर बल दिया गया। इसी विचार को ध्यान में रखकर फिनिक्स नामक संस्था की स्थापना की गई।
0: लोकमान्य तिलक से महात्मा गांधी प्रभावित रहे। एक पुस्तक ने इसी संदर्भ में लिखा है कि डरबन से भारतीय मित्रों से प्राप्त आदेश की पूर्ति के लिए गांधी जी ने भारत के प्रमुख राय के जनमत बनाने वाले नेताओं से मिले, उनको दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों की दशा का आंखों देखा विवरण दिया। इस देह में प्रमुख पत्र पत्रिकाओं के संपादकों की रुचि जगाई और मुंबई, पुणे और मद्रास में जन संबोधित भी किया। उस समय बम्बई के बेताज बादशाह कहलाने वाले सर फिरोज शाह मेहता और विद्वान उग्र देशभक्त लोकमान्य तिलक के व्यक्तित्व से वे बहुत अधिक प्रभावित हुए, अभिभूत भी हुए और उन्होंने उनके विचारों को बहुत गहन रूप से अपने दिल में उतार भी लिया। उन्होंने हमदर्दी के साथ गांधी जी की बात भी सुनी थी और इसलिए तिलक से महात्मा गांधी प्रभावित भी हुए और गांधी जी का हौसला भी उन्होंने बढ़ाया। हालांकि कुछ अनुग्रह का भाव भी वे दिखाते रहे, लेकिन उदार मन और शुद्ध हृदय गोखले ने फौरन उनके दिल को जीत लिया। उनके साथ भी ये गांधी जी की पहली मुलाकात थी और फिर भी लगा कि वे एक पुरानी मित्रता को नए सिरे से स्थापित कर रहे हैं। सर फिरोज शाह मेहता के बारे में महात्मा गांधी ने लिखा है कि वे उनको हिमालय की तरह लगे, सागर की तरह लगे और गोखले जी गंगा की तरह थे। इस पवित्र जल में कोई भी स्नान करके तरोताजा हो सकता था। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तकों में और अपने लेखों में इन नेताओं का कई बार जिक्र किया है। लोकमान्य तिलक की प्रशंसा में उन्होंने एक जगह लिखा है,
1: भारत का प्रेम लोकमान्य तिलक के जीवन का श्वासोच्छ्वास था। उनका धैर्य कभी कम न हुआ और निराशा उनको छू तक नहीं गई। उनके अलौकिक गुणों को धारण करना ही उनका स्मारक है।
0: लोकमान्य तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वो सेनानी रहे हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को भी प्रभावित किया। और आइए अब गांधी चर्चा में प्रस्तुत है एक भजन। गायक कलाकार हैं उदित नारायण।

ब्रिटेन के सुप्रसिद्ध मजदूर नेता श्री फ्रेनर ब्रोक हुए थे। मद्रास पहुंचने पर वो अचानक अस्वस्थ हो गए। गांधी जी भी उन दिनों मद्रास में ही थे। वे उन्हें देखने फ्रेनर ब्रोकरे के पास जाकर बोले, मैं आपसे मिलने आया हूँ, सुना है आपको बहुत तकलीफ हो रही है, क्या बात है? फेनर ब्रोकवे ने उत्तर दिया, आप आए आपकी बड़ी कृपा है, मैं क्या कहूँ, मुझे बड़ी बेचैनी अनुभव हो रही है। गांधी जी ने पूछा, आखिर इस बेचैनी का कुछ कारण तो होगा ही? ब्रोकवे ने उत्तर दिया, जी हाँ कारण तो है, नींद बिल्कुल नहीं आती, जरा नींद आ जाए तो कितना अच्छा हो। गांधी जी बोले, ये तो आप ठीक कहते हैं, नींद सचमुच रसायन है। इतना कहकर उन्होंने बड़े प्रेम भाव से उनके माथे पर हाथ रखा और आंखें बंद कर ली। दूसरे ही क्षण लगा जैसे वे समाधिस्थ हो गए हैं और अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ देर वे इसी स्थिति में खड़े रहे, फिर आंखें खोलकर बोले, अब आपको नींद आ जाएगी और आप आराम अनुभव करेंगे। इतना कहकर गांधी जी लौट गए। फेनर ब्रोकवे ने अपनी पुस्तक 50 वर्ष का समाजवादी जीवन का इतिहास में लिखा है, कितना आश्चर्य है कि गांधी जी गए और कुछ ही देर में मुझे एकदम गहरी नींद आ गई। नींद खुली तो मैं कैसी स्फूर्ति अनुभव कर रहा।

अभी आप गांधी चर्चा सुन रहे थे। वाचन स्वर अरविंद माथुर का था। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर 7:31 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम यादों के झरोखे से। कार्यक्रम के इस अंक का आगाज कर रहे हैं परख फिल्म के उस गीत से जिसमें आवाज है लता मंगेशकर की, गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीत सलील चौधरी का है। आइए सुनते हैं।

और आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज में शैलेंद्र का लिखा हुआ गीत। SD बर्मन ने धुन बनाई है इस गीत की। फिल्म का नाम है गाय।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है वो कौन थी, आवाज लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की। गीतकार हैं राजा मेहंदी अली खान, संगीत मदन मोहन का है।

आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों के झरोखे से। लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत पेश कर रहे हैं श्री 420 फिल्म से। मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज़ों में ये गीत है। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: और अब आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
2: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
1: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
3: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
0: नया दौर, यह है उस फिल्म का नाम जिसका गीत अब आप तक हम पहुंचा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। गीतकार साहिर ने इस गीत को लिखा है और संगीतकार OP नैयर ने धुन बनाई है। आइए सुनते हैं।

0: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। मधुमति फिल्म से लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजें हैं इस गीत में। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार सलील चौधरी।

0: मधुमति फिल्म के इसी गीत के बाद यादों के झरोखे से कार्यक्रम अब पूरा होता है। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है। कुछ ही क्षणों के बाद समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का किया आह्वान। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम

0: मात्र दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की, पूरा वंदे मातरम गाने पर बल दिया। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा, उत्तरों को चुनौती देने की प्रणाली निष्पक्ष है, इसके महंगी होने की चिंताओं को खारिज किया। अमेरिका ने ईरानी सरकार के साथ उसके संबंधों का हवाला देते हुए हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टलवीन में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अवसंरचना, संपर्क, सुरक्षा, विदेश मामलों और शासन प्रणाली से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के भविष्य की कार्यसूची पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सचिवों से देश के भविष्य को आकार देने के बारे में दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सोचने का आग्रह किया।
1: बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकारियों के बीच अनौपचारिक बातचीत और टीम भावना को बढ़ावा देने की जरूरत है। श्री मोदी ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच ज्यादा जुड़ाव की बात कही। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को और मजबूत करने और उसे वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। श्री मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असरदार इस्तेमाल के साथ साथ इंसानी दखल सुनिश्चित करने और क्षमताओं को इंसानी विशेषज्ञता साथ जोड़ने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने अपनी बात खत्म करते हुए जटिल चुनौतियों से निपटने और भारत के भविष्य को आकार देने के लिए बेहतर तालमेल, नई सोच और सामूहिक जिम्मेदारी की जरूरत को दोहराया। बैठक के दौरान सचिवों ने क्षेत्रवार प्राथमिकताओं, उभरती चुनौतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याओं पर अपने अनुभव साझा किए। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रमुख मंत्रालयों और विभागों के सचिव तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: पुणे में भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 17 से 21 अगस्त तक 5 दिवसीय ब्रिक्स सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT ट्रैक का आयोजन किया जा रहा है। दूरसंचार विभाग के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम की थीम है इनोवेट, कोऑपरेट और ट्रांसफॉर्म फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना और सुरक्षित, समावेशी तथा मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम विकसित करना है। 5 दिवसीय कार्यक्रम का समापन आज 21 अगस्त को 12वीं ब्रिक्स कम्युनिकेशंस मिनिस्टर्स मीटिंग के साथ हो रहा है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार पुणे से माधव जायभाई के साथ सुरेखा जोशी।
0: इसके अलावा ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चर्चा के मुख्य विषयों में टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन, कौशल विकास, आसान यात्रा और पर्यटन में प्रौद्योगिकी और AI का इस्तेमाल शामिल किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के पूर्ण गायन के बजाय केवल दो छंद गाने के निर्णय की आलोचना की है। श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय संसद द्वारा पारित कानून का खुला उल्लंघन और राष्ट्र विरोधी है। श्री शाह ने दावा किया कि वर्ष 1937 में कांग्रेस ने तुष्टीकरण के नाम पर वंदे मातरम को दो भागों में विभाजित कर दिया था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ

0: पर केंद्र सरकार ने इस ऐतिहासिक गलती को सुधारते हुए पूर्ण गीत को कानूनी मान्यता दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सुविधाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने की प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज किया। NTA ने बताया कि ये एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें JEE मेन, नीट या UGC नेट जैसी परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थाई उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: NTA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। NTA ने कहा कि उत्तर को चुनौती देने पर फीस इसलिए ली जाती है ताकि अकारण की चुनौती से बचा जा सके और अगर चुनौती सही साबित होती है तो फीस वापस कर दी जाती है। NTA ने बताया कि जिस उम्मीदवार की चुनौती सही मानी जाती है उसे प्रति प्रश्न ₹200 वापस किए जाते हैं। NTA ने कहा कि फीस का उद्देश्य अकारण की चुनौती को रोकना है न कि सही चुनौती से लाभ लेना। किसी भी उम्मीदवार की सही चुनौती लाखों दूसरे उम्मीदवारों के रिकॉर्ड को सही कर सकती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शिमला में शुरू हो रहा है। सत्र 3 सितंबर तक चलेगा और इसमें कुल 10 बैठक होंगी। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। मॉनसून सत्र के पहले कल शिमला में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। गृहमंत्री अमित शाह कल शाम पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर बागडोगरा पहुंचे। हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, दार्जिलिंग से सांसद राजू बिस्ता और पर्यटन मंत्री शंकर घोष सहित अन्य लोगों ने श्री शाह का स्वागत किया। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। अमेरिका के वित्त विभाग के अनुसार यह नेटवर्क लेबनान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच वाणिज्यिक एयरलाइन उड़ानों से यात्रा करने वाले कुरियर का इस्तेमाल करके अलग अलग देशों में बड़ी मात्रा में पैसे भेजता था। इससे हिजबुल्ला को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर विदेशी मुद्रा हासिल करने और प्रतिबंधों से बचने का जरिया मिलता था। इस नए वर्गीकरण का उद्देश्य यह बताना है कि हिजबुल्ला ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC की ओर से काम करता है और कोई स्वतंत्र संगठन नहीं है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिनों में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। इलाके में बढ़ती अस्थिरता के बीच सोमालिया और यमन के समुद्री क्षेत्रों में समुद्री डकैती फिर से बढ़ने को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। एक रिपोर्ट।
3: हाल की घटनाओं में सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास कैमरून के ध्वज वाले MV लुतुफ जहाज पर कब्जा और यमन के पास इरिट्रिया के ध्वज वाले सिबू 1 टैंकर का अपहरण शामिल है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। खबरों के 8 समुद्री लुटेरे जहाज को पुंटलैंड के डंगोरोयो जिले में गरमाल के पास नुगाल तट की ओर ले गए। सोमालिया के अधिकारियों ने बताया कि समुद्री लुटेरों ने अभी 6 जहाजों पर कब्जा कर रखा है। इनमें इस हफ्ते कब्जा किए गए 2 जहाज भी शामिल हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: और अब खेल के मैदान की हलचल के साथ हैं शक्ति सिंह।
4: हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण मैच में आज अम्स्टरडेम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। कल पूल डी में अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड के साथ बिना किसी गोल के ड्रॉ खेलने के बाद भारत दूसरे दौर में पहुंच गया। इस ड्रॉ की मदद से सलीमा टेटे की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम पूल डी में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान हासिल करने में सफल रही। इधर नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर

0: फाइनल में उतरेंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष डबल्स जोड़ी का मुकाबला चीन की तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई केंग और वान चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शू शियान से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु, पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो को अपने अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। और एथलेटिक्स में लुसाने डायमंड लीग में आज भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और श्रीलंका के रमेश पथिरागे एक बार फिर आमने सामने होंगे। इस प्रतियोगिता के द्वारा नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में श्रीलंका के पथिरागे ने नीरज चोपड़ा को मजबूत चुनौती देते हुए स्वर्ण पदक जीता था, जबकि नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहकर रजत पदक के साथ वापस आए थे।
1: धन्यवाद शक्ति इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक तेज हवाएं चलने की संभावना है। उधर केरलम के कई तटीय क्षेत्रों में आज समुद्र में ऊंची लहरों से समुद्र का जल स्तर बढ़ने की आशंका है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आज हल्की बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 को अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, नई होगी दिल्ली। दैनिक जागरण लिखता है, 40 लाख नए घर, 695 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क से बदलेगी राजधानी। दैनिक भास्कर ने छापा है, लुटियन छोड़ बाकी दिल्ली में होंगी गगनचुंबी इमारतें, डेटा सेंटर बनेंगे, वैश्विक शहर के रूप में विकसित होगी देश की राजधानी। झारखंड में झटका शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने छापा है, सरकार ने छात्र आंदोलन के बाद दिया था आदेश, झारखंड में परीक्षाएं रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर की जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हालिया टिप्पणी पर जनसत्ता ने कूटनीतिक संदेश शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पिछले कुछ सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में आमतौर पर शांति और स्थिरता देखी जा रही है, इसलिए संभव है कि पाकिस्तान की ओर से तमाम नकारात्मक कवायदों के बावजूद वहां के बारे में वैश्विक स्तर पर अलग राय बनी है, इसलिए गोर के बयान को भारत के प्रति अमरीकी नीति में बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अमर उजाला ने रचनात्मकता से जुड़ी खबर प्रकाशित की है, चीन में कल से रोबोट ओलंपिक, बीजिंग में पहुंची 16 देशों की 666 टीमें, मैदान में उतरेंगे 2056 ह्यूमनॉइड। पत्र की उपलब्धि शीर्षक से विश्व आर्थिक मंच की 2026 की रिपोर्ट भी ध्यान आकर्षित करती है, कैंसर के टीके से एआई तक, दुनिया बदलने वाली 10 नई तकनीकें, आने वाले सालों में ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, साइबर सुरक्षा और एआई के क्षेत्र में पड़ सकता है इन तकनीकों का बड़ा असर। आज विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर वृद्धजनों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए लोकसत्य ने बॉक्स में खबर प्रकाशित करते हुए लिखा है, ज्ञान अनुभव का उत्सव है वरिष्ठ नागरिक दिवस।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का किया आह्वान। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के मात्र दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की, पूरा वंदे मातरम गाने पर बल दिया। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा, उत्तरों को चुनौती देने की प्रणाली निष्पक्ष है, इसके महंगी होने की चिंताओं को खारिज किया। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद, द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi chairs third high-level meeting with secretaries to Government of India, urges to break silos and adopt long-term vision for country's future. Union Home Minister Amit Shah criticizes Congress Working Committee's decision to sing only two stanzas of Vande Mataram.

0: हमारे साथ हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक जिनकी आवाज से भारतीय फिल्म संगीत के कई गीत सजे हैं। उनकी आवाज अपने आप में सबसे अलग है। गीतों की तादाद पर नहीं बल्कि गीतों की गहराई पर बात की जाती है, लेकिन हर गीत में सभी सुनने वालों के दिलों को छू जाने की ताकत है। ऐसे गायक हमारे साथ हैं श्री सुरेश वाडकर जी। आकाशवाणी की ओर से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।
1: धन्यवाद धन्यवाद, मेरी तरफ से भी सबको बहुत बहुत नमस्कार और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: सुरेश वाडकर जी, जिनकी आवाज सन 1977 में पहली बार सुनी गई, उसके पहले सुरेश वाडकर जी संगीत से किस तरह से जुड़े, हम जानना चाहेंगे।
1: एक्चुअली 4 साल की उम्र से मुझे गाना सीखने का मौका मिला। मुझे ऐसा लगता है मेरे फादर ने ये चीज जान ली थी कि ये ठीक ठाक गाता है बच्चा, तो इसको सिखाना चाहिए। तो तब से मेरी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी और आहिस्ता आहिस्ता यही है कि सीखता गया। और फिर 8, 9 साल की उम्र से मैं पंडित जियालाल वसंत जी, जो मेरे गुरु रहे, उन्होंने मेरी परवरिश की, गाना सिखाया, मेरी पढ़ाई लिखाई की, आज जो कुछ मैं हूँ उनकी वजह से हूँ। तो ये सिलसिला सीखने का अभी भी जारी है। अपने आप को अभी भी मैं विद्यार्थी के रूप में ही रखा हुआ है मैंने, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो ये सीखने की प्रक्रिया जो है ये कभी खत्म नहीं होती।
0: हमने सुना है कि आपको पहलवानी का भी शौक था।
1: हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि मेरे फादर पहलवान थे तो बचपन में हम लोग अखाड़े में भी जाया करते थे, मैं, मेरा बड़ा भाई परशुराम। तो उसकी वजह से कुश्ती का भी बड़ा शौक है मुझे। खैर बाद में तो हम लोग, मैं तो गाने बजाने में निकल गया, मगर कुश्ती देखने जाया करता था मैं, क्योंकि मेरे फादर ने अपने जमाने में बहुत बड़ी बड़ी कुश्तियां खेली है और उनको म्यूजिक का भी बड़ा शौक था। उनकी वजह से ही मैं गाने में आ गया।
0: संगीत के साथ साथ दूसरे शौक वाली बात तो हमने सुनी है, लेकिन पहलवान और संगीत ये थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट लगता है, तो आपने कुश्ती कभी लड़ी कि नहीं?
1: कुश्ती बचपन में लड़ी है, वैसे कुश्ती तो नहीं, मगर लड़ाई तो घर में बीवी के साथ होती है।
0: सुरेश जी, हमने सुना है कि भाभी जी भी संगीत से जुड़ी हुई हैं और बहुत अच्छी गायिका है।
1: जी जी, बहुत अच्छा गाती है और आजीवासन को संभालने में मेरी बड़ी बहन प्रेम और पद्मा, इन सबका मेरे साथ बड़ा सहयोग है। मेरी बड़ी बहन तो उसकी छत्र छाया में ही हम लोग आजीवासन चला रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे बच्चे वहाँ तैयार हो रहे हैं और ऑलरेडी वो प्रोफेशनली गा भी रहे हैं बाहर, तो बहुत अच्छा लगता है।
0: आपने अपनी धर्मपत्नी के साथ में कभी गाया होगा?
1: मैंने गाया है, मेरे साथ कभी कभी प्रोग्राम्स में भी गाती है। जल्दी से तैयार नहीं होती क्योंकि वो बोलती है कि मैं ड्यूएट से गा सकती हूँ आपके साथ मैं, मगर अभी इन दिनों वो खुद भी प्रोग्राम्स करने लग गई है तो अच्छा लगता है।
0: कभी आपका मन नहीं किया होगा कि फिल्म में भाभी जी को साथ में गवाया जाए?
1: हाँ, मेरा मन बहुत करता है, मगर मैं अपनी तरफ से इसलिए सजेस्ट या इंसिस्ट नहीं करता। तो मैं मेरे दोस्तों को जो भी गवाना चाहते हैं, मैं बोले तुम भाई सुनो उसको, तुमको अगर लगता है कि वो गा सकती है तो तुम जरूर बुलाना। मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, मैं कहना भी नहीं चाहता हूँ।
0: किसी गायक कलाकार के लिए सबसे पहले मिलने वाला जो ब्रेक होता है वो उसके जीवन का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। तो हम आपके जीवन में आपकी गायकी फिल्म इंडस्ट्री से किस तरह से जुड़ी, इसके बारे में जानना चाहेंगे।
1: ये सुरसिंगा संसद का एक कॉम्पिटिशन हुआ था 76 में, जिसमें मैंने भी पार्ट लिया था। तो वहां पे जजिस में रविंद्र जैन साहब थे, जयदेव जी थे, सुधीर फड़के जी थे, शिव जी हरी जी थे, हृदयनाथ मंगेशकर जी थे। तो वहां पे मुझे मदन मोहन अवार्ड मिला था। तो रविंद्र जैन साहब ने स्टेज पे आके उसी वक्त अनाउंस किया कि इसका जो विनर होगा मैं।

0: सो उसको पहला ब्रेक दूंगा। तो विद इन 3-4 मंथ्स पहली फिल्म बन रही थी राजश्री प्रोडक्शंस की, जिसमें उन्होंने सारे गाने मेरे से गवाए। आज जो कुछ मैं हूँ रविंद्र जैन साहब के आशीर्वाद की वजह से हूँ, मेरे गुरुजी के आशीर्वाद की वजह से हूँ। उसके बाद मैंने मुड़ के नहीं देखा। स्ट्रगल जिसको बोलते स्ट्रगल पीरियड वैसे मेरे जिंदगी में नहीं रहा, अभी स्ट्रगल है क्योंकि अभी जो लेटेस्ट या अभी का जो जमाना जैसा चल रहा है उस हिसाब से ऐसे लगता है कि हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं।
1: आपके जीवन का वो पहला गीत आपको याद होगा,
0: वो था बृष्टि पड़े टापुर टुपुर।
1: हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा आप गा के सुना दें।

ऐसे खिल खिल आह आह बृष्टि पड़ी टापुर टुपुर, टिप टिप टापुर टुपुर, बृष्टि पड़ी टापुर टुपुर, टापुर टुपुर।

0: क्या बात है, वाह, बहुत ही खूबसूरत यह गीत था, हेमलता जी के साथ आपने गाया था। और रविंद्र जैन जी जैसे इतने बड़े क्रिएटिव संगीतकार के साथ आपको ब्रेक मिलना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और इसके बाद जो दूसरी फिल्म आपकी आई थी वो भी एक बहुत बड़े संगीतकार की फिल्म थी, उसके बारे में बताइएगा।
1: रविंद्र जैन साहब, जिनको हम प्यार से दादू कहते थे, उनके इमीडिएटली बाद जो मेरी जिंदगी में आए म्यूजिक डायरेक्टर वो उषा खन्ना जी, वो भी गाना बहुत पॉपुलर हुआ, जीजा जी जीजा जी होने वाले जीजा जी, ये वाला गाना था,
0: सौ दिन सास के।
1: तो क्योंकि ये जब फिल्म में गाने के और कंपटीशन के बीच में जो 4-5 महीने थे, तो मैं जयदेव जी के पास असिस्टेंट करके काम कर रहा था, जस्ट फॉर एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे गुरुजी के बहुत क्लोज फ्रेंड रहे हैं जयदेव जी, लाहौर के टाइम से। तो फिर उषा जी के बाद एक दिन मुझे जयदेव जी ने कहा कि अभी तुम बिजी हो रहे हो, तुम अभी अपने करियर पे कॉन्सेंट्रेट करो, इतनी दूर आना जाना भी करते हो तुम, तो बेटर है तुम अपना काम देखते रहो। मगर एक दिन सुबह सुबह फोन आया, अरे सुरेश, मेरे को एक गाना करना है तुमसे। तो मुझे बहुत खुशी हुई, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, वो इतना

0: खूबसूरत गाना उन्होंने मुझे दिया, और मुझे लगता है कि नॉर्थ साइड में उस गाने से मुझे लोगों ने जानना शुरू कर दिया।
1: थोड़ा सा गुनगुनाएंगे।

0: क्या बात है, क्या बात है। जयदेव साहब ने फिल्म गमन में आपके अलावा हरिहरन साहब को भी ब्रेक दिया था, छाया गांगुली जी ने भी गाया था, तो ये क्या फिल्म नए गायकों के लिए बनी थी क्या?
1: ऐसा बोल सकते हैं आप, क्योंकि हम लोग सभी नए गायक गाए थे वहाँ, छाया भी, हरि भी, मैं भी, बड़े तीनों के बड़े खूबसूरत गाने थे। आपकी याद आती रही रात भर, उनको नेशनल अवार्ड भी मिला उस फिल्म के लिए। और हरि का भी गाना अजीब सा नेहा,
0: गजब की कंपोजिशन, बिल्कुल इसे कभी भूल नहीं सकते। और सुरेश जी, एक गायक कलाकार का सपना होता है, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई भी कलाकार, कि एक बार स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी के साथ गाने का मौका मिल जाए, सिर्फ एक लाइन भी अगर गाने को मिल जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा, ऐसा सपना आपका भी रहा होगा?
1: बिल्कुल, जिनको हम लोग कभी आते जाते गाड़ी में देखा करते थे, और जब वो पास होती थी सामने से तो 10 मिनट के लिए तो कुछ सोचता ही नहीं था कि अरे दीदी गई गाड़ी में, तो उनको मिलने का, उनके साथ गाने का, उनके साथ टूर्स पे जाने का, इससे बड़ा और भाग्य क्या हो सकता है जो सरस्वती के साथ गाने का मौका मिले। दुनिया का कौन सा ऐसा सिंगर होगा जिसको ये नहीं लगेगा कि मैं लता जी के साथ गाऊं? वो मौका भी मुझे, क्योंकि लता जी जब मैं जयदेव जी के पास था एज एन असिस्टेंट, तब वो तुम्हारे लिए के गाने हो रहे थे, तुम्हें देखती हूं तो लगता है, तो मेरे सामने वो गाना रिकॉर्ड हुआ था। बाद में फिर फॉर्मली मेरी जो मुलाकात हुई, जब दादू रविंद्र जैन साहब मेरा रक्षक फिल्म कर रहे थे तो उसके गाने चल रहे थे, तो मैं गया था सेट पे, तो दादू ने मुझे मिलाया, जिसको बोलते हैं औपचारिक रूप से, तो सुरेश है मेरे पास, गाया है, बहुत अच्छा गाता है और आपके कोल्हापुर का है, तो बहुत खुश हुई, मेरे साथ बात कर रही थी काफी देर तक, मुझे कहा उन्होंने कि तुम्हारे जो भी गाने रिकॉर्ड हुए तुम लेते आना, मुझे सुनने हैं, तो मैं लेके गया, उन्होंने सुना, और मेरे सामने जितने भी बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं उन सबको उन्होंने फोन किया कि मैं लड़का भेज रही हूँ, आप उसको सुनिए और जरूर चांस दीजिए, बहुत अच्छा गाता है। और विद इन मेरे ख्याल से 2 मंथ्स में वो गाना क्रोधी फिल्म का रिकॉर्ड हुआ, जिसमें लता जी के साथ मैं पहली बार गा रहा था, चल चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगा, ये वाला गाना।

0: कैसा लग रहा था? मतलब ऐसे लग रहा था कि नीचे पांव है ही नहीं, इतना घबराया हुआ था मैं। मगर दीदी ने इतना प्यार से मुझे कहा कि अपने दिमाग को शांत रखे, जैसे म्यूजिक डायरेक्टर कहते हैं वैसे गाओ, सब ठीक हो जाएगा।
1: गाना खत्म होने के बाद में लता जी की क्या अभिव्यक्ति थी?
0: बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। और उसके बाद फिर मैं मेरा दीदी के साथ फिर मैं हृदयनाथ जी के पास भी गाया, क्योंकि घर में उतना बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर उनके घर में खुद है, तो जाहिर है उन्होंने भी, और चूंकि मुझे उन्होंने सुना भी था कंपटीशन में, तो बस गाने होने लग गए, फिर आप सब तक मैं पहुंच गया।
1: आपने हृदयनाथ मंगेशकर जी का जिक्र किया तो फिल्म धनवान में आपने
0: जी
1: लता
0: जी
1: जी के साथ बहुत अच्छा गीत गाया था, ये आंखें देखकर। लेकिन हृदयनाथ मंगेशकर जी की फिल्मों के साथ में जब आपके नाम का जिक्र किया जाता है तो फिल्म लेकिन की आपकी जो गजल है, अद्भुत कंपोजिशन, अद्भुत गायकी, एक एक शब्द पर आपने जो वजन दिया है उसको, उसकी तैयारी किस तरह से आपने की थी बताइएगा।
0: उसकी तैयारी तो ऐसी थी कि वो ये गाना एक फिल्म, मराठी फिल्म के लिए हमने मराठी में रिकॉर्ड किया था।
1: अच्छा,
0: और वो अनफॉर्चुनेटली फिल्म बनी नहीं, तो मैं बाला साहब को, हृदयनाथ जी को हमेशा वो कहा करता था कि मैं उनको मामा साहब बोलता हूँ, तो मामा साहब ये गाना इतना अच्छा, हम लोग इसका कहीं यूज होना चाहिए, बहुत जरूरी है क्योंकि इतना अच्छा गाना है वो, तो बोलते देखेंगे कभी मौका लगेगा तो उनकी फिल्म बन रही थी, तो उनको लगा कि मैं ये तर्ज जो है वो गुलजार साहब को सुनाऊं, और गुलजार साहब ने भी बहुत पसंद किया क्योंकि वो डायरेक्टर थे। इतना उन्होंने एक एक लफ्ज जो मराठी में था उसके वजन के हिसाब का, तो ऐसा लगा कि वो मराठी में कभी बना ही नहीं था, इतना खूबसूरत गाना वो हिंदी में बन गया। तो पहले तो मैं वो गा ही चुका था गाना, और वो गाना भी घर में लता जी और हृदयनाथ जी उनके घर में हमेशा वो लोग सुना करते थे, लगा के मराठी का गाना,
1: ये गीत हम हिंदी में जरूर सुनेंगे लेकिन उससे पहले हम मराठी में सुनना चाहते हैं आपसे।
0: और वो गाने के टाइम पे मॉनिटर रूम स्पेशली सुनने आई थी, तो मैंने जैसे देखा मैंने बोला दीदी आप क्या यहाँ कर रहे हो, तो बोलती मुझे गाना सुनना है ये, मैं बोला आपके

0: मैं तो गा ही नहीं सकता हूँ, मैं बोलती नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम गाओ, ये मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है और मैं ये सुन के ही जाऊंगी। तो मॉनिटर रूम में बैठी थी वो, फिर वो रिहर्सल्स वगैरह काफी हो रही थी तो फिर बोलती हैं अभी मैं जाऊंगी, बहुत अच्छा चल रहा है। जाते वक्त मैंने बोला आप बताइए कुछ करना है, तो बोलती एक ही चीज मैं इसमें सजेस्ट करना चाह रही हूं कि तुम जो सांस वर्ड बोलते हो उसको सांस की तरह गाओ, सांस लगनी चाहिए वो। और खुद गा के उन्होंने वो साइन लाइन मुझे उन्होंने सुनाई, तो मैं तो पैर पे गिर गया। मैंने बोला ठीक है जो सरस्वती बोलेगी वैसे ही होगा। तो इस तरह के ये सिलसिले जिंदगी में रहे हैं।
1: तो सुरेश जी हम चाहेंगे कि पहले मराठी में और उसके बाद फिर हिंदी में आप गा के सुनाए।
0: स्पर्श सांगेल सारी कहानी, स्पर्श सांगेल सारी कहानी, शब्द बोलू न कोस आज रानी। स्पर्श तो इसका सुरमई।

0: बात है, क्या बात है सुरेश जी, वाकई दिल को आपने छू लिया, या कह सकते हैं कि सुनने वालों को लूट लिया आपने इस गीत को गाकर।
1: मैं भाई साहब बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी जिंदगी में जो भी म्यूजिक डायरेक्टर आए, उन्होंने उनके बने हुए बहुत खूबसूरत खूबसूरत गाने मुझे दिए उन्होंने। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जिसकी वजह से मैं नंबरिंग नहीं कर सकता हूँ। अब ये ठीक है, यहाँ पे कौन सा गाना क्यों और कैसे पॉपुलर होता है, जिस गाने पे बहुत आपको गर्व होता है, वो कब आता है कब चला जाता है ये भी नहीं पता चलता। तो ये सब कुंडलिनी या कुंडली उसकी गाने की अच्छी होनी चाहिए, उस हिसाब से वो पॉपुलर होते हैं। और नंबर मेरे ख्याल से मेरे माई बाप जो सुनने वाले हैं उन्होंने देने होते हैं।
0: आपको एक फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था, उसके बारे में बताइएगा।
1: सिंधुताई सपकार करके एक फिल्म बनी है मराठी में, तो उस गाने के लिए मुझे मुझे तो लगा था कि मुझे कभी राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा ही नहीं, क्योंकि बहुत बार मेरे हाथ में आते आते छूट गया, वो आप कह सकते हैं गमन के टाइम पे भी छूट गया, लेकिन के टाइम पे भी छूट गया, और चांदनी के टाइम पे भी निकल गया, प्रेम रोग के टाइम पे तो निकल गया ही वो। मुझे कोई दुख नहीं हुआ। जिन गानों की वजह से मुझे आज भी लोग जिंदा रखते हैं, वो सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। और मेरे राष्ट्र के लोग वो प्यार देते हैं, तो उसका बड़ा इससे बड़ा पुरस्कार क्या हो सकता है।
0: आज सुरेश वाडकर जी क्या कर रहे हैं?
1: आज बस जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, गाने का आनंद ले रहा हूँ। रोज अपना 2-4 घंटे का रियाज सुबह मेरा होता है। आजीवासन मेरा बहुत, क्या कहते हैं ना, उसका काफी नाम है, जहां पर हम लोग नई पौध तैयार कर रहे हैं, और मेरे स्टूडेंट्स भी काफी आगे बढ़ रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। तो आने वाले समय के लिए मैं आजीवासन से बहुत अच्छे अच्छे नगीने पेश करना चाहता हूँ। भगवान आजीवासन को, और आजीवासन में जो भी मेरे सारे, मेरी दीदी है, मेरे मेरे बाकी टीचर्स हैं, मेरी मिसिस है, सबको मेहनत करने की और उनको आगे बढ़ाने की सुबुद्धि और ताकत दे दे, यही भगवान से प्रार्थना करूंगा।
0: इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में आप आए हैं कार्यक्रम देने के लिए, इस विश्वविद्यालय के बारे में और हमारे छत्तीसगढ़ के संगीत प्रेमियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: एक तो भारत का सबसे बड़ा ये महाविद्यालय है, जो म्यूजिक का महाविद्यालय है, फाइन आर्ट्स का विद्यालय है, और वो एक अनोखा और अकेला है। और हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसा भी महाविद्यालय भारतवर्ष में है जो इस चीज को आगे बढ़ाने में हमारे स्टूडेंट्स का साथ दे रहे हैं। और मैं यही चाहूंगा कि आज उन्होंने मुझे इनवाइट किया है, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, मैं जितनी भी सेवा होगी मैं करके उनका आशीर्वाद लेके जाऊंगा।
0: आदरणीय सुरेश वाडकर जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपकी आवाज की खुशबू हमेशा यूं ही सुनने वालों के कानों तक फैलती रहे और आपके गीत हम यूं ही सुनते रहें। इस बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

इनसे मिलिए। ये कार्यक्रम अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। हमारा ये प्रसारण आप आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से सुन रहे हैं। 9 बजे हैं और अब से लेकर 9:55 तक हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे।

0: लड़की। इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
1: वादा,
3: हाँ जी वादा।
0: कार्यक्रम जारी रहेगा संतराल के बाद।

0: का नाम था गैंग्स ऑफ वासेपुर, पीयूष मिश्रा की आवासी।
1: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
2: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
3: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: रुचि रैना और रेखा भारद्वाज की आवाजी। फिल्म का नाम है ये जवानी है दीवानी।
1: कैसे तेरी खुद मर्जी।

विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।

0: किसने कहा है कि यशोदा एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
1: संगीतकार रविंद्र जैन।
0: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोलो रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोदा आ गई सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
2: वाह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार। आप सभी को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में जिक्र है जानी मानी अभिनेत्री अरुणा ईरानी का।

अभिनेत्री अरुणा ईरानी की फिल्मों में शुरुआत 1961 की फिल्म गंगा जमुना से हुई थी, जिसमें उन्होंने अभिनेत्री आजरा के बचपन की भूमिका अदा की थी। गंगा जमुना फिल्म यदि दोस्तों आपने देखी हो तो आपको याद होगा ये गीत भी, जिसमें अरुणा ईरानी स्कूल के गुरुजी और बच्चों के समूह में पर्दे पर गीत गाती दिखाई देती हैं।

मुंबई में जन्मी अरुणा ईरानी के पिता फरीदुन ईरानी नाटक मंडली चलाते थे और उनकी माँ सगुना अभिनेत्री थीं। परिवार के हालात ठीक नहीं थे, इसलिए अरुणा जी को बचपन में पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी। जिम्मेदारी का एहसास उन्हें हो चुका था क्योंकि 8 भाई बहनों में वो सबसे बड़ी थीं। इसलिए बचपन से ही फिल्मों में काम करना उनका आर्थिक सहारा बन चुका था।

0: 60 के दशक में कुछ फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम करने के बाद 1967 में फिल्म फर्ज में उन्हें अच्छा मौका मिला जंपिंग जैक जीतेंद्र के साथ।
1: मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे

दोस्तों, अरुणा ईरानी को बतौर चरित्र अभिनेत्री पहचाना जाता है, लेकिन उन्होंने कई फिल्मों में बेहतरीन सहायक भूमिकाओं में भी काम किया है और कमाल का काम किया है। कई बार तो उन्होंने खलनायिका बनकर भी पर्दे पर एक नया ही मंजर पैदा किया है। अभिनय के अलावा पर्दे पर उन्हें बेहतरीन डांसर भी माना जाता रहा है। उनके हिस्से में कई मशहूर गाने आए हैं जो सुनते ही हमारी जुबान पर चढ़ जाते हैं। 1971 की फिल्म कारवा में अरुणा जी का काम बेहद सराहा गया और चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी गीत के अलावा ये गीत भी अरुणा जी के डांस की वजह से काफी लोकप्रिय हुआ था।

जहां आरा आया सावन झूम के, और उपकार कुछ ऐसी फिल्में हैं जिसमें अरुणा जी ने अलग अलग चरित्रों को पर्दे पर उभारा और लोगों के दिलों में जगह बनाई। 1972 में अरुणा ईरानी के फिल्मी जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया। अभिनेता महमूद ने उन्हें तत्कालीन संघर्षशील कलाकार अमिताभ बच्चन के साथ बतौर हीरोइन मौका दिया और वो फिल्म थी बॉम्बे टू गोवा।

हालांकि ये भी सच है कि कई फिल्मों में सहायक भूमिका निभाते हुए भी वो हीरोइन पर भारी पड़ जाती थीं और लोग अरुणा ईरानी को पसंद भी करते थे। 1973 में राज कपूर साहब की फिल्म बॉबी में छोटी लेकिन एक दिलचस्प भूमिका में उन्होंने अपनी खास छाप छोड़ी थी।

शुरुआत में अरुणा ईरानी को लेकर फिल्मकारों की सोच ये रही कि उनके रोल में कुछ नकारात्मकता का पुट बरकरार रहे, यानी उन्हें वैंप बना दिया जाए। लेकिन रफ्ता रफ्ता ये सोच बदली और अरुणा जी ने हिंदी फिल्मों में लगातार भूमिकाएं करके एक सशक्त चरित्र और सहायक भूमिकाएं निभाने वाली बेहतरीन अभिनेत्री का दर्जा हासिल किया। अभिनेता महमूद के साथ तो उनकी कई फिल्में आईं। फिल्म औलाद का ये गीत हम कैसे भुला सकते हैं।

अपनी अदाकारी के साथ साथ अरुणा ईरानी के साथ खूबी ये रही दोस्तों कि उन पर कई हिट सुपरहिट गाने फिल्माए गए हैं जो हरदम हमें बहलाते हैं, फुसलाते हैं। द ट्रेन फिल्म का

दौरान उन्हें लुभाती पर्दे पर अरुणा ईरानी ये गीत भी गा चुकी हैं।

इन गीतों और फिल्मों के अलावा हम जोली, देवी, नया जमाना, गरम मसाला, दो फूल, मिली, लैला मजनू, शालीमार, कुर्बानी, दयावान, अंगूर, फकीरा, सरगम, रेड रोज, रॉकी और बेटा जैसी फिल्मों में अरुणा ईरानी ने बेहतरीन अभिनय की छाप छोड़ी है। दोस्तों, अरुणा जी को फिल्म फेयर के अवार्ड्स के लिए कई बार नॉमिनेट किया गया, लेकिन 1984 की फिल्म आई थी पेट प्यार और पाप, और इसके बाद 1992 की फिल्म बेटा के लिए भी अरुणा ईरानी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार

1980 के उत्तरार्ध से लेकर 90 के दशक तक तमाम फिल्मों में अरुणा ईरानी ने माँ की भूमिका को अपनाकर अपनी अदाकारी को एक नया आयाम दिया। इसी दौरान कई फिल्मों में कॉमेडी का तड़का भी लगाया। लोगों ने उनके इस अंदाज को भी खूब पसंद किया।

0: अभी हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले कर रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। 9:55 होने को हैं। कुछ ही क्षणों के बाद प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित करेंगे।
1: और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में पानी भरने की घटना में मारे गए छत्तीसगढ़ के 4 श्रमिकों के परिजनों को राज्य सरकार 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना पर परीक्षा निरस्त कर घटना की जांच के लिए समिति बनाई गई। और जनजातीय कारीगरों को मंच प्रदान करने आज धमतरी में कारीगर सूचीबद्धता मेले का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड के चमोली जिले के पीपलकोटी में पिछले सप्ताह सुरंग हादसे में लापता दोनों श्रमिकों के शव मंगलवार को बरामद कर लिए गए। इसके साथ ही इस हादसे में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 10 हो गई। अधिकारियों ने बताया कि इन दोनों शवों को बरामद किए जाने के बाद करीब 3 किलोमीटर लंबी निर्माणाधीन सुरंग में 13 अगस्त की शाम हुए हादसे के बाद से विभिन्न एजेंसियों द्वारा युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा तलाश और बचाव राहत अभियान भी समाप्त हो गया। सुरंग से बरामद हुए शवों की पहचान झारखंड के खूंटी जिले के 31 वर्षीय लुकास टोपनो और छत्तीसगढ़ के चेतन पोयाम के रूप में हुई है। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में पानी भरने की घटना में कोंडागांव जिले के 4 श्रमिकों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मृतक श्रमिकों के परिजनों

0: पांच पांच लाख रुपए तथा हादसे में घायल दोनों श्रमिकों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। इस हादसे में कोंडागांव जिले के ग्राम धनसुली के दो, मदनार के एक और दहीकोंगा के एक श्रमिक की मृत्यु हुई है, जबकि जिले के दो श्रमिक घायल हुए हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में बीएससी द्वितीय वर्ष की एंटोमोलॉजी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने सख्ती दिखाई है। उन्होंने तत्काल जांच समिति गठित करने और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। विश्वविद्यालय ने परीक्षा निरस्त कर 5 सदस्यीय जांच समिति बनाई है। मंत्री ने कहा कि जांच के बाद दोषियों पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निरस्त परीक्षा की नई तिथि जल्द घोषित की जाएगी। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के सचिव अविलक्ष लेखी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मत्स्य किसानों को आधुनिक तकनीक, वित्तीय सहायता और बेहतर अधोसंरचना उपलब्ध कराई जा रही है। कल रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में मत्स्य उत्पादन की व्यापक संभावनाएं हैं और राज्य में तिलापिया क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। श्री लेखी ने बताया कि राज्य में मत्स्य क्षेत्र की परियोजनाओं पर करीब 900 करोड़ रुपए व्यय स्वीकृत किए जा चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों को किसानों की आय बढ़ाने, गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज उत्पादन और निर्यात क्षमता मजबूत करने के निर्देश दिए। जनजाति कारीगरों, स्व सहायता समूहों, वंधन विकास केंद्रों, किसान उत्पादक संगठनों और स्थानीय उद्यमियों को मंच प्रदान करने के लिए आज धमतरी के आजीविका महाविद्यालय में जनजातीय कारीगर सूचीबद्धता मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में भाग लेने वाले पात्र जनजातीय कारीगरों और उत्पादक समूहों का ट्राइफेड के साथ एम्पैनलमेंट किया जाएगा। पंजीकृत होने के बाद ये कारीगर देश भर में आयोजित होने वाली प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रदर्शनियों, जनजातीय मेलों और ट्राइफेड के मुख्य ट्राइब्स इंडिया बिक्री केंद्रों के माध्यम से अपने उत्पाद बेच सकेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक प्रदेश में भारी वर्षा की गतिविधियों में कमी आने की संभावना जताई है। इससे अधिकतम तापमान में मामूली वृद्धि होगी। हालांकि इस दौरान प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में अगले 3 दिनों के दौरान कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने के आसार हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में पानी भरने की घटना में मारे गए छत्तीसगढ़ के 4 श्रमिकों के परिजनों को राज्य सरकार 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना पर परीक्षा निरस्त कर घटना की जांच के लिए समिति बनाई गई और जनजातीय कारीगरों को मंच प्रदान करने आज धमतरी में कारीगर सूचीबद्धता मेले का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर दिन के 10 बजे हैं। और अब आइए सुनते हैं पारंपरिक छत्तीसगढ़ी गीतों का कार्यक्रम गुंजेश्वर गांव की। इसमें पहले सुनते हैं पारंपरिक भोजली गीत। गायक कलाकार हैं केजाबाई निर्णेजक, कौशल्याबाई, परमेश्वरी, प्रियंका साहू और साथी।

अभी आप सुन रहे थे पारंपरिक भोजली गीत। कलाकार थे केजाबाई निर्णेजक, कौशल्याबाई परमेश्वरी, प्रियंका साहू और साथी गुंजेश्वर गांव के। इस कार्यक्रम में लीजिए अब हम आपको सुनवा रहे हैं पांडवानी गीत। प्रसंग है पांडवों का धृतराष्ट्र के पास जाना। गायक कलाकार हैं तीजनबाई और साथी।

0: का कर बे अंधा, ये सारे खेल हकीबे नहीं तो कृष्ण के सवा दूसरा काकरो नहीं।
1: अच्छा,
0: कृष्ण के जरियत ले भीमसेन मन हा जिंदा हवे, पांचो भाई सदा जीवित भये। सबो भाई कारो मन नास हो गे कहे अंधा, तोरे दीही के दिया भूता एके खाती।

0: कक्का, मुरलीधर कन्हैया कहने लगे धृतराजन धा, ये सब खेल हमार कह के बदनाम लमत बोझा लगा। काबर ये सारी खेल राजा दुर्योधन के हुई से।
1: अच्छा,
0: अरे जब मैं पांच गांव मंगाए के आस लगा के लगे दरबार में जब पहुँचे गुरु द्रोणा भीष्म पितामह ये सब राजों के बीच बीच में, यंतना देवो राजा की के कही तब के दरी मैं मन में सोच के और पांच सने भाई

0: नहीं देव जमीन की के पांडव मन बर परन करे रही सवे ये पांडव मन के करनी नो है न मोर करनी नो है दादा मोर फोकट के कलंक मत लगा।
1: अच्छा
0: ये तो राजा दुर्योधन के करनी है।
1: हाँ?
0: ये बात ले सुनकर बड़ा प्रेम के साथ धृतराज अंधा ले और आत्मा में ज्ञान हो जावे। शिरतोन बाते मोरे बेटा ये बात ला ध्यान निदीश।
1: हाँ?
0: महू समझाए भीष्म पितामह गुरु द्रोणाय और कृष्ण जी भी समझाई पर काकरो वचन में ध्यान न लगाई।
1: हाँ?
0: ये कहकर अंधा धृतराज के मन में आनंद आ गए।
1: अच्छा
0: वह वक्त बड़ा हर्ष होके कहने लगे भैया।
1: हाँ?
0: कृष्ण जी मोर पांचों जने बेटा ला मैं सदा पुत्र के समाज

0: बात कहे बेटा। अरे मैजत का भी अपन मन में क्रोध करे रहे धर्मराज, ये तबला दूर करके आज मोरगले के पास में आकर मिल जा।
1: अच्छा,
0: ये बात ला सुने तो पांचों भाई बड़ा सुंदर अकन दौड़ के चले।
1: हाँ।
0: सब गले ले लगावे।

कर धर्म राजू जी स्थिर धर्म राज बड़ा खुशी के साथ बोलने लगे हैं। यंधाले दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे पिताजी जत का भी गलत कर डारे मोर तजरिया से होए है एकर से तीता मोला।

0: यंधा के पास ले मिलके और ये पांचों भाई
1: अच्छा
0: कृष्ण के सही
1: हाँ?
0: और धीरे धीरे बड़ा प्रेम के साथ माता संग मिले भर चले हैं
1: भाई।
0: अरे सौ भाई कारों के नाच सुनने वाली गंधारी
1: हाँ?
0: तब बता रहा के बोला।

0: के सूचना देख के गंधारी अलग बिलाप कर कर के मन में क्रोध भरी वाणी और घुसा के साथ आँखी ललियावत हवे वो गंधारी के जब आँख लाल हो गए पांडव मल्ला शराब दे के नाश कर डर हुकी के वही समा का हो जाते
1: अच्छा
0: हाथ कमंडल उठा हाथ में कमंडल उठा के

ये सब है कारो लपुत्र ना जान के आजकल ये समझ ले गंधारी पांचों झने बेटा तोर प्राण के आधार आए आंखों के तारा ताई समझ ले बाई ऐसे कहकर व्यास जी बड़े सुंदर

0: ब्याज जी के कहे हुए वचन ले सुनकर गंधारी या मन में हर्ष तो यवस मनाई रहे काका, पर मन ही मन सोच के कथे का करो ब्याज जी।
1: अच्छा
0: मोला यही बात के गजब दुख लागेगा। काके भीमसेन के करनी ला तो जरा देख ली, वो अनर्थ लड़ाई करी राजा दुर्योधन के जंघाला ये टोरे के मौका नहीं रही। वह समय भीमसेन पर उठा कर गदा, भीमसेन

0: अभी आप तीजन बाई और साथियों की स्वर में पंडवानी गीत सुन रहे थे, और इसी के साथ गूंजे स्वर गांव के कार्यक्रम का ये अंक पूरा होता है। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
0: ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, 10:30 होने को हैं, और अब लीजिए पेश है कार्यक्रम आपकी पसंद। और कार्यक्रम में गीतों का सिलसिला शुरू करने के पहले आइए सुनते हैं ट्रैफिक अपडेट्स जो हमें प्राप्त हुआ है यातायात पुलिस बिलासपुर द्वारा।
2: नमस्कार, नई सुबह के साथ, नए संदेशों के साथ आप सुन रहे हैं ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर उमा शंकर पांडे के साथ। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले के शहर या गांव, सभी जगह की प्रत्येक सड़कों में सभी प्रकार के वाहनों का स्वतंत्र आवागमन बना हुआ है। कहीं कोई जाम नहीं, कहीं कोई यातायात रुकावट नहीं, अर्थात संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। आप सभी से अनुरोध है, सुगम यात्रा के लिए, सुरक्षित यात्रा के लिए भूल कर भी यातायात के नियमों के विपरीत ना जाएं। मित्रों, सावन माह के साथ ही अब अनेकों त्योहार पर्व प्रारंभ हो चुके हैं। निकट भविष्य में रक्षाबंधन का पर्व है, फिर श्री कृष्ण जन्माष्टमी, फिर महिलाओं का पर्व तीजा या हरदाई का, फिर पोला, श्री गणेश उत्सव और नवरात्रि पर्व आदि आदि क्रमशः आ रहे हैं। इन पर्व के कारण बाजारों में भी रौनकता बढ़ जाती है। स्थायी दुकानें तो अपनी जगह रहती हैं, किंतु अस्थायी दुकानदार शहरी यातायात व्यवस्था की दुर्दशा कर देते हैं। हाल ही में राखी का पर्व है, सड़क के किनारे टेंट लगाकर राखी आदि बिक्री करने वाले दुकानदारों में इन दिनों चौक चौराहों में बांस बल्ली लगाने की होड़ मची है। सभी बड़ी निर्दयता के साथ अधिक से अधिक जमीन घेरने की तैयारी कर रहे हैं। प्रायः हर चौक चौराहों या सड़क के किनारे ये दुकानदार सड़कों तक घेर कर दुकान बना रहे हैं। पर्व के दौरान जब सड़कों में लोगों की संख्या अधिक होती है, तब इन्हीं दुकानों के कारण

0: बुरी तरह प्रभावित होती है, क्योंकि सड़कों के ऊपर तक इनकी दुकानें होती हैं। आधी सड़क में ग्राहकों के वाहन होते हैं और यही स्थिति सड़क के दोनों तरफ की होती है। परिणाम शहर का भागता दौड़ता यातायात रेंगता दिखाई देता है, लोग परेशान होते हैं। अतः ऐसे सभी दुकानदारों से अनुरोध है, सड़कों में अव्यवस्था फैलाने या यातायात बाधित करने की तैयारी न करें, क्योंकि आजकल में नगर निगम की कार्रवाई होने ही वाली है, तब आपको अधिक क्षति का सामना करना पड़ सकता है। अतः सचेत रहें, हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा शुभ हो।
1: और अब आइए आगाज करते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम के पहले गीत के लिए हमें अपनी फरमाइशें आप सभी ने भेजी हैं। ग्राम धुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार साहू और युवराज साहू। हटरी चौक बिलाईगढ़ से खीक राम देवांगन, रेणु देवांगन, रजनी देवांगन, पिंकी देवांगन और जया रानी। लूतरा खमरिया से हैं नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम और मोहम्मद अजीज। बिल्हा से शेख नासिर, महजबीन बानो। शांतिनगर भाटापारा से रमजान खान सिकंदर, अशरफ खान, नासिर खान, अयाज अल्फैज खान। मिलाऊ दास कुलदीप, आप सभी शांतिनगर भाटापारा से हैं। मिलाऊ दास कुलदीप, संतोष दास, संदीप दास, अजीत दास कुलदीप, बिरजा, संजना और लक्की। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से पत्र है हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जय तेग विरक और मीका विरक का। और आप हैं पेंड्रा धनगवास से, बरपारा से कैलाश कुमार, चंद्रबाई, सुरेंद्र, संजना, दरकेश, श्याम सुंदर दरक्का, प्यारे लाल सोनवानी। आप सभी की फरमाइश पर आपको हम सुनवा रहे हैं धरती कहे पुकार के फिल्म का गाना। लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत है, मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने धुन बनाई है। आइए सुनते हैं ये गीत।

और अब कार्यक्रम के अगले फरमाइशी गीत की ओर बढ़ते हैं, जिसकी फरमाइश आप सभी ने पत्रों के जरिए की है। भाटापारा से बचकामल, मोतीलाल यादव, बसंत भृगु, विनय ठाकुर, चोवाराम वर्मा, सूरत बारीकर, नारायण यदु, लेखराम यदु, राधेश श्याम, और मारवाड़ी कुआं से हैं सियाराम, अश्विनी पांडे, सोनाडी से सुब्रत चौधरी, बेबी अनिशा, रायपुर से नीलू मेघ, और हमारे ये श्रोता हैं सुंदरपारा रोहांसी से डगेसर राम साहू, नूतन साहू, गौरव साहू, घनश्याम साहू, भाटापारा से दान सिंह रावत, दानू, पद्मिनी रावत, शुभम और सौरभ रावत, दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू, और दतरेंगी भाटापारा से है नोखेलाल वर्मा, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा और पुष्पेंद्रमणि वर्मा, पौड़ी लाफा से विद्यानंद साहू, त्रिवेणी साहू, रानी, बबली, सुमन, मंटू, मिष्ठी, सृष्टि, दृष्टि, गन्नू, गणेश, कान्हा, कृष्णा और अंशु साहू, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश, मायाराम रजक, पुनेश्वर रजक, फानेश्वर रजक, मुकेश कुमार रजन, हाव्या रजक और टानिया रजक, आप सभी की फरमाइश पर आप तक पहुंचा रहे हैं मंजिल फिल्म का गाना, आवाज़ किशोर कुमार की है, योगेश के लिखे गीत की धुन बनाई है RD बर्मन ने। आइए सुनते हैं ये गाना।

कार्यक्रम के अगले गीत के लिए फरमाइशी पत्र आप सभी ने भेजे हैं। हटौद बाजार लाहौद से कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार पटेल, समीर पटेल और राजकुमारी पटेल। आप सभी हैं मोती गार्डन भाटापारा से मोतीलाल झेरिया, कल्पना झेरिया, बिट्टू कुमार, चिंटू झेरिया, युग कुमार झेरिया और भाटापारा से ही राम कुमार राउत, अमरीका राउत, गणेश, कार्तिक और युवराज राउत। हथनीपारा भाटापारा से दुर्गा, दुर्गेश्वरी, गीतू, मुकेश शर्मा, हरीश, किरण और दुलारी वर्मा। सुभाषवाड़ भाटापारा से ML यादव, अजय कुमार यादव, अमित, अमिन यादव, गिरीश, करण यादव, युवान और ढाबेश यादव। हथबंध नेवधा से सेवक राम यादव, टुपेंद्र कुमार यादव, टुलेंद्र कुमार यादव और देव कुमार यादव। आप सभी हैं नर्मदा धाम सुरसुली बालौद से कैलाश यादव, सुरेश यादव, टिकेंद्र यादव और डिकेंद्र यादव और योगेश यादव। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से TD मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉ अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज। आप सभी सुनना चाहते हैं अभिनेत्री फिल्म का गाना। लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत है। गीत लिखा है मजरूह ने और संगीत की धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। लीजिए सुनिए।

और अब उन फरमाइशकर्ताओं के नाम बता दें जिन्होंने कार्यक्रम के अगले गीत को सुनना चाहा है। आप सभी हैं बेमितरा से सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत सारथी, बीरेंद्र ब्रजकांत सारथी, आप सभी नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, शीमा शारदा और दामिनी वर्मा, महावीर बार्ड भाडापारा से श्रीमती अमृता यादव, पार्वती यादव, श्रीमती ईश्वरी यादव, श्रीमती लक्ष्मी यादव, कुमारी प्रेरणा और डिम्पी यादव, हथबंध नेवधा से श्रीमती दुलारी यादव, श्रीमती प्रियंका यादव, कुमारी प्रीति यादव, श्रीमती उमेश्वरी यादव और श्रीमती सुनती यादव, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनुष्का, तन्मय गजभिये, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से हमारे सुनने वाले श्रोता है पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र सेन, यहीं से खुशी और रौनक सेन, महमदपुर भक्तिन बाजार अकलतरा से रमेश कैवर्त, राजकुमारी और आरती कैवर्त, आप सभी ने सुनना चाहा है मुकेश और लता मंगेशकर का गाया हुआ गीत। फिल्म का नाम है आस का पंछी। गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कार्यक्रम के अगले गीत की फरमाइश आप सभी ने की है कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश देवांगन, लोकेश, आशीष, रवि, सनी, रेयांस, कान्हा, आदित्य देवांगन, बमहर चाटीडी से गंगा देवी देवांगन, पूनम देवांगन, धनेश्वरी, महेश्वरी, कुमारी मिल्की, बेबी मीनाक्षी और निधि देवांगन, दतरेंगी भाटापारा से तुषार वर्मा, लोकेश वर्मा और भारती वर्मा, आप सभी हैं बाजारपारा बेमेतरा से भाई भरतलाल सिन्हा, लव कुमार और लक्की सिन्हा, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, और उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहाणकर, श्रीमती सरिता गवहाणकर, प्रिंस एकांश गवहाणकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवहाणकर, प्रणीता और अर्जुन गवहाणकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गवहाणकर, सुमित और कुमारी ध्वनि गवहाणकर परी। और आप सभी की फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं चुपके चुपके फिल्म का गाना, आवाज लता मंगेशकर की, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार SD बर्मन।

और इसी गीत के बाद आपकी पसंद कार्यक्रम का यह अंक पूरा होता है। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, दिन के 11 बजे हैं और अब लीजिए प्रसारित कर रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
0: और मैं हूं अजीत। आप सबको नमस्कार, स्वागत बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। श्रोताओं, धमधा ग्राम सुखनी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: रिश्ते अनमोल होते हैं, इन्हें शब्दों से नहीं प्यार, विश्वास और सम्मान से सींचिए, क्योंकि सच्चे रिश्ते ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत होते हैं।
0: इस विचार के लिए आप सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। हमें पहला संदेश मिला है ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, वेदिका, वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा, नंदिनी और ममता बाई वर्मा का।
2: नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा।
0: और ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे जी का।
2: हरदोई जिले के नगर पंचायत कुरसठ गाँव के मोहल्ला रामनगर से राजेश कुमार विद्यार्थी और कोमल।
0: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा।
2: संजय नगर कॉलोनी नेपानगर से प्रभु दयाल शिवदे, शिवा, खुशी, जानू, मनीषा बसंतीबाई और गणेश शिवदे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। हमारा निवेदन वही है जो हमेशा होता है और वो ये है कि जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से और न सिर्फ सुनिए लेकिन दूसरों को भी सुनाइए
2: जी।
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम के साथ बने रहिए। अब प्रस्तुत है आज का प्रेरक प्रसंग
2: जी।
0: तो विमलेश जी, हमने कल चर्चा की थी तितली के संघर्ष की।
2: बिल्कुल।
0: आज किसकी चर्चा होने जा रही है?
2: अजीत जी, आज हमारी चर्चा होने जा रही है

0: बाज़की। हम सभी इस पक्षी के बारे में जानते हैं। ये अपनी तीक्ष्ण दृष्टि और शानदार उड़ान के लिए जाना जाता है। आज हम सुनेंगे बाज और मुर्गियों की कहानी।
1: श्रोताओ, इस कहानी का मूल भाव है स्वयं को पहचानिए। कहानी कुछ इस प्रकार से है, शायद आपने पहले भी सुनी हो, लेकिन हर बार ये हमें अपने जीवन के बारे में कुछ न कुछ नया सोचने के लिए जरूर प्रेरित करती है।
0: तो करते हैं शुरुआत कहानी की।
1: जी।
0: एक दिन की बात है, एक किसान खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे बाज पक्षी का बच्चा पड़ा हुआ मिला। वो घायल भी था, शायद किसी तूफान में वो घोंसले से गिर गया था।
1: तो उस किसान ने सोचा, यदि मैं इसे छोड़ दूंगा तो शायद ये जीवित नहीं बचेगा। वो उस बाज के बच्चे को घर ले आया और उसे अपनी मुर्गियों और चूजों के साथ रख दिया।
0: जी।
1: वो बाज का बच्चा अब मुर्गियों के बीच ही बड़ा होने लगा।
0: वो वही खाता जो मुर्गियाँ खाती थी। वो जमीन पर दाना चुगता, मुर्गियों की तरह थोड़ा बहुत उछलता और छोटे छोटे पंख फड़फड़ाता। और जब मुर्गियाँ कुट कुट करती तो वो भी वैसा ही करने की कोशिश करता।
1: उसे मालूम ही नहीं था कि वो वास्तव में कौन है। उसे ये पता ही नहीं था कि उसकी क्षमता कितनी है।
0: जी।
1: एक दिन उसने आकाश में एक विशाल बाज को ऊंची उड़ान भरते हुए देखा। वो बादलों के बीच बिना किसी डर के शान से उड़ रहा था।
0: बाज के बच्चे ने आश्चर्य से अपनी मुर्गी माँ से पूछा, माँ वो कितना अद्भुत पक्षी है, वो कौन है? मुर्गी ने उत्तर दिया, वो बाज है, आकाश का राजा। बाज ने पूछा,
1: क्या मैं भी कभी उसके जैसा उड़ सकता हूँ?
0: मुर्गी हंस पड़ी, नहीं बेटा, हम मुर्गियाँ हैं, हम जमीन पर रहने वाले पक्षी हैं। इतनी ऊंची उड़ान हमारे बस की बात नहीं, हम उसकी तरह उड़ नहीं सकते। अजी जी, फिर क्या हुआ, क्या बाज कभी उड़ पाया?
1: नहीं विमलेश जी, दुखद बात यह है कि बाज के बच्चे ने भी यही बात सच मान ली और उसने कभी उड़ने का प्रयास ही नहीं किया। वो पूरी जिंदगी मुर्गियों की तरह जमीन पर चलता रहा, कुटकुट करता रहा।
0: जी।
1: पता है, उसने उड़ने की जन्मजात क्षमता थी।
0: जी।
1: बस यदि वो थोड़ा और पंख फड़फड़ाता, अपने पंखों को फैलाता, उड़ने का प्रयास करता तो वो उड़ सकता था।
0: जी।
1: लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने मान लिया था कि उससे हो ही नहीं सकता।
0: और एक दिन इसी भ्रम में उसका जीवन समाप्त हो गया कि वो एक साधारण मुर्गी है। प्रिय श्रोताओ, ये केवल एक पक्षी की कहानी नहीं है, ये हम में से बहुत से लोगों की कहानी है। कई बार परिस्थितियां हमें ये विश्वास दिला देती हैं कि हम जितने हैं उससे अधिक नहीं बन सकते।
1: श्रोताओं, विद्यार्थी सोचते हैं कि वे और अच्छा नहीं कर सकते, कुछ विषय उनसे हो ही नहीं सकते।
0: जी।
1: लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा, तुम साधारण हो।
0: जी।
1: इतना बड़ा सपना मत देखो। और श्रोताओं, होता ये कि धीरे धीरे हम भी उन बातों पर विश्वास करने लगते हैं, अपनी क्षमता भूल जाते हैं।
0: हम अपने पंख समेट लेते हैं और फिर पूरी जिंदगी उसी सीमा में जीते रहते हैं जो दूसरों ने हमारे लिए तय की है।
1: लेकिन इतिहास गवाह है, हर महान व्यक्ति ने एक दिन यह तय किया कि वह दूसरों की सीमाओं में नहीं लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार जिएगा।
0: आपने महान नर्तकी सुधा चंद्रन के बारे में अवश्य सुना होगा। जिस दिन उन्होंने सोच लिया कि कृत्रिम पैर के साथ वो नृत्य करके दिखाएंगी, एक इतिहास रच दिया गया।
1: और श्रोताओं, आपने पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा के बारे में भी सुना होगा कि एक पैर खोने के बाद भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। जी हाँ प्रिय विद्यार्थी, श्रोता मित्रों, आपसे कहना चाहते हैं शायद आपके भीतर भी कोई ना कोई सपना है, कोई प्रतिभा है, कोई ऐसा कार्य है जिसे करने से आप डर रहे हैं। हो सकता है लोगों ने आपको बार बार निराश किया हो, लेकिन याद रखिए, दूसरे लोग आपकी पहचान तय नहीं कर सकते।
0: आपका भविष्य आपकी परिस्थितियां नहीं बल्कि आपका विश्वास तय करता है। यदि बाज अपने पंखों पर विश्वास करे तो आकाश उसका है, और यदि मनुष्य अपनी क्षमता पर विश्वास करे तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं।
1: तो हम कहना चाहते हैं,
0: अपने पंखों पर विश्वास कीजिए, और हाँ, किसी और से अपनी तुलना मत कीजिए, क्योंकि
1: आप हैं।
0: बिल्कुल।
1: आशा है आपको हमारी प्रस्तुति अवश्य पसंद आई होगी। श्रोताओ, यदि आई तो जरूर लिख भेजिए प्रोत्साहन के दो शब्द। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से श्रोताओ, आज का प्रश्न है, नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की?
1: आप हमारे प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए

0: ये एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ, इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और इन्हीं पुस्तकों को यदि आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी सुनना चाहते हैं तो आपको जाना होगा एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर। इस चैनल पर जाकर आप हमारी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप सुन सकते हैं। तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम पानी रे पानी, जल है तो कल है।
0: कार्यक्रम में जल की दुर्लभता को समझाते हुए बताया गया है कि पृथ्वी पर पेयजल की मात्रा बहुत ही कम है, शेष खारा जल है, इसलिए हमें जल बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए।
1: साथियों नमस्कार, पिछली बार आपने सुना था कार्यक्रम पानी रे पानी। इस कार्यक्रम में आपने सुना था एक कविता के माध्यम से जल चक्र की प्रक्रिया के बारे में। आइए अब सुनते हैं इसी कार्यक्रम का दूसरा भाग पानी रे पानी, जल है तो कल है।
2: प्यारे बच्चों और साथियों, मैं हूं तुम्हारी दोस्त झुमकी।
3: और मैं हूं झुमरू।
2: नमस्कार।

0: तो झुमकी, आज हम बच्चों से क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
1: ये तो बहुत सही सवाल किया है आपने। आज हम चर्चा करेंगे, किस पर?
2: जल बचाओ।
0: तो झुमकी क्यों?
1: वो इसलिए क्योंकि इन दिनों पानी की समस्या ही सबसे बड़ी है।
0: हाँ,
1: तो चलो शुरू करें।
0: और हाँ बच्चों, तुम्हें भी तुक मिलाना है, समझे?
2: जी झुमरू जी।
0: चलो झुमकी।
1: ठीक है, तो चलो मैं शुरू करती हूँ। बंद रखो तुम नल हर दम, नहीं हो जब उपयोग, जल की एक एक बूंद का सदा करो सदुपयोग।
0: करते हो जब ब्रश तो नल को खुला कभी ना छोड़ो, नित्य प्रतिदिन ऐसा करके बूंद बूंद तुम जोड़ो।
3: झुमरू जी, किताबों में हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है, तो इसका मतलब हुआ पृथ्वी पर बहुत पानी है।
0: हाँ,
4: लेकिन यदि इतना पानी है तो पानी की कमी क्यों है?
1: क्योंकि इसमें से समुद्र का 96% जल खारा है और ये पीने योग्य नहीं है, है ना झुमरू जी?
0: हाँ बच्चों, पृथ्वी का सिर्फ 3.5% पानी ही पीने योग्य है, जिसमें से कुछ हिस्सा ग्लेशियरों में बर्फ के रूप में संरक्षित है।
3: लेकिन जल बचाने के लिए हम बच्चे क्या कर सकते हैं?
1: बहुत अच्छा सवाल किया है ये तो। चलो, बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं।
0: जैसे?
1: जैसे हम स्नान करते समय जल का उपयोग कम कर सकते हैं, है ना? और क्या कर सकते हैं?
0: बताओ।
1: मैं नहीं, अब बच्चे बताएंगे।
0: ठीक है।
1: बताओ।
4: यदि हम किसी नल से पानी टपकता हुआ देखें, तो हम उसे तुरंत बंद कर सकते हैं।
1: और
3: यदि बनना हो तो हम किसी बड़े को बता सकते हैं।
0: हाँ,
1: बहुत अच्छे।
0: हाँ, ताकि उसकी मरम्मत हो जाए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
4: यानी हम बच्चे भी जल बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं।
1: तो अब हो जाए सबके लिए जोरदार
2: तालियां।
0: अच्छा, अब ये बताओ बच्चों, तुम में से किस किस के पास गुल्लक है?
2: मेरे पास बहुत बड़ी पैसे।
0: अरे वाह।
1: तो फिर ये पृथ्वी भी

0: एक गुल्लक ही हुई ना, है ना, है ना, है ना, बोलो। जैसे गुल्लक में पैसे बचाते हैं, वैसे ही इस बड़ी सी गुल्लक में हम क्या बचा सकते हैं?
1: जल।
2: तो झुमकी, क्यों ना हो जाए इस पर एक सुंदर सी कविता। लेकिन लेकिन लेकिन ऐसी वैसी कविता नहीं, बल्कि तुक मिलाने वाली।
0: आपने तो मेरी मन की बात कह दी।
2: तो,
0: चलिए
2: शुरू हो जाओ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये लीजिए। ये पृथ्वी मेरी गुल्लक है, हम इसमें जल बचाएंगे। आप भी कहिए।
2: हाँ हाँ, बूंद बूंद हम जल बचाकर। बच्चो अब तुम्हारी बारी है।
1: जीवन सुखद बनाएंगे,
0: जीवन सुखद बनाएंगे, हाँ जीवन सुखद बनाएंगे।

0: बस फिर क्या था, बच्चों ने थोड़े दिनों के बाद एक समूह बनाया, नाम रखा बाल जल प्रहरी।
1: और फिर बच्चों ने संभाली अपने अपने घरों और कस्बे में जल संरक्षण यानी पानी बचाने की जिम्मेदारी।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम पानी रे पानी, जल है तो कल है।
3: मेरा नाम साक्षी है, मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त रात को एक कार सामने चल रही थी, उसने अचानक से ब्रेक मारा। और उसकी टेल लाइट ही नहीं चली, बस एक छोटा सा डिम बल्ब था, वो भी धुंधला सा। मुझे लगा मैं सीधा टकरा जाऊंगी, एक छोटा सा बल्ब ही तो है, पर अगर ना चले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता।
4: वाहन चलाते समय टेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है, ताकि पीछे आने वालों को समय पर संकेत मिल सके।
2: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम हसरत मोहानी।
5: ये कार्यक्रम उर्दू के महान साहित्यकार जनाब हसरत मोहानी के जीवन और साहित्यिक उपलब्धियों पर आधारित कार्यक्रम हसरत मोहानी।
6: चुपके चुपके रात दिन, आंसू बहाना याद है हमको अब तक आशिकी का, वो जमाना याद है।
7: सैयद फजलुल हसन नाम और हसरत तखल्लुस। 1875 में कस्बा मोहान, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। बास किताबों में उनका सने पैदाइश 1880 और 1881 भी मिलता है। वो एक कामयाब शायर और बेबाक सहाफी होने के साथ साथ एक सरगर्म सियासतदान और मुजाहिदे आजादी भी थे। अरबी फारसी की इब्तदाई तालीम मकतब में हासिल की। 1898 में गवर्नमेंट हाई स्कूल फतेहपुर से मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद 1899 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मौजूदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। हजरत ने 12 साल की उम्र में शेर कहना शुरू कर दिया था। 1903 का साल हसरत की जिंदगी में बड़ी अहमियत रखता है। उन्होंने बीए का इम्तिहान पास किया। इसी साल वो अपने बागियाना ख्यालात की वजह से कॉलेज से निकाले गए। अब हसरत अलीगढ़ के मोहल्ला रसलगंज में किराए पर मकान लेकर रहने लगे। 1903 ही में हसरत ने एक इल्मियो अदबी रिसाला उर्दुए मौल्ला जारी किया। ये सिलसिला आखिर उम्र तक जारी रहा। उर्दुए मौल्ला में अदबी और सियासी दोनों तरह के मजामीन शाये हुए थे। हसरत मोहानी ने इसके जरिए कौमी इत्तेहाद, सेकुलरिज्म और कामिल आजादी की आवाज

0: चकत भी।
1: वाह क्या बात है, है मश के सुखन जारी,
2: चक्की की मशक्कत भी।
1: वाह
0: एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी।
1: एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत।
3: क्या बात, क्या बात।
0: बाद में मुंतजमीन ने उनकी खिदमत में लिफाफा पेश किया।
1: जना क्या खूब गजल कहते हैं आप।
2: मोहानी साहब मुशायरे की रौनक बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी शुक्रिया तो आप सब जनाब का, आपने इस नाचीज को मौका दिया।
1: आप इतनी दूर से यहाँ आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, ये लिफाफा हमारी तरफ से।
0: जी नहीं नहीं नहीं
2: मोहानी साहब, ये तो महज टिकट का खर्च है जनाब।
0: माफ कीजिए मुझे सफर का खर्च नहीं चाहिए। नहीं दरहकीकत बात यह है कि मैंने सफर पर कुछ खर्च ही नहीं किया है।
1: क्या
0: जी, एक गार्ड मुझे अपने साथ डिब्बे में बैठा कर ले आया, टिकट तो नाचीज ने खरीदा ही नहीं।
2: अरे मोहानी साहब
0: शेरो शायरी पसंद करते हैं वो गार्ड साहब, चंद अशआर सुनाए सुकून से सफर कट गया। बस वो आज वापस जा रहे हैं गार्ड साहब, वे टिकट हम फिर से वापस चले जाए।
1: आप भी मोहानी साहब। लेकिन मोहानी साहब नाचीज को इतनी खिदमत का मौका तो थी।
0: नहीं माफ कीजिए ये तो आपके साथ ज्यादती होगी, मैं खामखा खर्च कैसे ले सकता हूँ आपसे।
2: मोहानी साहब खामखा खर्च कैसा।
0: देखिए जनाब जब मैंने कुछ टिकट पर खर्च ही नहीं किया तो आपसे इखराजात लेने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता।
1: मोहानी साहब आपसे लफ्जों में नहीं जीत सकते हम। ठीक है जैसे आपकी मर्जी।
4: उस जमाने में स्वदेशी तहरीक शुरू हो चुकी थी। इस तहरीक का मतलब था कि अपने ही मुल्क की बनी हुई चीजें खरीदी और इस्तेमाल की जाएं, विदेशी माल का बायकॉट किया जाए। उन्होंने खद्दर का इस्तेमाल पहले ही शुरू कर रखा था। अवाम में भी स्वदेशी माल के इस्तेमाल को राइज करने के लिए हसरत ने अलीगढ़ के मोहल्ला रसलगंज में एक स्वदेशी स्टोर खोला जो कामयाबी से चला। 1920 में हसरत अलीगढ़ को खैरबाद कहकर कानपुर आ गए और यहाँ भी एक स्वदेशी स्टोर कायम किया। हसरत मोहानी अपने एक दोस्त के घर में मेहमान थे, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी।
1: अरे लीजिए ना हसरत साहब, थोड़ा तो और लीजिए।
2: बस बस भाई अब तो बहुत ज्यादा हो गया।
1: आपने कुछ खाया ही नहीं।
2: कुछ नहीं खाया, यहाँ गला कह रहा है कि माफ करो भाई खाना गले तक आ गया। वैसे आज ठंड कुछ ज्यादा ही नहीं पड़ रही।
1: जी बजा फरमाया आपने, आज तो भला की ठंड है। मैं अभी आपको कंबल देता हूँ, ये लीजिए। आपका सोने का इंतजाम यहाँ कर दिया है, अब आप आराम करें।
0: इतना खूबसूरत और मुलायम कंबल।
1: जी और काफी गर्म भी है। इसको ओढ़ के चैन से सोइए।
0: शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी शब्बा खैर।
0: शब्बा खैर।
2: बला की ठंड है लेकिन इतना कीमती और मुलायम कंबल, लगता है विदेशी माल है। नहीं नहीं नहीं ये मैं नहीं ओढ़ सकता, मैं मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ देसी चीजें ही इस्तेमाल करने का हक है और यही मेरा फर्ज भी है। तो जनाब कंबल जी आप तशरीफ उधर ले जाए।
0: अरे हसरत तू रात बेकंबल ही गुजार ले।

0: हसरत रात भर सर्दी में कांपते रहे मगर वो कंबल नहीं ओढ़ा, इस ख्याल से नहीं ओढ़ा कि ये विदेशी माल है। हसरत एक सच्चे मजहबी इंसान थे। उन्होंने नात और मनकबत के अलावा श्री कृष्ण की शान में भी अशार लिखे हैं।
1: मथुरा कि नगर है आशिकी का, दम भरती है आरजू उसी का, बरसाना ओ नंदगांव में भी देख आए हैं जलवा हम किसी का, पैगाम हयात जाविदा था हर नगमा कृष्ण बांसुरी का।
0: अंग्रेज हुकूमत को हसरत मोहानी की सियासी सरगर्मियां कतई पसंद नहीं थी। 1913 में उनका प्रेस जब्त कर लिया गया। 1916 में उन्हें दोबारा जेल भेज दिया गया। 1918 में रिहाई मिली तो आजादी की जिद्दोजहद में फिर मसरूफ हो गए। हसरत मुकम्मल आजादी का मुतालबा करने वाले हिंदुस्तान के पहले मुजाहिदे आजादी थे। हसरत मोहानी को तीसरी बार 22 अप्रैल 1922 को 2 साल के लिए जेल भेजा गया। 1942 में हसरत कानपुर से यूपी असेंबली के मेंबर चुने गए और फिर पार्लियामेंट के मेंबर हुए। तहरीके आजादी के सिलसिले में उन्हें रईसुल एहरार के लकब से याद किया गया। उनका इंतकाल 13 मई 1951 को लखनऊ में हुआ। आज वो फिरंगी महल लखनऊ के कब्रिस्तान अनवार बाग में दफन हैं।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम हसरत मोहानी, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। 11:30 हुए हैं। अब से लेकर 11:55 तक हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे।

0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में ये पेशकश अभी आप सुन रहे थे। हम किसी से कम नहीं फिल्म का नाम था, मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, आर डी बर्मन की तर्ज थी।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा।

फाल्गुनी पाठक की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, मेरी चूनर उड़ उड़ जाए एल्बम से। ललित सेन का म्यूजिक था और उन्होंने इसे लिखा।

0: अभी हम विविध भारती के कार्यक्रम रिले कर रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। 11:55 होने वाले हैं। कुछ ही क्षणों के बाद प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में पानी भरने की घटना में मारे गए छत्तीसगढ़ के 4 श्रमिकों के परिजनों को राज्य सरकार 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना पर परीक्षा निरस्त कर घटना की जांच के लिए समिति बनाई गई। और जनजाति कारीगरों को मंच प्रदान करने आज धमतरी में कारीगर सूचीबद्धता मेले का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड के चमोली जिले के पीपलकोटी में पिछले सप्ताह निर्माणाधीन सुरंग में पानी भरने की घटना में मारे गए कोंडागांव जिले के 4 श्रमिकों के परिजनों को छत्तीसगढ़ सरकार 5-5 लाख रुपए तथा हादसे में घायल 2 श्रमिकों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुरंग हादसे में श्रमिकों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। इस हादसे में कोंडागांव जिले के ग्राम धनसुली के 2, मदनार के 1 और दहीकोंगा के 1 श्रमिक की मृत्यु हुई है, जबकि जिले के 2 श्रमिक घायल हुए हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में बीएससी द्वितीय वर्ष की एंटोमोलॉजी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने सख्ती दिखाई है। उन्होंने तत्काल जांच समिति गठित करने और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। विश्वविद्यालय ने परीक्षा निरस्त कर 5 सदस्यीय जांच समिति बनाई है। मंत्री ने कहा कि जांच के बाद दोषियों पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निरस्त परीक्षा की नई तिथि जल्द घोषित की जाएगी। महाराष्ट्र के हिवरे बाजार में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में बालोद जिले की 2 महिला सरपंचों ने छत्तीसगढ़ के ग्रामीण विकास के अनुभव साझा किए। ग्राम पंचायत गुजरा की सरपंच पार्वती मंडावी और दुधली की सरपंच पिलेश्वरी नेताम ने महिला सशक्तिकरण, स्व सहायता समूह और कौशल विकास की पहल की जानकारी दी। श्रीमती मंडावी ने बताया कि महिला समूह द्वारा आम के पौधों का रोपण कर आजीविका और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं श्रीमती नेताम ने कहा कि कौशल प्रशिक्षण से गांव के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं। जनजाति कारीगरों, स्व सहायता समूहों, वनधन विकास केंद्रों, किसान उत्पादक संगठनों और स्थानीय उद्यमियों को मंच प्रदान करने के लिए आज धमतरी के आजीविका महाविद्यालय में जनजाति कारीगर सूचीबद्धता मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में

0: भाग लेने वाले पात्र जनजातीय कारीगरों और उत्पादक समूहों का ट्राइफेड के साथ एम्पैनलमेंट किया जाएगा। पंजीकृत होने के बाद ये कारीगर देशभर में आयोजित होने वाली प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रदर्शनी, जनजाति मेलों और ट्राइफेड के प्रमुख ट्राइब्स इंडिया बिक्री केंद्रों के माध्यम से अपने उत्पाद बेच सकेंगे। गौरेला पेंड्रा मरवाही के जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में आज सुबह 10 बजे से रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। रोजगार मेला गौरेला स्थित शासकीय आईटीआई परिसर में शाम 4 बजे तक आयोजित होगा। बिलासपुर जिले के रेलवे स्टेशन से रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ और जिला पुलिस की टीम ने 21 किलो गांजे के साथ एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी पति पत्नी ट्रॉली बैग में छिपाकर गांजे की तस्करी कर रहे थे। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए से अधिक बताई जाती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में पानी भरने की घटना में मारे गए छत्तीसगढ़ के 4 श्रमिकों के परिजनों को राज्य सरकार 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना पर परीक्षा निरस्त कर घटना की जांच के लिए समिति बनाई गई और जनजाति कारीगरों को मंच प्रदान करने आज धमतरी में कारीगर सूचीबद्धता मेले का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं और अब हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे।
2: के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक चल रही है। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीले डिजिटल बुनियादी ढांचा में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसानों तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें एक पहल प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले कई वर्षों में इस योजना के तहत बजट आवंटन में काफी वृद्धि हुई है। योजना के अंतर्गत 2024-25 में वास्तविक खर्च लगभग 5,400 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2026-27 में बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पत्र के साथ एक पोस्ट साझा की। पत्र में श्री वैष्णव ने बताया कि शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर के रास्ते जम्मू तवी और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को मंजूरी दे दी गई है। इससे संपर्क सुविधा बेहतर होगी और रेल यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने अंतर्राज्यीय डिजिटल अरेस्ट साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ कर पंजाब और राजस्थान से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां भारतीय सेना के एक सेवानिवृत्त कर्नल से 15 लाख रुपए से अधिक की कथित ठगी के मामले में की गई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 स्मार्टफोन और 6 सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। मुंबई के कुर्ला पूर्व इलाके में आज तड़के एक क्रेन के घरों पर गिर जाने से 8 लोग घायल हो गए। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने बताया है कि घटना के बाद घायलों को अस्पताल ले जाया गया। सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज सुबह इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में चिकित्सकीय जांच के बाद रावलपिंडी की अदियाला जेल वापस भेज दिया गया। उन्हें आधी रात के बाद शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया गया था। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 दिन के भीतर अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया था। इमरान खान को भ्रष्टाचार समेत कई मामलों में 5 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वे रावलपिंडी की अदियाला जेल में हैं। ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर

0: नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। अमरीका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिन में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। जम्मू कश्मीर में स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने कर्मचारियों के लिए व्यापक स्थानांतरण नीति अधिसूचित की है। इसका उद्देश्य तबादलों और नियुक्तियों में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता लाना है। सरकार ने कहा है कि इस नीति का समग्र उद्देश्य विशेष रूप से दूरस्थ और कम सुविधा प्राप्त क्षेत्रों में मानव संसाधनों का संतुलित उपयोग, कर्मचारियों का समान वितरण, कुशल प्रशासन और निर्बाध शैक्षणिक कार्य संचालन सुनिश्चित करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77 अंक बढ़कर 77,615 जबकि निफ्टी 21 अंक की वृद्धि के साथ 24,253 पर कारोबार कर रहा था। एफआईएच हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार एम्स्टर्डम में रात 9:30 बजे शुरू होगा। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत आज जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: किस्से हैं, बातें हैं, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं।
1: यादें फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे, सुनिधि चौहान और महालक्ष्मी की आवाजों में। प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

वक्त जैसे ठहर गया है यही, हर तरफ एक अजब उदासी है, बेकरारी का ऐसा आलम है, जिस्म तनहा है, रूह प्यासी है।

0: अमिताभ बच्चन और अलका याग्निक की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे बागवान फिल्म से। समीर ने इसे लिखा, आदेश श्रीवास्तव का संगीत। आज यादों की महफिल में वो गीत जहां इंतजार है तड़प है, ऐसे गीत हम आपको आज इस प्रोग्राम में सुनवा रहे हैं।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: लता मंगेशकर की आवाज में गीत बॉबी फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

कयामत से कयामत तक, ये था फिल्म का नाम। अलका याग्निक, उदित नारायण की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और आनंद मिलन का संगीत। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम यादों की महफिल यहीं संपन्न हुआ।

नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत आप सबका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुरीला सफर। मैं हूं अनुराधा उपाध्याय, आज आपके साथ इस सफर में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम एक इबारत या टेक्स्ट हमारे फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हैं, जिसमें छुपे होते हैं कुछ शब्द जो आपको पहचानने हैं और बताना है कि उन शब्दों से कौन कौन से गीत आज इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। आपकी गीतों की लिस्ट मैं देख चुकी हूँ कमेंट बॉक्स में जाकर, और भी आपके कमेंट्स आ रहे हैं ये भी मैं देख रही हूँ, और देखते हैं कि आपके ये गीतों की लिस्ट या शब्द हमारे गीतों से कितने मिलते जुलते हैं, और अगर ना भी मिले तो भी आप अपने गीतों को, पसंदीदा गीतों को कमेंट्स में लिख सकते हैं, हो सकता है हम इस प्रोग्राम में उन्हें शामिल कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस प्रोग्राम की, और जिन श्रोताओं ने वो टेक्स्ट या इबारत नहीं पढ़ी है अब तक, हम उन्हें एक बार फिर से पढ़कर सुना देते हैं। इबारत इस प्रकार है, शाम का मौसम कुछ बदला बदला था, कई सालों बाद शहर में सावन इतनी खूबसूरती से आया था। खिड़की के पास बैठी एक लड़की बारिश को देख रही थी और जाने क्यों आज फिर उसे वही आवाज सुनाई दे रही थी। सुनिए, कुछ कहिए ना। सालों पहले इसी मौसम में एक अजनबी उससे मिलने हसीन वादियों में आया था। दोनों घंटों बारिश में भीगे थे, चांद को देखते और छोटी छोटी बातों पर हंसते। उसने कहा, तुम्हें पता है ये मौसम तुम्हारे आने से अच्छा लगता है।

फिर एक दिन उस परदेसी को दूर बहुत दूर जाना पड़ा। अब बस इंतजार उसका साथी बना। हर सावन में वही राहें, वही बरसात और वही शाम, वो ही उसके साथी थे। उसे उसकी याद दिलाते। आज भी बारिश की बूंदें खिड़की पर दस्तक दे रही थी, लेकिन अब के सावन में जी डरे, बेचारा दिल क्या करे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने उसे देखा, बस ये कहा, अब की तो रास्ता भूल गए, लेकिन अब कहीं ना जाना। बहुत प्यार से उसने कहा, मैं चांद चुरा कर तो नहीं ला पाया, लेकिन तुम्हारा इंतजार जरूर अपने साथ लेकर लौट आया हूं। तो साथियों, ये थी इबारत। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से शब्द आपने चुने हैं और कौन कौन से गीत आज इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

ये गीत अभी आप सुन रहे थे बातों बातों में फिल्म से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में, अमित खन्ना ने इसे लिखा और राजेश रोशन का संगीत। साथ ही आपके खूबसूरत प्यारे प्यारे कमेंट्स हम तक पहुंच चुके हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज इबारत उस इंतजार, उसी मोहब्बत और उस विश्वास की कहानी है जहां बरसों की दूरी भी दिलों के रिश्तों को कम नहीं कर पाती है। हालांकि संदेश बहुत लंबा है, लेकिन मैं चाहती हूं कि सभी के संदेश शामिल हो, इसीलिए कुछ पंक्तियां ले रही हूं। हमारे दूसरे श्रोता कहते हैं कि विरह प्रेम की वो निशब्द ऋतु है जिसमें स्मृतियां ही सहचर बन जाती है। प्रिय की अनुपस्थिति में हर आहट उसका आभास देती है। जब बरसों बाद दो निगाहें मिलती है तो लगता है जैसे सारी तन्हाइयां एक पल में सिमट गई है। बिल्कुल, हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि इबारत पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे सावन की हर बूंद किसी पुराने खत का भीगा हुआ अक्षर हो। बरसों का इंतजार, वही रास्ते, वही शामें और किसी की आवाज की बची हुई गर्माहट सब मिलकर दिल के उस कोने को फिर से भिगो देते हैं जहां मोहब्बत कभी विदा हुई ही नहीं थी। बहुत ही खूबसूरत विचार हैं ये। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि भारतीय साहित्य में सावन को हमेशा श्रृंगार रस के दोनों पक्षों यानी कि वियोग और संयोग से जोड़कर देखा गया है। कथा की शुरुआत में नायिका का खिड़की के पास बैठना और बारिश की बूंदों के साथ पुरानी स्मृतियों का उभरना, और काफी अच्छे तरीके से इन्होंने हमारे इस इबारत के बारे में लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता कहते हैं कि सावन का महीना तो है, ये जाहिर है, लेकिन गीत भी वैसे ही बजेंगे और हम कितनी भी बार ये गीत सुन लें लेकिन मन नहीं भरता है। तो इसीलिए बारिश नहीं है तो भी धूप के साथ हम आनंद उठाएंगे इस प्रोग्राम का। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि हालांकि सावन का महीना अपनी समाप्ति की ओर है, लेकिन सुरीला सफर में पूरे माह अलग अलग विषय पर मेला लगा है। कभी झूला, विरह, इंतजार, बारिश की फुहार, खाना पकौड़ी आदि, बहुत मजा आता है। और सावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी। एक और श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर का ये अंदाज बहुत ही निराला है जो कि हम श्रोताओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर मोतियों की तरह पिरो कर रखता है। सच में जिंदगी में सावन की बूंदे की तरह छम छम ये कार्यक्रम रंगारंग हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन संदेशों का। हम आते हैं कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स पर भी। फिलहाल हम एक गीत सुनवाने वाले हैं और आप सबने उसका जिक्र किया है अपने कमेंट में। वो बहुत ही प्यारा गीत है, वो आपको सुनवाने जा रहे हैं और उसके बाद हम आपके एक्सपीरियंसेस, आपके जो अनुभव है वो साझा अगर आप हमसे कर सकते हैं। जिस तरह से हमने इबारत लिखी है कि एक शाम वो मौसम, इस तरह का अगर कुछ आपको अपना अनुभव शेयर करना है, लिखना है, लिखें बहुत ही कम शब्दों में ताकि हम शामिल कर पाएं। चलिए इस प्रोग्राम के दूसरे गीत की तरफ बढ़ते हैं।

बालिका वधू इस फिल्म से। ये गीत अभी आप सुन रहे थे अमित कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी ने इसे लिखा, आर डी बर्मन की तर्ज। सुरीला सफर है और आपके संदेश हम तक पहुंच रहे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे संदेश। बालिका वधू, अमित कुमार, आनंद बख्शी, आपने पूरी डिटेल्स भेजी है इस गीत की और इस गीत को बहुत पसंद किया है, ऐसा सबने लिखा है। एक हमारे श्रोता है जिन्होंने इंग्लिश में मैसेज भेजा है और उनका मतलब ये है कि आज के इस प्रोग्राम में बारिश और लव सॉन्ग्स मेन अट्रैक्शन होगा। जी हाँ बिल्कुल। और हमारे दूसरे श्रोता हैं जो लिखते हैं, अपना एक अनुभव साझा करते हैं कि शाम का मौसम बहुत बदला हुआ था। पिछले हफ्ते मेरी धर्मपत्नी और मैं बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने कश्मीर गए थे। शाम के समय हम बाबा बर्फानी जी के गुफा पहुंचे थे और इस तरह से

मौसम का मजा लेते हुए जब वापसी में आ रहे थे तो लैंडस्लाइड होते हुए देखा, तेज बारिश, पत्थर गिरते देखे और यात्रा अगले कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दी गई। जी हाँ, बारिश जहाँ बहुत खूबसूरत लगती है, वहीं अगर अति हो जाए किसी चीज की तो परेशानी भी देती है। तो कहते हैं ना कि हर एक चीज सही मात्रा में, सही जगह, सही समय सही लगती है, और अगर वो ज्यादा हो जाए, अति हो जाए, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो जरूर देती है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि प्रेमी की तरह बरसात भी हमें काफी दिनों से तरसा रही है, और विविध भारती के सुरीले सफर में तो पिछले कुछ दिनों से गीतों की बौछार, सावन लगातार छाया हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। हम प्रार्थना करते हैं कि बारिश हो, हम भी आपके साथ हैं इसमें। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि बड़े अच्छे लगते हैं ये जो गीत है, इसमें वाद्य यंत्रों का बहुत ही कम इस्तेमाल किया गया है, जहाँ शब्दों की गहराई उभर कर आती है, और इसीलिए ये आवाज की ताजगी, थोड़ी सी हिचकिचाहट इस गाने के जो तरीके में चार चांद लगा देती है। बिल्कुल आपने सही पहचाना और बिल्कुल सही तरीके से इस गाने के बारे में लिखा है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि सावन की भीगी रातें इंसान को बाहरी दुनिया के शोर से काट कर खुद से रूबरू कराती है। ये वो जादुई वक्त है जब अंधेरा भारी नहीं लगता, बल्कि बारिश की चादर में लिपटकर हर रूह कुछ देर के लिए थमना चाहती है और सिर्फ सुनना चाहती है बाहर गिरती बूंदों की धुन और भीतर गूंजती अपनी ही खामोशी। बहुत ही खूबसूरती से आपने ये संदेश लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि ये मेरा पहला पोस्ट है, मैं आपका विविध भारती पूरा दिन सुनता हूँ और सुबह से चालू हो जाता है हमारा रेडियो सेट। प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, जो भी गाने आते हैं सब इन्हें बहुत पसंद है और पूरा दिन इनका बहुत अच्छे से गुजर जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन प्यार भरे संदेशों के लिए, हमें भी आपके ये संदेश पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। संदेशों में हमने एक बात कही थी अति की, तो कहते हैं ना कि इंतजार मोहब्बत का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा होता है। बहुत प्यारा लगता है वो वक्त जो किसी के इंतजार में, किसी के आने के इंतजार में गुजरता है और फिर उससे मिलने की चाह होती है, लेकिन ये कुछ मिनटों का या कुछ देर का होता है तो इंतजार अच्छा लगता है। अगर यही इंतजार बहुत घंटों का हो जाए, दिनों का हो जाए, बहुत ज्यादा वक्त का हो जाए तो अच्छा नहीं लगता, कहीं ना कहीं झुंझलाहट आ जाती है। तो क्यों ना इस बारे में बात की जाए, इंतजार क्या आपने भी किसी को करवाया है लंबा इंतजार, और क्या किसी ने आपका लंबा इंतजार किया है, उस बारे में कुछ अनुभव साझा कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा आपके संदेश पढ़ने में। तो इंतजार करना या करवाना, दोनों ही अजीब सी उलझन भी है और कष्टदायी भी है। तो आपने किसी को इंतजार करवाया हो या आपका किसी ने इंतजार किया हो बहुत लंबे समय तक, तो जरूर लिख भेजे, मैं इंतजार कर रही हूँ कमेंट बॉक्स पढ़ने का। तब तक दिल ये क्या करे,

बेचारा दिल क्या करे, खुशबू फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और आर डी बर्मन की तर्ज थी। जब तक ये गाना प्ले हो रहा था तब तक हम आपके कमेंट्स पढ़ रहे थे, आपके संदेश पढ़ रहे थे, यही दिल करे, और आपके संदेश हम तक पहुंच चुके हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे नागपुर में बारिश बरसने के बाद रुक गई थी, लेकिन आज बारिश का मौसम बना हुआ है, आकाश में काले काले बादलों का जमघट है, बहुत खूब। तो आप इस मौसम के साथ इन गीतों का आनंद उठाइए। हमारे एक और श्रोता लिखती हैं कि उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है कि वो क्या लिखें, क्योंकि विविध भारती पर आते तो हैं लेकिन उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, बीपी और सरदर्द की शिकायत है, तो कुछ सूझ नहीं रहा है कि क्या लिखना है। लेकिन नमस्कार उन्होंने लिखा है, और हमारा भी आपको नमस्कार, और हम चाहते हैं कि आपकी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए और प्यारे प्यारे गीतों का साथ बना रहे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। एक और श्रोता लिखते हैं कि बचपन की याद लिखते हैं वो, कि हम खेलते थे और माँ के डांट खाने के बाद घर पर आते थे और फिर भगवान के सामने बैठ जाते थे, प्रार्थना करते थे, दादी की नज़र हम पर कड़ी हुआ करती थी, बहुत डर लगता था और भगवान से प्रार्थना करते थे कि हमें ज़्यादा डांटना पड़े। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इंतजार की जब बात कही गई है तो इंतजार केवल किसी व्यक्ति का नहीं होता है, ये वक्त के बदलने का होता है, कामयाबी का होता है, या किसी अच्छे दिन के आने का भी होता है। ये जीवन को एक मकसद देता है कि आगे कुछ बेहतर होने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, इंतजार किसी का भी हो सकता है, क्योंकि जिंदगी के हर एक पड़ाव में हमारी जो प्रायोरिटीज होती हैं वो बदलती हैं, तो कब किस समय किसका इंतजार है ये जरूर अलग अलग होता है। तो आप हमारे साथ अपने अनुभव साझा कर सकते हैं, और कुछ बेहतरीन, कुछ दिलचस्प किस्से भी छोटे छोटे यानी कि कम शब्दों में हमें भेज सकते हैं, जिसे हम यहाँ पर पढ़कर सुना सके। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि बेचारा दिल जरूर आएगा, ऐसा उन्हें लगा था कि ये गाना जरूर प्ले किया जाएगा। चलिए हम भी खुश हैं कि आपकी ये पसंद हमसे मेल खाती है। फिलहाल चलते हैं हम अगले गीत की तरफ।

0: बड़े दिल वाला ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आर डी बर्मन की तर्ज और मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा।
1: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
2: रावड़ी राठौड़ में मेरा करेक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
3: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ

विविध भारती पर। सुरीला सफर आप सुन रहे हैं मेरे यानी आरजे अनुराधा के साथ इस वक्त, और हम बात कर रहे हैं इंतजार की। आपके संदेश मुझ तक पहुंच चुके हैं इंतजार वाले। तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जब कभी हम घूमने जाते हैं तो मैं और मेरा मित्र या तो मुझे काम आ जाता है तो वो इंतजार करता है, उसे बहुत काम आ जाता है तो मुझे बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है। थोड़ा चिढ़ जरूर जाता हूँ पर हम दोनों एक दूसरे पर चिढ़ जाते हैं, पर फिर प्यार भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इंतजार से। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि करीबन 5 साल पहले उन्हें एक काम हुआ था, एक काम के सिलसिले में उन्हें कहीं जाना पड़ा था दफ्तर में, और किसी बड़े अधिकारी ने उन्हें 5 घंटे का इंतजार करवाया, लेकिन इंतजार किया लेकिन आखिरकार वो काम करके ही लौटे। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि जितना हंसा था उससे ज्यादा उदास हूँ, आंखों को इंतजार ने सावन बना दिया है। ये हमारे गीत सुनकर इन्होंने ये पंक्तियां लिखी है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। हमारे एक और श्रोता लिखती हैं कि जब कभी पहले बारिश होती थी जब वो छोटी थी और बाबा काफी लेट आया करते थे, उस समय मोबाइल का जमाना नहीं था, फोन भी कुछ ही घर में हुआ करते थे, तो माँ काफी चिंतित हो जाती थी और भगवान के सामने बैठ जाती थी, प्रार्थना करती थी। बाबा आते थे काफी लेट भीग कर, और लेकिन उनके आने के बाद से टॉवल से पहुँच कर उन्हें और ये चाय वगैरह की सेवा में लग जाती थी, तो उस तरह की एक याद है उन्हें बारिश से रिलेटेड। जी हाँ, हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि इंतजार एक बहुत ही बोझिल प्रक्रिया है, जिंदगी के रंग बिरंगे लिबास में इंतजार का सुराग नहीं होना चाहिए, परंतु ऐसा होता कहाँ है, यहाँ तो हर पल दूसरे का इंतजार है, रातों को नींद का इंतजार है, सुबह को सुकून का, बारिश को मौसम का इंतजार है, मौसम को महीनों का, मुस्कुराहट को खुशी का इंतजार है, खुशी को सफलता का। जी हाँ, बहुत ही सुंदर संदेश इन्होंने लिखा है कि हर किसी को हर किसी का इंतजार है, हालांकि इंतजार किसी को अच्छा नहीं लगता लेकिन फिर भी हमें इंतजार तो करना पड़ता है सही वक्त का। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, किसी शादी का किस्सा लिखते हैं कि दुल्हन विदा हो ही नहीं रही थी और बहुत ज्यादा इंतजार किया, बहुत महीनों और सालों के बाद गौना हुआ और उसके बाद उनकी विदा की गई, और ये जो इंतजार है, लंबा इंतजार, उन्हें अभी तक याद है और ये रिवाज के चलते ऐसा हुआ था। जी हाँ, रीति रिवाज तो हमें फॉलो करने ही होते हैं। हमारे एक श्रोता है जो फिलीपीन से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और वो लिखते हैं कि बहुत दिनों की बारिश के बाद सूर्य देवता निकले हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जी हाँ, हम इंतजार की बात कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों का। और तो हम क्यों इंतजार करवाएं आपको अगले गीत का, सुनवाते हैं झट से अगला गीत।

देवता फिल्म से ये गीत अभी हमने आपको सुनवाया किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में, गुलजार ने इसे लिखा आर डी बर्मन की तर्ज। आप सुन रहे हैं इस वक्त सुरीला सफर। सुरीला सफर में आपके संदेशों का इंतजार है। जैसे कि मैंने कहा कि इंतजार शब्द जब आता है तो ये मोहब्बत का बहुत ही खूबसूरत हिस्सा माना जाता है। बहुत ही प्यारा लगता है जब वो वक्त, वो लम्हे, किसी के आने की इंतजार हम करते हैं। लेकिन अगर ये लम्हे और ज्यादा लंबे हो जाते हैं, घंटों महीनों के हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कष्टदायी होते हैं, तकलीफ देते हैं। तो क्या आपने भी कभी किसी को इंतजार करवाया है या किसी ने आपका इंतजार किया है? ये अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए। आपके संदेश हम तक पहुंच चुके हैं और कुछ संदेश बहुत ही दिलचस्प है कि किसी को इंतजार करना करवाना कितना अलग है। जब इंतजार लंबा होता है तो यकीनन अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अति हर चीज की बुरी होती है। आपके मैसेजेस हम तक पहुंच चुके हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि वो सीनियर सिटीजन है, लेकिन अपने बचपन की याद की अगर बात करें तो समर वेकेशन यानी कि गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार उन्हें हमेशा रहता था, और ये इंतजार बहुत ही सुख देने वाला होता था, बहुत ही आनंदित करने वाला होता था। जी हाँ, एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि कोलकाता में इस वक्त हैं वो, और वहाँ पर पंडाल की तैयारी हो चुकी है, लेकिन जब तक बारिश होती चली जाती है तो ये जो इंतजार है कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही, ये कहीं ना कहीं उलझन भरा है। तो इंतजार हर एक परिस्थिति में बहुत अलग होता है, कभी अच्छा होता है और कभी बुरा होता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि हमें इंतजार रहता है कि आप हमारे गीत कब हमारे इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो लीजिए, आपका जो कमेंट है, आपके जो संदेश है, इस प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

चुपके चुपके, ये था फिल्म का नाम जिसे गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी ने इसे लिखा, एस जी वर्मा की तर्ज थी। ये गीत का संगीत दिया था एस टी बर्मन ने। चुपके चुपके फिल्म का नाम एक बार फिर से आपको बता दें। आपके संदेशों से भर चुका है कमेंट बॉक्स और मैं देख रही हूं कि किसका संदेश पढ़ा जाए, क्योंकि एक साथ ही खूब सारे संदेश आ चुके हैं यहां पर। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उनका पसंदीदा गीत बज चुका है तो अब वो प्रोग्राम सुनेंगे या नहीं, लेकिन वो इस प्रोग्राम का इंतजार कर रहे थे। नहीं, हम चाहेंगे आप जरूर ये प्रोग्राम सुने और अंत तक सुने, बने रहे विविध भारती के संग। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज इस प्रोग्राम में इस इबारत ने तो सावन की झड़ी ही लगा दी है और खूबसूरत से गीत सुनने को मिल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ बारिश नहीं है, देवभूमि, द्वारका, जामनगर और पोरबंदर जैसे तहसील में बारिश नहीं है, इंतजार हो रहा है। बिल्कुल इंतजार कीजिए और इंतजार फल देता है, बिल्कुल फल देता है। और हम अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे, अगले गीत की तरफ चलेंगे। तो कुछ बताइए कौन सा गीत है, कमेंट में इंतजार रहेगा।

गीत चलते चलते फिल्म से अभी आपने सुना, अमित खन्ना ने इसे लिखा, बप्पी लहरी का संगीत। हमारे श्रोता लिखते हैं कि इस समय बनारस में धूप खिली हुई है और हम लोग आ ही गए हैं अपनी सुरीली धड़कन के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दूसरे श्रोता लिखते हैं कि प्यार में किसी का इंतजार करना इससे बड़ी परीक्षा और क्या हो सकती है। इस अनुभव से रूबरू हो चुका हूं मैं। 7 साल तक उसका इंतजार करना पड़ा, लेकिन मिलने के बाद जो सुकून का अनुभव हुआ उसको बयान नहीं किया जा सकता। एक और श्रोता लिखते हैं कि भाई हम तो कैब वाले का इंतजार करते हैं, बुक करो कैंसिल कर देता है, और बहुत जरूरी कहीं पहुंचना पड़ता है वो इंतजार जरूर करना पड़ता है, तो हार के बस पकड़ी है। इसका भी अलग ही मजा है ना। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि हमें सुरीला सफर का इंतजार रहता है, उसके बाद हेलो सहेली का भी इंतजार रहता है, तो विविध भारती के जितने प्रोग्राम है एक के बाद एक दूसरे का इंतजार हमें जरूर रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इंतजार करना सबके वश की बात नहीं होती। कोयल पूरा साल सिर्फ बसंत ऋतु का इंतजार करती है ताकि अपने सुहाने सुरीले बोलों से वादियों में अपनी आवाज घोल सके। जी हाँ, एक और श्रोता ने लिखा है, जाना कहाँ है इस गीत के बारे में। बप्पी दा ने इस गाने में बिल्कुल अलग अंदाज में ऊंचे और रफ नोट्स का इस्तेमाल किया है जो कि बेहद आकर्षक है, और उनकी जो आवाज है गाने की बीट्स के साथ पूरा न्याय कर पाती है। साथ ही सुलक्षणा जी की आवाज भी अत्यंत मधुर लगती है, और इस गाने का जो आलाप है वो हिस्सा बहुत ही अलग ही जादू बिखेर देता है। जी हाँ, बिल्कुल, हम भी इस चीज़ से बिल्कुल इत्तफाक रखते हैं, और अब बढ़ते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

0: लता मंगेशकर की आवाज में गीत स्वीकार किया मैंने फिल्म से, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यारे भरे संदेशों का। हम मिलेंगे जल्द ही, और सुरीला सफर से अनुराधा को दीजिए इजाजत।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 42वीं कड़ी।

1896 के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार कांग्रेस के मंच पर वंदे मातरम का गायन किया था।

0: सन 1900 से आगे हर अधिवेशन की शुरुआत वंदे मातरम से ही करने की परंपरा बन गई। उस वर्ष दक्षिणा रंजन सेन ने वंदे मातरम की संगीत रचना की थी। आगे थोड़े ही समय में शास्त्रीय संगीत जगत के पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर और उनके शिष्य ओंकारनाथ ठाकुर, पंडित विनायक बुआ पटवर्धन और पंडित रामकृष्ण बुआ वजे जैसे गायक अपने गायन के माध्यम से राष्ट्र सेवा की भावना से अधिवेशन में अपनी वंदे मातरम की गायन सेवा देने लगे। इसी काल में लोकमान्य तिलक के निधन के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की बागडोर गांधी जी के हाथों में आ गई। धीरे धीरे कांग्रेस की नीतियां बदलती गईं। कांग्रेस के हिंदू नेता धर्म निरपेक्षता का आग्रह कर रहे थे तो कुछ मुस्लिम नेता धर्म प्रेम को प्राथमिकता दे रहे थे। इसका परिणाम कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रसंग के रूप में सामने आया।
1: उन्नीस में आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन हुआ था। अली बंधुओं में से मौलाना मोहम्मद अली इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। पहले ही दिन मंच पर कांग्रेस के सभी नेता अध्यक्ष सहित उपस्थित थे। अधिवेशन शुरू होने की घोषणा हुई। दर्शकों में से एक ऋषि तुल्य व्यक्ति मंच पर आ रहे थे। दृष्टि कमजोर हो जाने के कारण उन्हें किसी का सहारा लेना पड़ रहा था। वो व्यक्ति थे भारतीय शास्त्रीय संगीत के भीष्माचार्य पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर।

0: मंच पर बैठे सभी लोग उठकर खड़े हो गए, सीने तक लटकती हुई दाढ़ी, सिर पर ऋषियों की तरह बंधे हुए केश, ऐसे शुभ्र वस्त्रधारी पंडित जी प्रसन्न चित्त से वंदे मातरम गाना शुरू करने ही वाले थे। तभी अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली ने अप्रत्याशित रूप से उन्हें रोकते हुए कहा, वंदे मातरम मत गाइए, मेरे धर्म में संगीत निषिद्ध माना गया है।
1: अचानक घटी इस घटना से मंच पर मौजूद कांग्रेस के प्रमुख नेता हक्के बक्के रह गए। अध्यक्ष का ऐसा कहना पंडित जी जैसे भारत के सर्वश्रेष्ठ गायक का अपमान तो था ही, साथ ही खुदीराम बोस से लेकर अनेक क्रांतिकारियों ने अपने बलिदान से सिद्ध किए हुए तथा बंगाल के विभाजन को रद्द करवाने वाले इस राष्ट्र मंत्र का भी अपमान था। सामने खड़ा जनसमुदाय स्तब्ध था। पंडित जी ने अपने ऋषि तुल्य स्वभाव के अनुसार जरा भी विचलित हुए बिना शांत फिर भी स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया,
0: माननीय अध्यक्ष महाराज, ये कांग्रेस का मंच है, किसी भी धार्मिक समुदाय का मंच नहीं है। मैं हमेशा की परंपरा के अनुसार वंदे मातरम गाऊंगा ही।
1: अध्यक्ष सभा स्थल छोड़कर चले गए। पंडित जी ने शांतिपूर्वक वंदे मातरम का गायन शुरू किया। गायन समाप्त होते ही पूरे जन समुदाय के वंदे मातरम के नारों से परिसर गूंज उठा। उसके अगले अधिवेशन में पंडित जी वंदे मातरम गाने के लिए नहीं आए। वंदे मातरम का मुस्लिम समाज द्वारा पहला सार्वजनिक विरोध इसी प्रसंग में हुआ था।
0: एक अत्यंत महान कलाकार द्वारा अपनी अस्मिता को बनाए रखते हुए अपनी कला के माध्यम से लोगों को अपनी राष्ट्रभक्ति के दर्शन कराना, ये बिल्कुल नई बात थी। जिस काल में कलाकार राजनीति के ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ते थे या बाहरी दुनिया से अधिक अपनी कला की दुनिया में ही रमते थे, उस काल में पंडित पलुस्कर ने जो धैर्य दिखाया वो अतुलनीय कहा जाना चाहिए। 1902 में भारत में संगीत की पहली ध्वनि मुद्रिका यानी ग्रामोफोन रिकॉर्ड प्रकाशित हुई। ध्वनि मुद्रण के इस पहले दौर में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर की तरह ही भारत के अनेक श्रेष्ठ गायकों ने रिकॉर्ड के लिए गायन नहीं किया था। इसके कई कारण थे, परंतु उन कारणों से उनके समय में रिकॉर्डिंग तकनीक का आविष्कार हो जाने पर भी उन्होंने रिकॉर्ड के लिए गायन न करने के कारण आज के शोधार्थियों के लिए, अभ्यार्थियों के लिए, अध्येताओं के लिए और संगीत प्रेमियों के लिए उनके गायन के बारे में लिखे गए संगीत संबंधी लेखों से, स्मृतियों से ही उनकी गायकी का उन्हें दर्शन मिलता है। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा किया गया वंदे मातरम का राग काफी में नोटेशन आगे उनके संगीत अध्यापन की विरासत को समर्थ रूप से आगे बढ़ाने वाले उनके शिष्य पंडित विनायक बुआ पटवर्धन ने प्रकाशित किया। पंडित विनायक बुआ की आवाज में यह दुर्लभ ध्वनि मुद्रण घोष महर्षि बापूराव दाते ने स्वयं किया था।

काल के समय में यही संगीत रचना विदुषी वीणा सहस्त्रबुद्धे द्वारा एक संगीत समारोह में प्रस्तुत की गई। उस समारोह का तथा आज की पीढ़ी के गायक पंडित शौनक अभिषेकी और साथियों के स्वर में ध्वनि मुद्रण प्रकाशित हुआ है। पहले सुनते हैं विदुषी वीणा सहस्त्रबुद्धे के स्वर में वंदे मातरम की झलक।

0: पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने जब वंदे मातरम को स्वरबद्ध किया था, उन्हीं दिनों में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन को एक नई दिशा मिल रही थी।
1: जुलाई 1937 में चुनाव हुए, प्रांतीय मंत्रिमंडलों की स्थापना हुई, 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की प्रांतीय सरकारें आईं। उनमें से मद्रास विधानसभा के शपथ ग्रहण कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम के गायन से ही हुई थी। मद्रास विधानसभा के अध्यक्ष सांबु मूर्ति ने दैनिक सभा कार्य की शुरुआत वंदे मातरम से ही हो ऐसा निर्णय अंग्रेजों के विरोध को दरकिनार करके लिया था।
0: इन सभी मंत्रिमंडलों की मुख्य बागडोर अंग्रेजों ने अपने हाथ में रखी हुई थी, फिर भी थोड़े बहुत अधिकार कांग्रेस को भी थे ही। मुस्लिम लीग के कुछ उम्मीदवार चुनकर आए, परंतु उन्हें बहुत कम सीटें मिली, इसलिए बैरिस्टर जिन्ना ने कांग्रेस पर आलोचना शुरू कर दी और उसमें वंदे मातरम को भी मुख्य निशाना बनाया। आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।
2: आप सुन रहे थे वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की 42वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, तकनीकी सहयोग किरण बंग, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
3: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
4: मिलो जो तुम्हें बताए।
3: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
5: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
3: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत और ब्राजील ने पुणे में ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग डिजिटल नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 वर्ष किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ बैठक की। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जवानों को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि इससे पहले एसएसबी के कार्यक्रमों में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने इनमें शामिल होना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीमा सुरक्षा के लिए पूरा सहयोग दिया जा रहा है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है। और घुसपैठ रोकने की पूर्व शर्त है कि सीमा को पूरा बना, सीमा पर बाड़ को पूरा लगा दिया जाए।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठ रोकने के लिए ममता बनर्जी से बार बार अनुरोध किए जाने के बावजूद जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई। उन्होंने बंगाल के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर करीब 189 करोड़ रुपए की लागत से एसएसपी के कई शिविरों के निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी गई। गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से सीमा सुरक्षा में तैनात जवानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। भारत और ब्राजील ने दूरसंचार तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दूरसंचार विभाग ने बताया है कि यह समझौता ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग हुआ। दूरसंचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगा। एक रिपोर्ट।
2: पुणे में आयोजित 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक से इतर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ब्राजील के संचार मंत्री फेडरिको डी सिक्वेरा फिल्हो के बीच हुआ। ये समझौता ज्ञापन दूरसंचार, डिजिटल बुनियादी ढांचे और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में व्यवस्थित सहयोग के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करता है। इस साझेदारी का उद्देश्य दोनों देशों में समावेशी, सुरक्षित और मजबूत डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देना है। भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के संदर्भ में ये समझौता बेहद महत्वपूर्ण है। भारत ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार मानकों के क्षेत्र में अधिक सहयोग की वकालत करता रहा है। भारत ब्राजील समझौता दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी का भी एक हिस्सा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज़।

0: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक जारी है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीली डिजिटल अवसंरचना में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। उद्घाटन भाषण में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया की प्रतिबद्धता से प्रेरित लचीले, विश्वसनीय, नवोन्मेषी, सशक्त और समावेशी भविष्य के लिए भारत के दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत की।
1: पिछले एक दशक में ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के एक प्रमुख मंच के रूप में उभरा है, जो लगभग आधी मानवता और प्रतिभा तथा नवाचार के अपार भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। अब हमारा ध्यान संस्थाओं के निर्माण से आगे बढ़कर सहयोगात्मक पहलों को लागू करने की ओर विकसित होना चाहिए।
0: ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर में हो रही है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों का स्वागत किया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राजस्थान भारत की सदियों पुरानी विरासत, जीवंत संस्कृति और अद्वितीय आतिथ्य सत्कार का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अतिथि अपने प्रवास के दौरान राज्य की परंपराओं की गर्मजोशी और समृद्ध का अनुभव करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाएं देने के संबंध में विधि स्नातकों के लिए अनिवार्य 3 वर्ष की वकालत की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। न्यायालय ने इस बारे में पिछले वर्ष के अपने ही फैसले में संशोधन किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एजी मसे और के विनोद चंद्रन की पीठ ने पुनः समीक्षा को खारिज करते हुए 2-1 से ये फैसला दिया। एक रिपोर्ट।
2: पीठ ने कहा कि 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच अधिसूचित न्यायिक सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार पूर्व अनुभव के बिना भी पात्र होंगे। हालांकि इन परीक्षाओं में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति शुरू में प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के रूप में होगी। उन्हें न्यायिक अकादमी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद 1 वर्ष के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 मई को नए विधि स्नातकों को प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा देने से रोक दिया था और इसके लिए कम से कम 3 वर्ष की कानूनी वकालत अनिवार्य की थी। समाचार कक्ष से दीपेंद्र कुमार।
0: झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी, सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है।
3: झारखंड हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी, सीजीएल और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और जेपीएससी को आगामी 7 सितम्बर तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि विज्ञापन और नियुक्तियों को अचानक रद्द करने का सरकारी फैसला नियमों के अनुकूल नहीं है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर तय की है। इससे पहले कल जेपीएससी नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी आदेश पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर और पूरे एशिया के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। सिंगापुर में भारत सिंगापुर कारोबारी मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत की मजबूत आर्थिक विकास यात्रा, निवेश के अवसरों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कारोबार सुगम बनाने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री गोयल ने सिंगापुर के विदेश मामलों और व्यापार तथा उद्योग राज्य मंत्री गन सियो ह्वांग तथा अन्य गणमान्य लोगों से भी मुलाकात की। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। नई सेवा से लोगों को यात्रा का एक और विकल्प मिलेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस के उधमपुर स्टेशन पर रुकने की

0: सुविधा का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है। इसे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। नई वंदे भारत उन यात्रियों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है जिन्हें नौकरी, कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी कामों के सिलसिले में जम्मू श्रीनगर आना जाना पड़ता है। अब उन्हें इस सेवा का लाभ लेने के लिए पहले जम्मू या किसी अन्य स्टेशन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उधमपुर से ही जम्मू से श्रीनगर तक की यात्रा की जा सकेगी। गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान को विश्व में इतिहास के सबसे बड़े समन्वित आर्थिक अलगाव का सामना करना पड़ेगा। एक साक्षात्कार में श्री बेसेंट ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों और कंपनियों पर द्वितीय प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के आर्थिक उपायों को ध्वस्त करने की धमकी दी थी। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इन आर्थिक धमकियों को खारिज कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में अराक्ची ने कहा कि ये धमकी अमरीकी जनता का अपने घरेलू वित्तीय समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए दी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान से जुड़े महत्वपूर्ण जलमार्गों को मुख्य रूप से नियंत्रित कर रहा है और जल्द ही उन पर पूरा कब्जा कर लेगा। एक रिपोर्ट।
2: एक निजी रेडियो चैनल के साथ साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमरीकी सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया और कहा कि अमरीका के लोगों को इस संघर्ष के कारण पेट्रोल और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं दिए जाएंगे और दावा किया कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन बनाने की क्षमता काफी हद तक कम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ईरान में बढ़ती महंगाई, कमजोर मुद्रा और सैन्य कर्मियों को वेतन नहीं मिलना उस पर बढ़ते दबाव के संकेत हैं। श्री ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होते तो वह इसराइल और पश्चिम एशिया के अन्य देशों पर हमले कर सकता था। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान की मिसाइलों ने सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन को निशाना बनाया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: अमेरिका ने क्यूबा के निर्माण, खनन और धातु क्षेत्रों से जुड़ी 9 सरकारी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। साथ ही क्यूबा की सरकारी कंपनियों के साथ कारोबार करने वाले अमेरिकी नागरिकों पर भी पाबंदियां कड़ी कर दी गई हैं। क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो की 100वीं जयंती से जुड़े समारोहों से वापस आने वाले नागरिकों को अमेरिका म्यामी हवाई अड्डे पर कुछ देर के लिए हिरासत में लिया गया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है और कई नदियां उफान पर हैं।
3: मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में सक्रिय मौसम प्रणाली के कारण कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने आज निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर समेत 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में अगले 24 घंटे के दौरान 4 से 8 इंच तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिन में बारिश का असर धीरे धीरे मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: भारत के त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने असाधारण दृढ़ता और शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए पहले सेट में पिछड़ने के बाद वापसी की और चौथी वरीयता प्राप्त चीन की जिया यीफेन और झांगशू शियान को हराया। इस जीत के साथ त्रिशा और गायत्री ने प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर लिया है। ये 15 वर्ष में विश्व चैंपियनशिप में महिला डबल्स में भारत का पहला पदक होगा। भारतीय महिला टीम आज अम्स्टरडैम में FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में मेजबान नीदरलैंड से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77,544 जबकि निफ्टी 24,236 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत और ब्राजील ने पुणे में ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग डिजिटल नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकी

0: कर्मियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 वर्ष किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ बैठक की। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में ट्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे जंगली फिल्म से, हसरत जयपुरी ने से लिखा।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार।

चलती का नाम गाड़ी, ये था फिल्म का नाम। किशोर कुमार, आशा भोसले की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। एस डी बर्मन की तर्ज और मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा।

0: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में गीत मधुमति फिल्म से अभी आपने सुनी। सलिल चौधरी का संगीत था, शैलेंद्र ने इसे लिखा।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत बंदिनी फिल्म से अभी आपने सुना। गुलजार ने इसे लिखा एसडी बर्मन की तर्ज। इस गीत के साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे संपन्न होता है।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: कार्यक्रम हेलो सहेली में आप सभी सखियों का स्वागत है। सखियों, सावन के महीने में वो कौन सी हमारी सहेली होगी जिसे अपने मायके की या पीहर की याद नहीं आती? दोस्तों के साथ वो यूं बेहिसाब घूमना, बारिश में भीगना, फिर भुट्टे खाना और कई कई आयोजनों में नृत्य करना, मेले में जाना और बेहिसाब हंसी मजाक शरारतें। तो इन्हीं यादों को याद करते हुए और रक्षाबंधन पर भाई का इंतजार करते हुए या मायके जाते हुए हम सब सखियां जुड़ चुकी हैं एक साथ, कहां विविध भारती के स्टूडियो में, और मैं मौजूद हूं आपकी दोस्त सहेली दीपा माहेश्वरी। आज आपकी इस सखी से बातें होंगी। तो पहले कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म। बज उठी फोन की घंटी, तो देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: नमस्ते मैडम। नमस्ते।
0: नमस्ते जी, बताइए किससे बात हो रही है हमारी और कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: नागपुर से दीपा बोल रहे हैं हम।
0: नागपुर से दीपा, वाह क्या बात है दीपा जी। क्या चल रहा है इन दिनों?
1: हाँ, रक्षाबंधन आ रहा ना मैडम।
0: जी जी, तो हम ये जानना चाहते हैं दीपा जी आपसे कि रक्षाबंधन पे इस वर्ष आप क्या करने वाली हैं? आप जाने वाली हैं मायके या भाई आने वाले हैं, क्या होने वाला है?
1: भाई कोई बुलाया है इस साल।
0: अच्छा, क्या बात है। तो उन सबकी तैयारियां होंगी घर में?
1: हाँ, ननद भी रहती है इधर ही, वो भी आएगी। अच्छा, और भाई भी आएगा।
0: अच्छा, तो ननद भी आपकी यहीं रहती है नागपुर में?
1: हाँ,
0: और आपके भाई भी
1: रहती है, भैया भी आएंगे।
0: जी, तो ये बताइए कि रक्षाबंधन त्योहार से आपको क्या याद आता है? पुरानी कोई बात आपकी बचपन की, क्या चीज जो आपके चेहरे पे एक हंसी ले आती है?
1: पुरानी यादें तो बहुत है मैडम। अब जैसे शादी हो गई सभी बहनों की, तो हम मैं छोटी थी, सबसे अकेली सबको भाइयों को राखी बांधती, पांच भाई थे।
0: अच्छा,
1: भाई के लड़के फिर भतीजे, सबको राखी मैं अकेली बांधती थी। बहुत याद आती है रक्षाबंधन पे मैडम।
0: ये बात तो सही है। तो आप अकेली ही बहन है पांच भाइयों के बीच?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, चार बहनें सबकी, सब बड़ी बड़ी शादी हो गई है सबकी, फिर छोटी थी मैं सबसे।
0: अच्छा, और उसके अलावा दीपा जी क्या करती हैं आप?
1: हाउस वाइफ है मैडम। हम
0: हाउस वाइफ है,
1: घर में ही रहते हैं। हाँ, बच्चे है, बहू है, लड़के, दुकान है अपनी मैडम।
0: अच्छा जी, किस चीज की?
1: पान शॉप की है मैडम।
0: अच्छा अच्छा, तो इसमें भी सारा दिन इसकी भी बड़ी तैयारी करनी होती होगी घर में, है ना?
1: दुकान में ही करते हैं सब, हम घर में नहीं करते कुछ।
0: अच्छा, तो आप घर का सारा काम संभालती हैं। आज ये बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: तिरंगा पिक्चर का मैडम सुना लीजिए, इसे समझो नरेशम का तार भैया।
0: तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।
2: इसे समझो ना।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी आज?
1: वैशाली भाटी से।
0: वैशाली भाटी। तो वैशाली जी, बताइए कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: हम इंदौर से।
0: इंदौर से। अरे वाह, अपने बारे में कुछ बताइए, क्या करती हैं, कैसे चलता है आपका दिन? और इन दिनों तो त्योहारों का मौसम है ना, इंदौर में तो त्योहार सारे खूब अच्छे से मनाए जाते हैं।
1: हाँ, बहुत बढ़िया है।
0: जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: हमारा तो ऐसा कहीं नहीं, अभी हमारी नई नई शादी हुई है।
0: अच्छा, अरे वाह, तो ये तो बहुत सारी बातें बताने की हो गई हैं। तो कैसा लग रहा है नए परिवार में आके, इस नए परिवेश में आके?
1: बढ़िया लग रहा है।
0: अच्छा लग रहा है। तो इंदौर से पहले आपका मायका कहाँ था फिर? कहाँ से शादी हुई?
1: अपन महाराष्ट्र से जलगांव।
0: जलगांव से आप इंदौर आ गई हैं, तो ये इंदौर नया शहर है आपके लिए, कैसा लग रहा है यहाँ पर? अब कुछ रोड्स और गलियों के बारे में कुछ अता पता चला होगा, है ना?
1: हाँ, बहुत सारा बढ़िया लगता है।
0: और ससुराल में कौन कौन है आपके साथ यहाँ पर?
1: मेरे सास ससुर और मेरे पति और मैं।
0: अच्छा, पहली राखी आई है शादी के बाद या ये दूसरी वाली आई आपकी?
1: पहली आएगी, पहली आएगी।
0: पहली आएगी। तो रक्षाबंधन के बारे में बताइए, क्या आप इस बार जाने वाली हैं जलगांव या यहीं रहेंगी, कैसा क्या होने वाला है?
1: नहीं, अपने यहाँ कान्हा जी आने वाले हैं ना।
0: अच्छा,
1: हाँ, इसलिए अभी जाना बंद है।
0: तो जाना बंद है तो।
1: अभी छोटा सा बेबी आएगा ना।
0: ओ अरे वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप?
1: एक हमारे कान्हा जी बाबू आ रहा है, उसके लिए कोई गाना सुना दो। अच्छा
0: तो चलिए सुनते हैं।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: माया जाधव।
0: माया जी कहाँ से बात कर रही हैं?
1: नासिक।
0: नासिक से बोल रहे हैं आप?
1: मैं बचपन से ही कार्यक्रम सुनती हूँ विविध भारती से, मैं बहुत ही बड़े फैन हूँ।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया, और हम भी आप सभी सहेलियों के फैन हैं, क्योंकि आपकी कॉल का हम लोग हमेशा हर मंगलवार को इंतजार करते हैं, है ना? तो कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप बताइए।
1: पारस मनी फिल्म का गाना सुनना चाहती हूँ, आज का हुआ रानी चेहरा।
0: तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर आ गए हैं कॉल का इंतजार करते हुए। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: नीता महाजन भवानी सागर देवास से।
0: जी देवास से बात कर रही हैं आप, भवानी सागर से। तो अपने बारे में कुछ बताइए नीता जी, राखी का त्योहार आने वाला है रक्षाबंधन का, तो क्या क्या तैयारियां चल रही हैं घर पर?
1: रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है तो थोड़ी बहुत घर में साफ सफाई करेंगे, मिठाई वगैरह बनाएंगे।
0: अरे वाह, तो क्या मिठाई बनाने वाली हैं आप?
1: चक्की बना सकती हूँ मैं बेसन की।
0: हाँ वो तो बहुत प्रसिद्ध है उस तरफ की और बड़ी स्वादिष्ट ये
1: हाँ
0: मिठाई होती है ना
1: हाँ
0: जी। तो घर में और कौन कौन है, अपने बारे में भी कुछ बताइए।
1: तो मेरी तीन बेटियां हैं तो दो की शादी कर चुकी हूँ मैं और एक पढ़ाई कर रही है अभी।
0: जी, तो दो बेटियों की
1: हाँ
0: शादी हो गई है, तो वो आने वाली हैं मायके?
1: हाँ मायके आएगी ना, दोनों बेटियां आएगी।
0: जी, और छोटी
1: हाँ
0: बेटी किस चीज की पढ़ाई कर रही है?
1: वो बीकॉम कर रही है।
0: अच्छा, तो बहुत बढ़िया बात है। तो अब तो आपको इंतजार होगा अपनी दोनों बेटियों के आने का।
1: हाँ वही इंतजार चल रहा है ना।
0: तो मन खुश रहता होगा इन दिनों।
1: हाँ मन खुश रहता है ना।
0: और आज आप
1: हाँ
0: ये बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: नदिया के पार का, कौन दिशा में चला रहे।
0: तो चलिए सुनते हैं नदिया के पार फिल्म का ये गीत, कौन दिशा में लेके चला रे बटुए।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, मैं रेखा वर्मा बोल रही हूँ। मैं उज्जैन से। अरे
0: उज्जैन से रेखा वर्मा। क्या चल रहा है इन दिनों? रक्षाबंधन का त्योहार बिल्कुल नजदीक आने वाला है, घर में बहुत सारी
1: बिल्कुल,
0: तैयारियां होती हैं।
1: रक्षाबंधन की तैयारी चल रही है मैम। आगे हम राखी वगैरह लेके आ गए हैं मार्केट से, क्योंकि फिर उज्जैन में काफी भीड़ है यहाँ पर।
0: इस बार तो कई तरह तरह की राखियां हैं बाजार में,
1: हाँ,
0: हमने भी
1: बहुत सुंदर
0: देखी।
1: सुंदर राखियाँ हैं मैम, और हम फर्स्ट में ही जाके ले आए हैं ताकि और अच्छी मिल जाए हमको।
0: अच्छा, तो आप थोड़ा पहले ही ले आई ताकि बाद में ना भीड़
1: जी,
0: मिले और राखियों का चुनाव भी खूब अच्छे से आप कर
1: खूब अच्छे
0: सके।
1: से कर सकते हैं अपन।
0: हाँ, ये बात तो सही है। जीवन में क्या चल रहा है, क्या करती हैं आप, अपने बारे में बताइए।
1: मैडम, मैं हाउसवाइफ हूँ
0: अच्छा,
1: बस, मतलब बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं। और पार्लर चलाती हूँ, घर में ही चलाती हूँ बस।
0: बहुत सुंदर बात है ये तो। और रक्षाबंधन से आपके कोई यादें जुड़ी हों, बचपन की कोई बात, या इस दफा आप क्या करने वाली हैं, जाने वाली हैं मायके या भाई आएंगे, क्या है
1: नहीं
0: वो
1: नहीं
0: बताइए।
1: मैम, जाऊंगी मैं। क्या है कि एक ही बहन हूँ 6 भाइयों के बीच में, तो
0: अरे वाह, तो घर में तो सब
1: इसलिए
0: आपको बहुत भाग्यशाली कहते होंगे, है ना?
1: जी मैम।
0: ऐसा हो जाता है जहां पे भाई हो अधिक और बहन एक हो, उनका महत्व बहुत बढ़ जाता है।
1: जी मैम,
0: तो कहाँ है आपका मायका?
1: मेरा मायका मैम ब्यावरा बचोर
0: अच्छा,
1: राजगढ़ जिले में है।
0: तो आप मिठाई मेवे सब कुछ लेकर जाएंगी?
1: बिल्कुल मैम,
0: जी।
1: बहुत इंतजार रहता है। भतीजी उनको भी, भतीजे उनको भी, मेरा वो आने वाली है मैम। कितनी भी उम्र हो जाए, मायके में जाने के बाद व्यक्ति वापस वैसा के वैसा, ऐसा लगता है जैसे अपन बचपन में आ गए हैं वापस।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: मेरी मम्मी नहीं है, भाभियां हैं, लेकिन मेरी भाभियां ऐसी हैं मैम कि अभी तक राखी करने वो नहीं जाती है, क्योंकि मैं जाती हूँ ना यहाँ से। तो
0: यानी कि भाभी ने माँ का रूप ले
1: जी
0: लिया
1: मैम,
0: है ना?
1: वो
0: तो
1: इंतजार करती है दीदी आ जाएंगी, उसके बाद में फिर बाद में चले जाएंगे, क्योंकि कोई की एक बहन है, कोई दो बहनें हैं, तीन बहनें हैं।

0: तो वो इंतजार करती है कि हमारी तो यही है,
1: ये बात तो कितनी अच्छी बात है ना, घर में की सारी भाभियां आपका इंतजार करती
0: मेरा
1: हैं
0: इंतजार करती है मम्मी, एक भी नहीं जाती है।
1: कि कब रेखा दीदी आएंगी और इस घर में फिर से वही ऊर्जा और हंसी मजाक और एक प्रसन्नता का माहौल बन जाएगा, है ना
0: तो सबसे बड़ी बात तो ये है मैम कि आज वो माँ की जगह मतलब बैठी है मेरे लिए, इंतजार
1: जी।
0: करती है, तो मुझे उसकी खुशी और बहुत ज्यादा होती है।
1: तो हम तो चाहते हैं कि ये प्रेम आपका हमेशा इसी तरह बना रहे और हर घर में ये भाभी और नंद का प्रेम इसी तरह बने जैसा रेखा वर्मा के घर में। तो रेखा जी
0: जी,
1: बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप?
0: मजबूर पिक्चर का सुनना है। देख सकता हूँ मैं तुझे कुछ भी होते हुए, नहीं देख सकता तुझे रोते हुए।
1: तो चलिए आपकी पसंद का ये गीत सुनते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर इंतजार कर रहे हैं कॉल्स का। कार्यक्रम चल रहा है। हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: जी जी जी नमस्ते।
0: नमस्ते, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी जी जी मैं रंजीता जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: क्या बात है, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से रंजीता जी बोल रहे हैं। कैसी हैं आप?
1: जी जी जी मैं ठीक हूँ।
0: और क्या चल रहा है इन दिनों? रक्षाबंधन बस बिल्कुल नजदीक ही आने वाला है ना?
1: मार्केट में शोर है, रक्षाबंधन है, राखी का त्योहार आने वाला है। सभी लोग मतलब अपने भाई को राखी बहन पहनाने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं और त्योहार का मतलब बड़े ही मतलब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, अभी तो बाजारों में हर दुकानों पे रक्षाबंधन की राखियां ही आपको दिखाई देंगी, है ना?
1: जी
0: तो आप खरीद लाई या आप जाने वाली हैं अपने मायके या भाई आने वाले हैं, क्या होने वाला है इस बार?
1: नहीं दीदी, मैं जाती हूँ अपने मायके अपने भाई को राखी पहनाने के लिए।
0: अच्छा, तो वो तो इंतजार कर रहे होंगे आपका कि कब आएंगी।
1: जी।
0: और कई बार ऐसा भी हो जाता ना कि आप कहेंगी कि नहीं समय कम है, मैं सिर्फ 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए आऊंगी, और फिर मायके से सब लोग जिद करते, नहीं तुम अब के आओ तो 3-4 दिन ज्यादा रुकना।
1: जी, ऐसे होता ही है। लेकिन क्या है, हम सभी लोग एक रिश्ते की डोर से बंधे हैं, तो जैसे कि मैं अपने भाई को राखी पहनाने जाती हूँ, वैसी मेरी भी भाभी है, वो भी अपने भाई को राखी पहनाने के लिए जाती हैं, तो सभी का सोच के जाना पड़ता है दीदी। तो मैं हमेशा 1 दिन पहले राखी पहनाने जाती हूँ, फिर उसी दिन हम लोग रक्षाबंधन के दिन राखी पहना के हम लोग वापस होते हैं। तो मेरे मिस्टर हैं, उनको भी उनकी बहनें राखी पहनाने आती है और मेरी भाभी भी अपने भाई को राखी पहनाने जाती है।
0: तो ये तो कितनी अच्छी बात है ना, आप हर तरह का देखिए रिश्तों में कितना सुंदर संतुलन बना के रखती हैं कि
1: जी
0: आपके घर में भी हो जाए, आपके मायके में भी आप अपने भाइयों को राखी बांध देती हैं,
1: जी
0: और
1: जी
0: फिर यहाँ पर भी ध्यान रखती हैं कि आपके पति को,
1: जी
0: उनकी भी तो बहनें हैं
1: जी
0: ना, वो लोग आए राखी बांधने के लिए।
1: जी फिल्म
0: तो बताइए रंजीता जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: का नाम है जीवन मृत्यु और गाने की बोल है झिलमिल सितारों का आंगन होगा।
0: तो रंजीता जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी? अपना नाम बताइए।
1: जी, आपकी बात इशिका वर्मा से हो रही है जी?
0: कहाँ से बात कर रही हैं ईशिका आप?
1: उज्जैन से। हाँ,
0: क्या बात है, ये बताइए, आपकी आवाज से ऐसा लग रहा है छोटी सी नन्ही सी गुड़िया हैं आप।
1: यस मैम, मेरी एज ज्यादा नहीं है, 24 ही है। हाँ
0: अच्छा, क्या बात है। तो
1: जी
0: ये हमें जानकर बहुत अच्छा लगा कि जो युवा वर्ग है हमारे देश का, विविध भारती सुनती है
1: यस
0: ना?
1: मैम। मैम यहाँ पर सभी सुनते हैं, मतलब हमारे जो पापा है, मेरे फादर इन लोग, वो मतलब ऑलमोस्ट ही रेडियो में मतलब कॉल्स करना और हम सबको भी रेडियो सुनाना उन्हीं ने सिखाया है।
0: क्या बात है। तो आपने बोला फादर इन लॉ, तो आप विवाहित हैं?
1: यस मैम, इसी ईयर मेरी शादी हुई है।
0: इसी साल?
1: यस मैम,
0: अच्छा, अरे वाह,
1: फैमिली अच्छी है मैम, बिल्कुल। हाँ
0: अरे वाह, बहुत अच्छी
1: जी
0: बात है। तो आपकी इस नए विवाहित जीवन के लिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं ईशिका। और
1: थैंक
0: बताइए,
1: यू मैम।
0: आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैम आज मैं अंधा कानून का मेरी बहना दीवानी है सॉन्ग।
0: जी, तो चलिए सुनते हैं आपके लिए, आपकी ही पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी। मैम नमस्ते। पहले तो आपको, हाँ
0: नमस्ते।
1: जी, मैं प्रमिला महेश बोल रही हूँ मैम, गुजरात के साबरमती से। जी
0: साबरमती से प्रमिला महेश जी, तो बताइए प्रमिला जी, कैसी हैं आप
1: बिल्कुल अच्छे हैं मैम, आप सुनाइए। हाँ
0: जी? यहाँ पर भी सब लोग अच्छे हैं और स्वस्थ हैं
1: जी,
0: जी। तो अपने बारे में कुछ बताइए।
1: यही है मैम, बस घर के ही काम करते हैं, घर में ही रहते हैं, और फ्री टाइम में तोरण वगैरह जो दरवाजों पे लगे होते हैं वो बनाते हैं मैम।
0: जी, ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि गुजरात
1: हाँ
0: की ये
1: जी
0: कला बहुत प्रसिद्ध है और बड़ा बारीक
1: जी
0: काम है।
1: हाँ जी मैम जी मैम, ये घर के पास ही एक कारखाना है, तो वो गृह उद्योग वगैरह महिलाओं के लिए, तो वो अपने को घर पे लाने के लिए देते हैं वो ऐसा काम।
0: अच्छा, तो
1: हाँ
0: मतलब
1: जी
0: आप अपने समय का पूरा सदुपयोग करती हैं।
1: जी मैम बिल्कुल, मतलब खाना वाना खा के जब हम फ्री होते हैं 3 बजे, तो सखी सहेली जैसे ही चालू होता है हमारा काम भी चालू हो जाता है।
0: क्या बात है, तो सखी सहेली
1: जी
0: और आपका तोरण बनाने का साथ,
1: जी
0: ये
1: मैम
0: हमेशा
1: बिल्कुल
0: साथ है।
1: बिल्कुल, एक दिन भी मिस नहीं होता है आपका सखी सहेली हेलो फरमाई से। जी
0: प्रमिला जी, तो यही तो आप जैसे जो श्रोतागण हैं वही ये
1: हाँ जी
0: सुंदर हमारे सितारे हैं विविध भारती के, है ना? और ये बताइए, रक्षाबंधन आने वाला है
1: हाँ जी मैम,
0: तो क्या तैयारियां चल रही हैं उसकी?
1: तो तैयारी तो ये है मैम कि मायका तो दूर है, अभी हमारा इंदौर में है, तो देखेंगे, अभी जाना होगा तो जाएंगे, वैसे ऐसे कुछ सोचा नहीं है। दो भाई थे मेरे, दोनों ऑफ हो गए, एक बड़े भैया हैं अभी, वही हैं फैमिली में, भैया भाभी उनके बच्चे हैं, तो जाते हैं कभी
0: तो
1: ऐसे। एक
0: दोनों
1: दीदी मेरी पास में ही है इंदौर में, तो वो अटेंड कर लेती है प्रोग्राम को।
0: जी,
1: जब मेरे भैया दोनों गुजरे थे, हम दोनों की ही मट्टी में, मतलब मैं दूर होने की वजह से नहीं मिल पाई मैं उनसे,
0: जी
1: यही दुख
0: जी
1: लगता है ज्यादा।
0: जी कष्ट
1: जी
0: जीवन में आते हैं प्रमिला जी, फिर ईश्वर हमें उसका साथ,
1: हाँ
0: उसका
1: जी
0: सामना
1: मैम,
0: करने के लिए शक्ति भी देते हैं, है ना
1: अच्छी मिलती है मैम, अभी
0: जी?
1: थोड़ा क्या करें, हिम्मत तो रखनी पड़ती है ना, अब ऐसा हो गया है तो।
0: हाँ,
1: एक
0: हम
1: भैया है उनसे भी हम
0: जी,
1: अच्छे
0: हम
1: रहते हैं, खुश रहते
0: जी
1: हैं, माँ बाप का प्यार उनसे ही मिल जाता है मैम हमको।
0: बिल्कुल, आपकी आवाज़ सुन के हम भी भाव विभोर यहाँ हो रहे हैं, आपके दुख को और आपकी पीड़ा को समझ सकते हैं। लेकिन जो बड़े भाई हैं वो ही
1: जी
0: अब आपका ध्यान भी रखते होंगे, आपसे बात भी
1: जी
0: करते
1: मैम
0: होंगे,
1: बिल्कुल
0: है
1: बिल्कुल,
0: ना
1: ध्यान रखते हैं,
0: जी?
1: बुलाते हैं हमेशा, कॉल करते हैं, फिर त्योहार पे कोई प्रोग्राम होता है या घर में कोई फंक्शन होता है तो फोन करके, बकायदा हमको न्योता मिलता है आने का
0: ये बात तो है।
1: और जाना
0: तो
1: भी पड़ता है मैम
0: और
1: फिर।
0: आजकल तो क्या डिजिटल वर्ल्ड भी हो गया, तो वीडियो कॉल से भी
1: हाँ जी
0: बात कर सकते हैं, वहां से एक छोटी सी ही सही लेकिन मुलाकात तो हो जाती है
1: जी
0: ना?
1: मैम, मिलती है तो नहीं, जैसे कभी जाना होता है तो 10 दिन 15 दिन तो मेरा तो फिक्स है, मतलब दूर से जाती हूँ तो मतलब वो फिर मुझे आने भी नहीं देते हैं
0: सही
1: ऐसा है।
0: बात है जी, हाँ,
1: हाँ जी
0: क्योंकि बार बार वहां जाना संभव नहीं
1: हाँ
0: हो
1: जी
0: पाता जी। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा प्रमिला जी। आज बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप
1: जी मैम, मेरे को काजल मूवी का सुनना है, देखो छम छम घुंघरू बोले।
0: जी? तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का यही गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं मीना मारू बोल रही हूँ इंदौर से।
0: इंदौर से मीना मारू जी, क्या बात है।
1: जी
0: तो कैसी हैं आप और अपने बारे में कुछ बताइए।
1: मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं एक शॉप है मेरी पिपली बाजार में,
0: जी
1: लेडीज वेयर की शॉप संभालती हूँ,
0: क्या बात है। तो
1: और मैंने अपने शॉप पे भी रेडियो रख रखा है, विविध भारती के सारे प्रोग्राम सुनती हूँ।
0: ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, यानी कि काम भी करते हैं और आप अपना मनोरंजन भी करती हैं। और
1: हाँ जी
0: सिर्फ मनोरंजन नहीं है, विविध भारती पे तो सारी देश विदेश की जानकारियां मिलती हैं हमें, है ना।
1: हाँ जी।
0: तो घर परिवार में कौन कौन है बताइए।
1: घर परिवार में मेरी एक बेटी है नयन,
0: जी
1: और एक बेटा है प्रियम मारू, हस्बैंड है, बेटी की शादी हो चुकी है,
0: क्या बात
1: उसकी
0: है।
1: बेटी, हाँ जी उसकी बेटी है अलिष्का 8 साल की।
0: आज हम बात कर रहे हैं मीना जी, अब रक्षाबंधन, तो आपकी
1: बिल्कुल
0: क्या यादें हैं रक्षाबंधन को लेके, आप इसके बारे में कुछ बताइए।
1: रक्षाबंधन की यादें मेरी तो बहुत अच्छी यादें रही हैं। मेरे दो भाई हैं, मतलब एक भाई 4 साल पहले शांत हो चुका है, वो बड़ा दुखदायी याद है मेरे लिए। और रक्षाबंधन का त्योहार मेरे लिए बहुत बड़ा त्योहार हुआ करता था।
0: जी
1: मैं अपने बच्चों के साथ में मायके जाती थी, पूरा परिवार साथ में हम लोग रक्षाबंधन का त्योहार मनाते थे,
0: जी
1: और मुझे मिठाइयों का भी बहुत शौक है, तो मैं रक्षाबंधन पे हमेशा घर से ही मिठाई बना के ले जाती थी।
0: क्या बात है। तो आप सारी मिठाइयाँ आप बनाती हैं।
1: हाँ जी हाँ जी, मैं घेवर, स्पेशली मेरे घेवर बहुत फेमस है मेरे मायके में,
0: अरे
1: सबको मेरे
0: वाह।
1: हाथ के घेवर बहुत पसंद आते हैं। करीब 35 साल से बनाती आ रही हूँ मैं, तो
0: जी
1: हमारा त्योहार राखी का त्योहार तो बहुत अच्छे से मनता था, पर बस कुछ 4-1 साल से मेरा बड़ा ब्रदर मनोज डांगी करके था, उसकी सडनली डेथ हो चुकी है, तो वो त्योहार
0: ओहो
1: अभी आज के लिए मेरे लिए बहुत दुखदायी रहता है। असल में अभी भी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरा गला रुंध गया है,
0: जी, वो महसूस
1: मुझे
0: कर
1: अपने
0: पा
1: भाई की
0: रहे हैं
1: बहुत
0: हम
1: याद आती है। हाँ
0: जी।
1: जी
0: लेकिन मीना जी, यही है,
1: वैसे
0: जो हमारे प्रिय हैं वो अगर हमसे दूर चले भी जाते हैं ना, तो उनका
1: हाँ
0: प्यार
1: जी
0: एक शक्ति बन के हमारे साथ रहता
1: बिल्कुल
0: है ना।
1: बिल्कुल,
0: तो
1: आप
0: अच्छी
1: बात सही
0: यादों
1: कर,
0: को
1: बिल्कुल
0: आप
1: सही।
0: संजो के रखिए, उनके साथ
1: हाँ
0: बिताए, जो
1: जी
0: हंसी मजाक वाले जो अच्छे पल हैं उनको अपने मन में बसाए रखिए, क्योंकि राखी वाले दिन किसी न किसी तरीके से वो भाई आप तक अपना प्रेम तो पहुंचा
1: बिल्कुल,
0: ही देंगे,
1: हाँ हाँ
0: है ना।
1: बिल्कुल
0: जी जी बिल्कुल।
1: बिल्कुल।
0: तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं।
1: बेहमान फिल्म का गाना है, लता जी और मुकेश की आवाज में, गाने के बोल है, ये राखी बंधन है।

0: तेरा ही बंधन है ऐसा, जैसे
1: हाँ
0: चंदा और किरण का, जैसे बदली और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है ऐसा। ये वाला गाना मुझे बहुत पसंद है।
1: बिल्कुल, जिस तरह से सुरीले तरीके से आपने ये गाने को सुनाया है, तो चलिए सुनते हैं उसी गीत को।
2: ये राखी।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली,
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं निगाह जान बोल रही, इंडिया जम्मू कश्मीर से।
0: क्या बात है, कश्मीर, जम्मू कश्मीर से कॉल आई है निगहत जान
1: जी
0: की। जी,
1: हाँ,
0: तो कैसी हैं आप और कैसा है कश्मीर?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कश्मीर भी बहुत अच्छा है और यहाँ भी थोड़ा सा गर्मी तेजी हो रही है। अभी गर्मी चल रही है क्योंकि सितंबर जो महीना है वो, उसमें भी गर्मी होगी थोड़ी। फिर अक्टूबर से यहाँ सर्दी का मौसम शुरू होने वाला होता है।
0: जी, और उसके बाद तो फिर सुंदर बर्फ से ढके पहाड़ हो जाते हैं, है ना?
1: तो हाँ, वो तो ज्यादातर यहाँ बर्फ जो गिरती है वो दिसंबर में महीने में गिरती है।
0: जी
1: खास
0: जी
1: करके मैं श्रीनगर में रहती हूँ,
0: जी
1: टूरिस्टों का तो आना यहाँ बहुत रश होता है क्योंकि यार डल लेक है, वहाँ भी नाव शिकारी का सवारी करते और
0: जी
1: टूरिस्ट यहाँ बहुत आते हैं।
0: जी कुछ बीच में बच्चों की छुट्टियां भी लग जाती है ना, तब भी कश्मीर सबसे पहले सभी, मुझे लगता है अधिकतर लोगों की लिस्ट में यही रहता होगा कि कश्मीर घूमने तो जरूर जाएंगे, है ना?
1: हाँ, क्योंकि कश्मीर का दूसरा नाम है जन्नत।
0: जी बिल्कुल, और आप खुशकिस्मत हैं कि आप उस जन्नत में रहती हैं, है ना?
1: बिल्कुल
0: जी
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी अपने बारे में कुछ बताइए निखत जान
1: जी,
0: आप।
1: मैं घर में होती हूँ, मैं घर संभालती हूँ। आप तो, मेरे शादी है 12 दिन रह गए मेरी शादी को,
0: कब?
1: 1 सितंबर और 2 सितंबर को मेरी शादी है।
0: अरे वाह, आपका ब्याह होने वाला है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: मेरी बहन भी इसके नाम में को सुनना चाहती है, उसका नाम है कौशल जान।
0: जी,

0: उन्हें भी हमारा नमस्कार कहिए।
1: हाँ, चलते चलते मैंने सोचा अब मुझे किसी और के घर जाना है, तो सोचा सहलो सहल में एक बार फिर से कॉल करूं। तो खुशकिस्मती है मेरी कि मेरा कॉल लग गया आज, और मैं बहुत खुश हूँ। जब भी मैं कोशिश करती हूँ तो मेरा कॉल लग ही जाता।
0: तो ये
1: हाँ
0: जानकर हमें बहुत अच्छा लगा, और एक बार फिर आपको आपकी शादी के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम है सावन। गाने के बोला है, तुझे याद किया मेरे दिल ने, कब आओगे साजन मुझसे मिलने।
0: वो
1: अब
0: तो
1: तो
0: बस
1: साजन का ही
0: आ ही रहे
1: इंतजार
0: हैं, सितंबर में बस आने ही वाले हैं ना। तो
1: हाँ
0: अब ये
1: बिल्कुल
0: इंतजार
1: बिल्कुल
0: का जो वक्त है
1: खत्म हो गया
0: बिल्कुल खत्म होने को ही है। तो चलिए सुनते
1: जी।
0: हैं इस गीत को।

0: कार्यक्रम हेलो सहेली में आज बातों का सिलसिला बस इतना ही। हम सहेलियों से अनुरोध करते हैं कि जिनके कॉल्स आज लग पाए हैं वे अगले 2 महीनों के बाद हमें संपर्क कीजिए ताकि बाकी सखियों को भी बातचीत का अवसर मिल सके। जिनके कॉल्स नहीं लग पाए हैं वे सहेलियां निराश न हो, आप अगले मंगलवार अवश्य कोशिश कीजिएगा। सखियों आपसे अब मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। साथ ही सभी सुनने वालों को ये बता दें कि हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर हैं हिंदी में 400-24662, एक और नंबर है 28670288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, अंग्रेजी में नंबर है 4002462, एक और नंबर है 28670288, मुंबई का एसटीडी कोड 022। आज की हेलो सहेली कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं किरण बंग और संपादन में हमें सहयोग मिला नम्रता टिकोड़े का। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम से मैं आपकी दोस्त दीपा माहेश्वरी लेती हूँ इजाजत। आप सभी को हेल्दी नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: के देश में वाचक स्वर ममता सिंह का।
1: चाचा आपको बुला रहे हैं। क्यों? कहते हैं भले ही दो दिन के लिए आ जाओ पर आपका आना जरूरी है। अचानक? अचानक कैसे आऊं? घर की व्यवस्था जमानी होगी, रिजर्वेशन करवाना होगा, फ्लाइट के टिकट बहुत महंगी मिलेगी। अच्छा मेरी बात जरा चाचा से करवा दो। वो बात कर पाते तब ना। ओह, मीनाक्षी सोच में पड़ गई। चाचा ने बुलाया है तो जरूर कोई बात होगी, पर ऐसी क्या बात है जिसके लिए चाचा अचानक बुला रहे हैं? हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो चाचा सिर्फ उसी को बताना चाह रहे हों, क्योंकि बचपन से ही वो चाचा के बहुत करीब रही है। सब भाई बहनों के बीच चाचा उसी को सबसे ज्यादा स्नेह करते थे। वो भी चाचा को अपने पिता से ज्यादा मान सम्मान और प्यार देती थी, उन्हीं से सलाह लेती थी। कोई और बात यानी उनके स्वास्थ्य से संबंधित तो नहीं? क्योंकि पिछले वर्ष से वो लगातार बीमार चल रहे थे। बीमारी की वजह से उनका बाहर निकलना बंद हो गया था, बस अपने रूम में लेटे लेटे वे रेडियो सुनते रहते थे। चाची वहीं उनका खाना पानी और बाकी चीजें मसलन पेपर पत्रिकाएं रख देती थी। चाची ने बताया कि आजकल चाचा को अजीब से दृश्य दिखाई देते हैं, उनकी हालत देखकर चिंता हो रही है। तुम आ ही जाओ, उनको बहुत कष्ट है। उसने रिजर्वेशन के लिए या तत्काल में टिकट बनवाने के लिए एजेंट को बोला पर कोई सीट खाली न थी। कोई ड्राइवर मिल जाए तो मैं अपनी गाड़ी से आने की कोशिश करती हूँ, मीनाक्षी ने मैसेज किया। फ्लाइट से आ जाओ, चाची का मैसेज था। डायरेक्ट फ्लाइट भी तो नहीं है। सुबह 3 बजे ही मीनाक्षी की नींद खुल गई। रास्ते के लिए खाने पीने का सामान रख कर वो तैयार हो गई। उसने अनुमान लगाया कि यदि सब ठीक ठाक रहा तो रात तक पहुंच ही जाऊंगी। चाची का मैसेज था, टैक्सी से ही आ जाओ। नहीं नहीं, मैं गाड़ी से आ रही हूँ। गाड़ी और ड्राइवर पहचान वालों की है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है, मीनाक्षी ने चाची को तसल्ली दी। चाची की घबराहट से वो भी चिंतित हो

गाड़ी में बैठते ही मीनाक्षी सोचने लगी, हे ईश्वर सब ठीक रखना। सड़क के दोनों ओर काफी भीड़ थी। फल सब्जी बेचने वालों के ठेले लाइन से लगे थे। कुछ बूढ़ी महिलाएं सड़क के किनारे डलिया में अमरूद लेकर बैठी थी। अमरूद का ये सीजन मीनाक्षी को यूं भी पसंद था, क्योंकि हरे पीले और अंदर से हल्के से लाल गुलाबी अमरूदों को देखकर उसकी तबीयत खुश हो जाया करती थी। उसे याद आया गांव के पास ही अमरूद का बगीचा था।

था। चाचा उन अमरूद को ठेके पर उठा देते थे और एक दो पेड़ परिवार और रिश्तेदारों के लिए बचा लेते थे। अमरूद के पेड़ों पर हजारों तोतों का ठिकाना रहता था। वे जितने अमरूद खाते थे उससे ज्यादा अधखाए अमरूद नीचे गिरा देते थे। उसे याद है एक बार रखवाली करने वाले लड़के ने गुलेल से एक तोते को घायल कर दिया था। तब चाचा ने नाराज और दुखी होकर उसको काम से ही निकाल दिया था। तोते को घर में लाकर उसका इलाज करवाया गया था और चाचा ने उसे अपने पास रख लिया था। चाचा उसे प्यार से बेटू बोलते थे। बेटू भी कितना बोलता था, लड़ता था, प्यार जताता था। बाद में वो बगीचा चाचा ने बेच दिया था क्योंकि वे उतना समय नहीं दे पाते थे, पर जिसको बेचा था वो भी अमरूद की पेटियां भिजवाता रहता था। चाचा के दो ही शौक थे, जमीन खरीदना, वो भी बंजर जमीन, शहर से दूर, फिर उसको उपजाऊ बनाने के लिए सैकड़ों उपाय निकालना। उनके सुबह के 4 घंटे इन्हीं कामों में निकलते थे। फिर बाद में उसने सुना कि चाचा ने अपने खेतों में 500 सीताफल के पेड़ लगवाए थे, पर वे नहीं लगे क्योंकि जमीन उनके अनुरूप नहीं थी। चाचा ने जहां से पेड़ मंगवाए थे वे स्वयं वहां गए। वहां से पूरे 8 विशेषज्ञों को लेकर आए थे और उनकी जिद कि दोबारा फिर से वही पेड़ लगवाएं। परिवार वाले परेशान, कितना पैसा बर्बाद करते हैं, बेचो जमीन और खेत, आराम से रहो, पर नहीं। चाचा का मन तो वही रमता। बीमारी के 1 माह बाद जब वे उन खेतों पर गए तो देखा वहां तो मजदूरों ने पूरी गृहस्थी बसा रखी है और कुत्तों का परिवार बाकायदा पला हुआ है। चाचा, चाचा, मीनाक्षी के कंठ से प्रार्थना के स्वर निकले। हे प्रभु, हे प्रभु, चाचा को स्वस्थ रखना।

कहाँ तक पहुंची? कोई दिक्कत तो नहीं है? चाची और बहन के कई मैसेज पड़े थे। अरे कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आराम से आ रही हूँ, उसने मैसेज लिखा। शहर से बाहर निकलकर ठंडी हवा में सांस लेना मीनाक्षी को अच्छा लग रहा था। हरे भरे खेतों के बीच नए बनते मकानों को देखकर उसे कुछ नहीं अच्छा लगा। हाँ, पेड़ों की नई नई कतार को देखकर उसका मन अलबत्ता खुश हो उठा। वाह, मौसम तो अच्छा है जी। ड्राइवर ने रेडियो की आवाज कम की। क्या तुम अक्सर ही बाहर जाते हो? जी मैडम, जब जैसी राइड मिल जाए चला जाता हूँ, ड्राइवर बोला। तुम्हें क्या फर्क दिखता है? बस मैडम, जहाँ रोड ठीक है वहाँ तो आराम से गाड़ी चली जाती है, लेकिन जहाँ रोड कट गए हैं या नया निर्माण हो रहा है वहाँ तो बहुत परेशानी होती है। कहाँ के रहने वाले हो? यही गांव में रहता हूँ। एक दो गाय भैंसे हैं, एक एकड़ का खेत है, उसमें कुछ न कुछ उगाते रहते हैं। घर का अनाज और सब्जियां हो जाती हैं, बाहर तो काम कभी कभार ही मिलता है। माता पिता को भी चिंता लगी रहती है। तुम्हें क्या लगता है, अपने काम में ज्यादा पैसा मिल जाता है? हाँ वो तो है मैडम, पर कई बार कुदरत की मार पड़ जाती है। बाढ़, ओला या पाला से खड़ी खड़ी फसल भी मर जाती है, दाने काले पड़ जाते हैं। ओला और बेमौसम बारिश

कर भला किसका बस चलता है, ड्राइवर बोला। अब तक बादलों ने सूरज को ढांक लिया था, धूप की जगह धूसर रंग चारों तरफ दिखाई दे रहा था। सड़कों के दोनों तरफ हरे भरे खेत थे। वाह, कितना सुंदर मौसम हो गया है, मीनाक्षी ने फिर दोहराया, जैसे उसकी यात्रा का सहयात्री ये मौसम ही हो। मैडम, हम लोग तो आज भी कोशिश करते हैं कि शुद्ध हवा में रहें, शुद्ध पानी पिएं। हमारे बोर में इतना पानी आता है कि आसपास के लोग तक पानी लेने आते हैं। मेरी माँ भी मौसम की बहुत बात करती हैं। उन्हें अपने गांव का मौसम अक्सर याद आता है, आप ही की तरह, ड्राइवर बोला। अच्छा, आप यकीन करेंगे मैडम, हमारे खेत के कुएं का पानी हरे रंग का है। अच्छा, कैसे? अरे मैडम, उसके आसपास बहुत सारे पेड़ लगे हैं ना, उनकी पत्तियां उसमें गिरती रहती हैं, तो उसका स्वाद भी अलग है, एकदम शुद्ध हर्बल वाटर की तरह। वाह भाई, तुम्हारी बातें तो बड़ी दिलचस्प हैं। हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। इन 2-3 महीनों में बिना मौसम की बरसात बड़ी नुकसानदायक होती है। देखिए ना, फसल पकने को है, अगर ज्यादा पानी गिर गया तो फसल बर्बाद हो जाएगी। वो सोच में पड़ गई, जीवन भी तो किसी फसल की तरह ही होता है, और चाचा, चाचा तो जीवन में फसलों को ही जीते रहे हैं। चाचा पढ़े लिखे हैं, बाकायदा PhD, कुछ साल नौकरी की, पर नौकरी करते हुए वे ज्यादातर वक्त अपने खेतों पर गुजारते थे। चाचा के साथ शादी से पहले वो भी उनके खेतों पर और गांव जाया करती थी। हाँ, जब उन्होंने शहर में जमीन लेकर फार्म हाउस बनाया था, तब चाचा ज्यादातर काम फोन पर ही करवा लिया करते थे। उनके खेत पर होने वाली पार्टी का सबको इंतजार रहता था। चारों तरफ लगे आम के वृक्ष, खेतों में लगी सब्जियां, बीच में बना छोटा सा सरोवर और कतार में लगे बेरों के पेड़, चाचा आने वाले दोस्तों को उपहार में क्या दिया करते थे? 5 किलो मटर, 2 किलो बेर और 1 थैला अमरूद, यानी हरेक के लिए 3-3 थैलियां गिनकर रख दी जाती थी। चाचा के दोस्त हंसते, यार ये बढ़िया है, नींबू पानी पिलाओ, घर की सब्जियां खिलाओ, खेतों में घुमाओ, और गिफ्ट भी अनोखी, वो भी ऑर्गेनिक, क्या बात है। मीनाक्षी के होठों पर मुस्कुराहट थी, पर आंखों में आंसू छलक आए। उसने साइड में गाड़ी रोकने को कहा, पानी पिया, फिर थर्मस में से चाय निकाली। बारिश तेज होने के आसार नजर आ रहे थे। थोड़ा रुक जाते हैं, बिजली गिरने का अंदेशा भी तो रहता है, मीनाक्षी ने ड्राइवर से कहा। जी मैडम, बारिश भी अच्छी लग रही है ना, ड्राइवर बोला। मीनाक्षी को लग रहा था कब वो चाचा के पास पहुंचे। ये रास्ते इतने लंबे क्यों लग रहे हैं, समय इतना भारी और ठहरा हुआ क्यों लग रहा है, ढेर सारी बातें उसके जहन में आ जा रही थीं। बचपन जो किसी बेहद खूबसूरत परिंदों के देश जैसा लगता था, जिसमें सैकड़ों परिंदे होते थे, जानवर होते थे, रंग बिरंगे फूल खिले होते थे, छोटे छोटे कुएं, बावड़ी और नहरें होती थीं। आज भी वो किसी को बताती है तो सबको लगता है कि वो किताबी कहानियां सुना रही है, पर वो उसका असली बचपन था। बाद के वर्षों में पेड़ कम होते गए, फसलें बिगड़ती गईं, बगीचों के पेड़ उजड़ते गए, और उसके आसपास मंडराने वाली तितलियां भी स्वप्न की तरह होती गईं।

चले मैडम, ड्राइवर ने कहा तो उसका ध्यान भंग हुआ। बारिश तो मिलेगी पर रोड अच्छा है, आराम से चलते हैं, जहाँ तेज बारिश होगी वहाँ रुक जाएंगे। मीनाक्षी ने किसी को कुछ नहीं बताया, बेकार सबको चिंता हो जाएगी। स्कूल की पढ़ाई, फिर कॉलेज की पढ़ाई के बाद नौकरी, शादी, जिम्मेदारियां, सबने मिलकर बीच के अंतराल को जैसे खामोशियों से भरे बादल में छुपा दिया था। जीवन भी चुपचाप अपनी दिशा तय कर लेता है और हमें लगता है कि हम उसे चला रहे हैं। भीतर की आवाजें लगातार हमें पुकारती रहती हैं और मन बाहर की आवाजों को सुनते हुए भागता रहता था। हम जन्मदिन बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं पर नहीं जानते कि एक वर्ष और चुपके से निकल गया, गिनती में एक साल और कम हो गया। चाचा, चाचा का जीवन कितना गतिशील, कितना खूबसूरत रहा है। आधी उम्र आसमान में उड़ते हुए निकल गई और आधी धरती पर काम करते हुए। मैडम, आप चाहें तो आराम कर लें, मैं सीट डाउन कर देता हूं, ड्राइवर बोला। नहीं नहीं, मैं ठीक हूं, ये आसपास की हरियाली देखने का सुख जो मिल रहा है, क्या करूं, पेड़ों और पक्षियों में जान बसती है मेरी। बचपन जिस माहौल में बीतता है वही आपके स्वभाव में रच बस जाता है। हाँ ये तो है मैडम, अब कहने को हमारे पास दो कमरे हैं पर बाहर का एरिया इतना खुला हुआ है कि शहर में कहीं जाने की इच्छा ही नहीं होती। कितनी देर में पहुंच रही हो तुम, बहन का फोन आया था। बस अभी 2 घंटे और लगेंगे, ट्रैफिक अगर न मिले तो, मीनाक्षी बोली। रात का खाना बनवा कर रखे हैं, कुछ खास बनवाएं क्या, बहन ने पूछा। नहीं नहीं कुछ खास नहीं, बस जल्दी ही पहुंच जाए, बस जल्दी ही पहुंच जाए, उसने मन ही मन कहा। शाम की छाया पहले आसमान में, फिर पेड़ों पर, फिर धरती पर उतरती हुई अंधकार का रूप धारण कर चुकी थी। दूर कहीं एकाध लाइट दिख जाती, घना जंगल है और रोड भी सुनसान, एकाध गाड़ी आती जाती दिख जाती थी। हम सही रास्ते पर तो चल रहे ना भैया? जी मैडम, मेरा देखा हुआ रास्ता है, आप चिंता न करें, थोड़ी दूरी पर ही तो एक चाय का ढाबा है। मीनाक्षी के मन में बुरे ख्याल आने लगे, यहां तक कि ड्राइवर भी अजनबी लगने लगा, पर नहीं, सब ठीक रहेगा, पेट्रोल है, स्टेपनी सही है, कोई दुर्घटना होगी क्यों। हाँ फिल्मी तर्ज पर 4-6 लुटेरे आ जाएं, गाड़ी घेर लें, वो बात अलग है, जंगली जानवर तो बेचारे गाड़ियों की लाइट से ही डर जाते हैं। मीनाक्षी ने देखा दूर बिजलियां टिमटिमाती नजर आ रही थी। चाय पियोगे? जी मैडम, आप? हम भी पी लेंगे। मीनाक्षी को लगा वो लंबी अंधेरी सुरंग से बाहर निकल आई है। गांव में आधी रात को ऐसा ही अंधकार पसर जाता था पर उस रात का मायावी रूप जैसे और निखरने लगता था। आसमान में चमकते नक्षत्रों को देखकर, चांद और उसके आसपास के नक्षत्रों को गिनते हुए

घर पहुंची तो रात के 11 बज चुके थे। बाहर कुछ लोग वॉक कर रहे थे। कुत्तों का पूरा समूह पेड़ों के आसपास सो रहा था। गाड़ी की आवाज सुनकर एक दो कुत्तों ने ऊंघते हुए देखा, थोड़ा सा गुर्राए, फिर अपनी जगह पर जाकर हाथ पांव पसार कर सो गए। ड्राइवर के लिए ऊपर का रूम खुलवा दिया है। चाची ने उससे गले मिलते हुए कहा, थक गई होगी ना, हाथ मुंह धो लो, खाना लगा दिया है। बाकी लोग? मीनाक्षी बोली, तुम्हारे लिए कुछ मीठा लेने गए हैं। चाचा सो गए क्या? नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो दौड़कर चाचा के कमरे में गई, क्षणों तक ठिठकी। रेडियो बज रहा था, टेबल लैंप जल रही थी, साइड की रैक में किताबें रखी थी, चाचा की दवाइयां और अन्य सामान भी अलग अलग बक्सों में रखा था। चाचा, चाचा, मीनाक्षी ने धीमे से पुकारा। अरे बेटा मीनाक्षी, आ गई, कोई परेशानी तो नहीं हुई बेटा, आओ आओ। चाचा से गले मिलकर उसके आंसू निकल आए। देर तक वे उसकी पीठ पर हाथ फेरते रहे। चाचा आप ठीक है ना? कोई चिंता वाली बात तो नहीं है ना? हाँ हाँ ठीक हूँ, अभी खाना खाकर सो जाओ, सुबह बात करते हैं।

चाचा का चेहरा एकदम दुबला हो गया था, उम्र का असर दिख रहा था। वैसे चाचा हमेशा इकहरे बदन के रहे हैं, दौड़ना, घूमना, व्यायाम करना और बेहद संयमित जीवन जीना। क्या हो गया चाचा को? मीनाक्षी ने चाचे से पूछा। हाँ, कुछ दिनों से बेचैन है। जीवन भर काम करने वाला आदमी बिस्तर पर पड़ जाए तो बेचैनी तो होगी ना। उन्हें अपने से ज्यादा अपने खेतों की, पेड़ों की और वहां पले कुत्ते बिल्लियों की चिंता ज्यादा रहती है। क्या कहें, इतने नौकर लगे हैं, पर जब तक अपनी आंखों से खुद नहीं देख लें, उन्हें चैन ही नहीं मिलता है। चाची उसके सामने बैठी थी और उनका चेहरा भरा भरा पर कुछ उदास, चिंतित दिखाई दे रहा था। चाची को शुरू से ही ये सारे काम झंझट भरे लगते हैं, पर चाचा ने उन पर कभी दबाव भी नहीं डाला। चिराग कब आएगा? मीनाक्षी ने पूछा। अगले हफ्ते आ रहा है, लेकिन वो यहाँ स्थायी रूप से रहने वाला नहीं है। उसकी अपनी नौकरी है, दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। चाचा की खेती बाड़ी में उसकी खास रुचि भी तो नहीं है। चाची लंबी बात करने के मूड में थी, पर मीनाक्षी को तो नींद आने लगी थी, इसलिए वो जल्द से जल्द बिस्तर पर जाना चाहती थी। फिर सुबह जल्द उठकर उसे चाचा से बात भी तो करनी है। पता नहीं चाचा क्या कहने सुनने वाले हैं, ये सोचते हुए वो कमरे में सोने चली गई। कमरा बड़ा ही कलात्मक ढंग से सजाया हुआ था। कोने में मनी प्लांट का गमला रखा हुआ था, दीवार पर चिराग और उसकी पत्नी और बच्चों के फोटो लगे हुए थे। दूसरी दीवार पर एक बड़ी सी पेंटिंग टंगी थी। खिड़की के बाहर कई तरह के फूलों और बेलों के गमले लगे हुए थे। सुबह मीनाक्षी की नींद खुली तो देखा बरामदे में चाचा कुर्सी पर बैठे हैं। वे चाय पी चुके थे और अखबार पढ़ रहे थे। उनका केयर टेकर वहीं खड़ा था। चाचा, आप कैसी तबीयत है आपकी? ठीक ही है। चाचा ने चश्मा उतारा, अखबार तह करके रख दिया और सीधे बैठ गए। चाचा, आप कोई बात छुपा तो नहीं रहे? किस तरह की बात? आपकी तबीयत को लेकर। अरे नहीं नहीं मैं 79 साल का हो गया हूँ बेटा, अमर होकर थोड़ी ना आया हूँ। एक न एक दिन तो सभी को अपने अंतिम सफर पर जाना ही पड़ता है। नाश्ता करते हैं, उसने बात बदलते हुए कहा। वो अंतिम सफर की कल्पना भी नहीं कर सकती थी।

मीनाक्षी का मन अब बेचैन हो उठा। चाचा ने एकाएक क्यों बुलाया है आखिर, अब जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। चाचा, आपने फोन करवाया था ना, कोई खास बात है क्या? चाचा क्षणों तक कुछ सोचते रहे, फिर बोले, तुम अब भी वैसी ही हो जैसी बचपन में थी। हाँ चाचा, मन तो वैसा ही है। बेटा तुम्हें पता है ना, अपना अमरूद का जो बगीचा है वो हमसे छिन गया था, वो केस हम जीत गए हैं। 13 साल लग गए उस केस में। सचमुच? पर आपने तो कहा था कि बेच दिया है। मीनाक्षी बोली, इसीलिए कि हम सबको विवादों में नहीं डालना चाहते थे। तो अब वहाँ 4-5 आदमी रख दिए हैं, वे उसकी देखभाल कर रहे हैं। लेकिन लेकिन क्या चाचा? बगीचे से जुड़ी जो जमीन थी हमने उसे भी खरीद ली है। क्यों, क्या करेंगे उस जमीन का चाचा? वहां केवल पेड़ लगवा रहे हैं, कुछ फलदार और कुछ दूसरी तरह के। ये तो बहुत अच्छी बात है चाचा, गांव भी पास में पड़ता है। देखो बेटा, तुमने अपना जीवन गांव में बिताया है, तुम तो गांव की हवा जानती हो, उसका मूल्य भी समझती हो, और मेरा वहां से बड़ा लगाव है। बस ये सोच लो कि मेरी आत्मा वहीं पर रहती है बेटा। जी चाचा, मैं जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ। हाँ, यहाँ के खेतों में जो पेड़ लगवाए थे वो तो नहीं लग पा रहे हैं, देखेंगे बाद में कुछ और लगवा देंगे। यहाँ उस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, वैसे इतना फैलावा करके रखा है कि मालूम है कि बच्चों की इन सारी चीजों में कोई रुचि नहीं है। फिर भी, चाची ने चाचा की शिकायत करते हुए कहा, चिराग की तो कोई रुचि है नहीं, सबका अपना अपना स्वभाव और प्रकृति होती है, हो सकता है कल के दिन उसका मन बदल जाए। फिलहाल मैं गांव वाले मुद्दे पर आता हूँ। अगर मैंने बगीचा, वहां की जमीन दूसरों के हाथों में सौंप दी या बेच दी तो वे सब बर्बाद कर देंगे। बेटा मैं चाहता हूँ कि वहां खूबसूरत जंगल जैसा परिवेश हो, बेशक कुछ कॉटेज रहने के लिए बनवाए जा सकते हैं। जी चाचा, आइडिया तो बड़ा अच्छा है। बेटा तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। कैसी जिम्मेदारी? मैं निभा पाऊंगी क्या? मैंने बगीचा, उससे लगी जमीन, गांव का मकान और वहां का खेत तुम्हारे नाम कर दिया है, सबकी सहमति से। चिराग कुछ नहीं करेगा, यहाँ की जमीन उसके नाम है, चाची के साथ। बस शर्त यह है कि तुम बगीचे को बगीचा और पेड़ों को कभी भी बेचोगी और काटोगी नहीं। बेटा मैं जानता हूँ तुम ही ये चीजें बचा सकती हो, मेरे विरासत को, बच्चों की तरह पाले पोसे वृक्षों को और वहां पलने वाले पशु पक्षियों को। याद है बचपन में उस तोते को तुम ही अस्पताल ले जाती थी बेटा, तुम्हारे ही कारण वो बच पाया था, और कितने सालों तक हमारे साथ रहा, याद है ना मीनाक्षी बेटा? मीनाक्षी एक टक चाचा का चेहरा देखे जा रही थी, माथे के आसपास की उभरी हुई नसें, अंदर को धसी आंखें, हाथ और पांव पर फैली उभरी नसों का जाल। तो क्या चाचा को अपना जीवन अस्ताचल की ओर जाता दिखाई दे रहा है?

चाचा, आप अच्छे खासे स्वस्थ हैं, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? मैं आपका काम देख लिया करूंगी, पर प्लीज वसीयत असीयत का ख्याल छोड़ दीजिए चाचा, मुझे नाम से कोई मतलब नहीं है। मीनाक्षी ने चाचा का हाथ थाम कर कहा, चाचा आपकी सेवा करना मेरा धर्म है और मुझे सुख भी मिलेगा। वो भावुक हो उठी। मैं इस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता हूं बेटा। अपनी विरासत किसी गुणी को, समझदार को और उसके प्रति लगाव रखने वाले को सौंपूंगा तो वो सुरक्षित रहेगी। मुझे मालूम है तुम्हें ये सारे काम आते हैं। तुम वहां की मिट्टी में पली बढ़ी हो, लोगों को जानती हो। मुझे विश्वास है कि तुम वहां की सारी चीजों को संभाल लोगी बेटा। सुनीता, सुनीता जरा मेरी अलमारी में से वो फाइलें ले आना, चाचा ने चाची से कहा। मीनाक्षी चाची को लेकर अचरज में डूबी थी। क्या चाची को कोई एतराज नहीं है? महिलाएं तो अपनी एक चीज तक नहीं देती और चाची एक शब्द नहीं बोल रही हैं। फिर उसे लगा कि चाची बोलेंगी भी कैसे। चाचा ने परिवार का माहौल ही ऐसा बनाकर रखा कि अपने पराये में कोई भेद नहीं। अपने बड़े भाई के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी उन्होंने ही संभाली थी। भाभी को हमेशा सम्मान दिया, दूसरे भाई को भी उनका हिस्सा और मकान दे दिया है। सारा परिवार हर त्योहार पर एक साथ मिलता जुलता है। बेटा मीनाक्षी, मैं तुम्हें एक एक बात समझा दूंगा, चाचा उसे आश्वस्त कर रहे थे। चाचा आप थक गए हैं, आराम कर लीजिए, चलिए लेट जाइए, आराम करिए। मीनाक्षी अपने आप को असहज महसूस करने लगी थी। डायलिसिस के लिए जाना है, याद है ना, चाची ने टोकते हुए कहा। देखो मीनाक्षी बेटा, तुम्हारी चाची तो मेरी बात पर नाराज होने लगती है, पर तुम मजबूत दिल की लड़की हो। मेरी एकमात्र आखिरी इच्छा जरूर पूरी कर देना बेटा। हाँ बताइए ना चाचा, बोलिए। मेरा अंतिम संस्कार गांव में ही करवाना। चाचा आप भी

कार की बातें करते हैं, तभी तो चाची नाराज होती हैं। क्यों ऐसी बातें करते हैं आप? सत्य को स्वीकारना चाहिए बेटा, जीवन मृत्यु ये तो शाश्वत है।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: अच्छा चलो चलो नाश्ता कर लो, चाचा ने मीनाक्षी से कहा। मीनाक्षी ने पीछे मुड़कर अपने आंसू पोंछे और बैग उठाकर बाहर आ गई। कहाँ जा रही हो तुम मीनाक्षी? आपके साथ हॉस्पिटल, फिर निकलना भी तो है मुझे। अरे इतनी जल्दी, तुम तो एक हफ्ते के लिए आई हो। हाँ अपना बगीचा और नया बन रहा जंगल देखने भी तो जाना है, आपको रिपोर्ट जो सौंपनी है और उन सबसे मिलना भी तो पड़ेगा ताकि आपका संदेश पहुंचा सकूं। चाचा पता नहीं मैं कैसे कर पाऊंगी ये सब, आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है कि आपने मुझ पर जो भरोसा किया है चाचा। अरे क्यों नहीं कर पाओगे तुम ही कर पाओगी, कोई अनजान जगह तो है नहीं, वो तो तुम्हारा तितलियों का देश है, उस देश की तुम रानी हो। जाओ मुलाकात करो अपने नए मित्रों से, मोरों से, खरगोशों से, तोतों से और सुंदर चिड़ियों से। मीनाक्षी ने देखा चाचा के चेहरे पर एक गहरे संतोष की चमक दिखाई दे रही थी।

गीतों भरी कहानी इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उर्मिला शिरीष की लिखी कहानी तितलियों के देश में। वाचक स्वर ममता सिंह का था, संपादन सहयोग सौरभ धारू का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राघवेंद्र सिंह नेगी।

अभी हम रिले कर रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 5 बजे हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। इसके प्रायोजक हैं सीएफ वन विभाग सरगुजा।

0: साथी बने गजराज
1: नमस्कार स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये बूंगा रमकोला भेलकक्ष बड़वारी धुरिया अर्च

0: चोका बरपटिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वनमंडल के प्रतापपुर और रामानुजनगर में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये अभयपुर, मेंड्रा, चंदन नगर, टुकुडाण, सिलफिली, कनक नगर, करसी, बूढ़ाडाण, गणेशपुर, गुड़गवा, मदन नगर, सिंघरा, दलदली, भरदा, गौरा, धर्मपुर, सरहरी, केवरा, करंजवार, सेमई, दरहोरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के वाड्रफ नगर, रामानुजगंज और धमनी में हाथियों की कुल संख्या 11 है। ये पिंडारी, तनवारी, पोखरा, मदनपुर, चीनिया, महावीरगंज, छतवा, इंदरपुर, कनकपुर, सिलाजू, उचेरवा, आबादी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के लुंड्रा में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये उदारी, अस्कला, दोरना, मोहरा, जरहा, डीह के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी, कांसाबेल और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये मयूर चूंदी, कुंजारा, पाकरटोली, ढोंगा आंबा, उपका पानी, साजा पानी, बटई केला, कुदरा झरिया, तीता पाकेर, झिक्की, खंताडाण, परसाडाण, पेटा, कोडेग, मैनी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो और कापू में हाथियों की कुल संख्या 88 है। ये आमगांव, गेरसा, उदउदा, पोटिया, आमापाली, नागदरहा, कुड़ेकेला, छाल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वनमंडल के करतला और कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 18 है। ये कांसीपानी, जामपानी, साजा पानी, गीत कुंवारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वनमंडल के पसान, जडगा, एतमानगर और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 52 है। ये बंजारी, मड़ई, लोधीबहरा, मतीन, आमाटिकरा, नवापारा, सिटी पखना, फुलसर, कोरबी, झुनकीडी, जुनवानी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 65 है। ये बंगूरसिया, बरकछार, चक्रधरपुर, धुमाबहाल, कमतरा, चिमटा पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के देवपुर और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये अचानकपुर, चनहाट, कोठारी, तालदादर, पकरीद के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कावारामा, नारीपानी, कोनारी, बुड़ार, जिडार, पायलीखंड, बेसराझर, कोदोमाली, तौरेंगा, कुकरार, ताराझर, खोलापारा, छिंदौला, लूठापारा, फरसरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट, जिसके प्रायोजक थे CF वन विभाग सरगुजा। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। संध्या के 5:05 हुए हैं। आनंद लीजिए चित्रपट संगीत का।

कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना जिस्म फिल्म से केके की आवाज़ में। सईद कादरी के बोल थे और एमएम करीम का संगीत था। आइए सुनते हैं राहत फ़तेह अली खां की मखमली आवाज़ में गुलजार की रचना को। विशाल भारद्वाज ने धुन बनाई है और फिल्म है इश्किया।

पेश है अनिल पांडे के लिखे बोल संदेश चांडिल्य की तर्ज पर, आवाजें अलका याग्निक सोनू निगम की है। फिल्म का नाम है कभी खुशी कभी गम।

लीजिए, पेश है पीयूष मिश्रा की रचना सलीम सुलेमान की तर्ज पर। गायकी राहत फतेह अली खां की है और फिल्म का नाम है आजा नचले।

0: चित्रपट संगीत का आखिरी गीत आप सुन रहे थे राहत फतेह अली खां की आवाज़ में आजा नचले फिल्म से।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
0: श्रोताओं, कृपया कार्यक्रम संबंधी ये सूचना सुनिए। आकाशवाणी बिलासपुर द्वारा एक विशेष फोन इन कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग सोमवार दिनांक 24 अगस्त 2026 को सुबह 11:30 से 12:30 के बीच की जाएगी। इस विषय पर जानकारी देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगे नगर के DIG वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह। श्रोता हमें 07752-266592 इस नंबर पर कॉल करें और अपनी समस्याएं सीधे DIG सर से पूछें। आपकी फ़ोन कॉल्स का हमें इंतज़ार रहेगा। समय याद रखिएगा, सोमवार सुबह 11:30 से 12:30 के बीच। ये सूचना यहीं समाप्त हुई।
2: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
3: हाँ हाँ, जरूर। आपको किसने बताया?
2: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
1: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
0: FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 5:35 हुए हैं। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम युवा जगत की ओर।

नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बिलासपुर और मैं हूं आपका साथी शुभम पाठक। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, इस प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। हरे भरे जंगल, नदियां, पहाड़, पेड़ पौधे और इनके साथ रहने वाले अनगिनत जीव जंतु। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस प्रकृति से हमारा जीवन जुड़ा हुआ है, उनके इन मूक साथियों के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है? तो साथियों

0: आज की बात में हम बात करेंगे वन्य जीव जंतुओं के प्रति हमारा दायित्व इस विषय पर। साथ ही आज के कार्यक्रम में खास होगा आज का क्रम कौशल विकास एवं उद्यमिता, जिसमें हम इस बार का विषय जो ले रहे हैं वह है कक्षा से करियर तक। इस विषय पर हमने गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के उन विद्यार्थियों से बातचीत की है जो अपनी रचनात्मकता और हुनर के माध्यम से धान की राखी का निर्माण कर रहे हैं। साथियों, जब हम जंगल की कल्पना करते हैं तो हमारे सामने हरे भरे पेड़ों की तस्वीर आ जाती है, लेकिन जंगल केवल पेड़ों से नहीं बनता। जंगल की वास्तविक पहचान उसमें रहने वाले जीव जंतुओं, पक्षियों, कीट पतंगों और तमाम छोटे बड़े जीवों से होती है। वन्य जीव हमारे पारिस्थितिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रकृति में हर जीव अपनी भूमिका निभाता है। कोई खाद्य श्रृंखला को संतुलित करता है, कोई बीजों के प्रसार में मदद करता है, तो कोई जंगल की जैव विविधता को बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सोचिए, अगर जंगल से अचानक कोई एक महत्वपूर्ण प्रजाति गायब हो जाए तो उसका प्रभाव केवल उस जीव तक सीमित नहीं होगा, धीरे धीरे उसका असर पूरे पारिस्थितिक तंत्र पर दिखाई दे सकता है। यही कारण है कि वन्य जीवों का संरक्षण केवल वन विभाग या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। दोस्तों, भारत जैव विविधता की दृष्टि से दुनिया के महत्वपूर्ण देशों में एक है। हमारे देश में बाघ, हाथी, तेंदुआ, गौर, भालू, हिरण, बारहसिंघा, विभिन्न प्रकार के पक्षी, अनेक प्रकार के सरीसृप पाए जाते हैं। साथियों, अभी आपसे और भी बातचीत होगी, पर उससे पहले सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
2: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
1: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
3: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
4: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से? वाह!
5: अनजान ऐप से बचें।
6: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
2: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
1: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
3: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
0: साथियों, अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। यहाँ के घने वन और विविध प्राकृतिक परिस्थितियाँ अनेक वन्य जीवों के लिए महत्वपूर्ण आवास उपलब्ध कराती है। हमारे आसपास दिखाई देने वाली छोटी सी चिड़िया से लेकर जंगल में रहने वाले बड़े वन्य जीव तक, हर जीव हमें प्राकृतिक पर्यावरण का हिस्सा मानते हैं। लेकिन आज वन्य जीवों के सामने कई चुनौतियां हैं। वनों की कटाई, प्राकृतिक आवास का सिकुड़ना, जंगलों में आग, प्रदूषण, अवैध शिकार, सड़क और रेल परियोजनाओं के कारण आवास का विखंडन तथा मानव और वन्य जीवों के बीच बढ़ता संघर्ष, ये सभी वन्य जीव संरक्षण के लिए गंभीर चुनौतियां हैं। कई बार हम अपनी छोटी सी लापरवाही से भी वन्य जीवों के लिए परेशानी खड़ी कर देते हैं। साथियों, जंगल में घूमते समय तेज आवाज करना, प्लास्टिक और कचरा फेंकना, वन्य जीवों को देखकर उनके बेहद करीब जाना, उन्हें भोजन देने की कोशिश करना या उनके साथ तस्वीर लेना, उनका पीछा करना, ये सभी व्यवहार वन्य जीवों के साथ साथ हमारे लिए भी नुकसानदायक हो सकते हैं। तो सवाल है कि आखिर हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली जिम्मेदारी, वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास की रक्षा करें। हमें जंगलों और प्राकृतिक क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाने से बचाना होगा। जहां वन्य जीव रहते हैं वहां अनावश्यक मानवीय हस्तक्षेप कम हो, ऐसा प्रयास करना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, वन्य जीवों से दूरी और उनका सम्मान बनाए रखना। अगर हम जंगल या आसपास के क्षेत्र में कोई वन्य जीव दिखाई दे तो उसे परेशान करने के बजाय उनसे हम सुरक्षित दूरी बनाए रखें और संबंधित वन विभाग को सूचना दें। तीसरी जिम्मेदारी है कि प्लास्टिक और कचरे को प्रकृति में न फैलाना। कई बार जंगलों और जल स्रोतों

में बड़ा प्लास्टिक वन्य जीवों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए प्रकृति के बीच जब हम घूमने जाएं तो वहां कचरा फैलाने से बचें। चौथी जिम्मेदारी, जागरूकता फैलाना। साथियों, बच्चों, विद्यार्थियों और समाज के अन्य लोगों को वन्य जीव के महत्व के बारे में बताना और संरक्षण का एक महत्वपूर्ण यह माध्यम हो सकता है। और सबसे जरूरी बात, हमें यह समझना होगा कि वन्य जीव हमारे दुश्मन नहीं है। कई बार जब कोई वन्य जीव मानव बस्ती के आसपास दिखाई

0: हमें यह समझना होगा कि वन्य जीव हमारे दुश्मन नहीं है। कई बार जब कोई वन्य जीव मानव बस्ती के आसपास दिखाई देता है तो डर का माहौल बन जाता है, लेकिन हमें घबराने या हिंसक प्रतिक्रिया देने के बजाय वन विभाग और विशेषज्ञों की मदद लेनी चाहिए। दोस्तों, प्रकृति में हमारा अस्तित्व अकेला नहीं है। इस धरती पर रहने का अधिकार जितना हमारा है उतना ही दूसरे जीवों का भी है। अगर जंगल सुरक्षित होगा तो वन्य जीव सुरक्षित होंगे, वन्य जीव सुरक्षित होंगे तो हमारा पारिस्थितिक तंत्र सुरक्षित होगा, और इन सभी के सुरक्षित होने से हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। इसलिए साथियों, आइए आज हम एक संकल्प लेते हैं। हम वन्य जीवों को परेशान नहीं करेंगे, उनके आवास को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और प्रकृति में कभी भूल कर भी कचरा नहीं फैलाएंगे, और वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति दूसरों को सदैव जागरूक करते रहेंगे। क्योंकि वन्य जीवों की रक्षा करना केवल किसी एक प्रजाति को बचाना नहीं बल्कि प्रकृति के साथ संतुलन और भविष्य को बचाना है। इसी संदेश के साथ आज की बात में फिलहाल इतना ही। साथियों, आइए सुनते हैं साइबर जागरूकता पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम, लीजिए पेश है।
1: नमस्कार, छत्तीसगढ़ पुलिस के साइबर जागृति अभियान में अनुकरणीय संदेशों के साथ मैं हूं उमाशंकर पांडे। साथियों, पैसों के लेन देन की प्रक्रिया को प्रायः सभी बैंकों ने बहुत ही सरल बना दिया है। अब आप पैसों का लेन देन आधी रात को भी कर सकते हैं। इस क्रम में आप अपने एटीएम कार्ड से किसी भी बैंक के एटीएम मशीन से पैसों का लेन देन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में नई पीढ़ी तो निपुण होती है किंतु कुछ बुजुर्गों को पर्याप्त जानकारी के अभाव में असुविधा होती है। एटीएम के आसपास मंडराते साइबर अपराधी ऐसे ही शिकार की तलाश में होते हैं और मौका पाकर एटीएम से पैसा निकालते समय एटीएम धारी बुजुर्ग या अनजान व्यक्ति के पास आकर मदद करने का बहाना कर एटीएम कार्ड बदल लेते हैं या रकम निकालने में हेरा फेरी कर बड़ी क्षति पहुंचा जाते हैं। अतः ध्यान रखें, ऐसे समय परिवार के किसी विश्वास पात्र व्यक्ति को साथ रखें, अनजान व्यक्ति के बहकावे में कभी ना आए। जनहित में सदैव बिलासपुर पुलिस छत्तीसगढ़।
0: साथियों, समय हो गया है एक प्यारे से गाने का, तो आइए सुनते हैं और कुछ पल संगीत के नाम करते हैं। सुनते हैं फिल्म टाइगर जिंदा है का यह खूबसूरत गीत, जिसे अपनी आवाज से सजाया है आतिफ असलम ने, बोल है इरशाद कामिल के और संगीत दिया है विशाल शेखर ने।

तो साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म टाइगर जिंदा है का एक खूबसूरत गीत, जिसे अपनी आवाज से सजाया था आतिफ असलम ने, बोल थे इरशाद कामिल के और संगीत दिया था विशाल शेखर ने। साथियों, समय हो गया है आज के क्रम कौशल विकास एवं उद्यमिता की। दोस्तों, आज के समय केवल किताबी ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। विद्यार्थियों के लिए जरूरी है कि वे अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने हुनर का भी पहचान करें और उसे अवसर में बदलने की कोशिश करें। इसी विचार को समझने के लिए हमने गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से बातचीत की, जो राखी निर्माण का कार्य कर रहे हैं और अपने रचनात्मकता को कौशल में और कौशल को उद्यमिता की दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से हुई हमारी खास बातचीत, कक्षा से करियर तक। युवा साथियों, नमस्कार। साथियों, आज क्रम है कौशल विकास और जो आज का विषय है वो है कक्षा से करियर तक कौशल विकास की भूमिका। साथियों, आज के बदलते दौर में केवल शैक्षणिक डिग्री हासिल करना ही पर्याप्त नहीं, करियर में सफलता के लिए ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक कौशल, संचार क्षमता, तकनीकी दक्षता, रचनात्मक सोच और समस्या समाधान की क्षमता भी आज के समय बेहद जरूरी है। दरअसल कक्षा वह स्थान है जहां ज्ञान की नींव रखी जाती है और कौशल उस ज्ञान को करियर की दिशा देता है। यदि विद्यार्थी अपने रुचि और क्षमता के अनुसार समय रहते आवश्यक कौशल विकसित करें तो वे रोजगार पाने के साथ साथ स्वरोजगार और उद्यमिता के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं। साथियों, आज इन्हीं सब विषय को लेकर के हम आए हुए हैं गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के ग्रामीण प्रौद्योगिकी विभाग में। साथियों, सावन का महीना चल रहा है और इस महीने का अंत रक्षाबंधन, भाई बहनों के प्रेम से बांधे जाने वाले बंधन का, उस रक्षाबंधन त्यौहार के साथ इस सावन के महीने की समाप्ति होती है और जो बहनें होती हैं वो अपने भाई के हाथ में कलाई पे बेहद ही खूबसूरत और प्यार से राखी बांधती है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे साथ कुछ विद्यार्थी जुड़े हुए हैं जो बैचलर ऑफ साइंस की पढ़ाई करते हैं, बीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं वो, और साथ में कुछ कौशल सीख करके अपना जो आर्थिक वहन है वो भी कर रहे हैं और वो राखी बनाते हैं। और बेहद जो जरूरी और रोचक बात है वो धान से राखी बनाते हैं। साथियों, धान अपना छत्तीसगढ़ राज्य है, उसका पहचान है, अपने छत्तीसगढ़ राज्य

0: राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। तो आइए साथियों, एक एक करके इन विद्यार्थियों से बातचीत करते हैं। सबसे पहले आप बताइए, आपका क्या नाम है?
1: जी नमस्कार, मेरा नाम सुनील पुरी है। मैं छत्तीसगढ़ के केंद्रीय विश्वविद्यालय गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में विभाग ग्रामीण प्रौद्योगिकी एवं सामाजिक विकास विभाग 7 सेमेस्टर का छात्र हूँ।
0: सुनील जी, सबसे पहले आप हमारे युवा साथियों को ये बताएं कि आपकी जो टीम है वो राखी बना रही है, तो ये जो आइडिया है कि धान से राखी बनाने का, ये कहाँ से आया?
1: सर, ये आइडिया हम लोग को इससे आया कि जैसे धान का जो राखी बनता है वो इको फ्रेंडली रहता है, और जो मार्केट में राखी मिलता है वो इको फ्रेंडली नहीं रहता। जैसे कि 3-4 दिन उसको यूज़ करने के बाद उस राखी को जब फेंक देते हैं, राखी को 3-4 दिन ज़्यादा से ज़्यादा पहनते हैं, उसके बाद बहुत लोग फेंक देते हैं, तो वो हम लोग के जो ज़मीन में है मिलता नहीं है और इको सिस्टम को डैमेज करता है। तो हम लोग उसी को ध्यान में रखते हुए धान और चावल का राखी बनाते हैं और गेहूँ का भी यूज़ करते हैं।
0: तो पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि सुनील जी ने कहा, बिल्कुल सही बात है, रेशम के धागों से राखी बनती है, लेकिन इसके साथ ही कई ऐसे पदार्थों से भी मिलकर के राखी बनाई जाती है जो पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है, जैसे प्लास्टिक, जैसे फोम इत्यादि। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ की पहचान धान से जब हम राखी बनाते हैं, और वो राखी यदि हमारे हाथ से जब उसको डिकम्पोज करने की बारी आती है, तो वो हम अगर उसको कहीं छोड़ भी दे तो पर्यावरण के लिए कोई नुकसानदायक नहीं होगा। हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते। बताइए आपका क्या नाम है?
2: नमस्कार सर, मेरा नाम सुहानी है, मैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय 3rd सेमेस्टर की छात्रा हूँ।
0: अच्छा सुहानी, आप कहाँ से हैं?
2: सर मैं अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से हूँ।
0: आप अभी राखी बनाती हैं?
2: जी सर, हम डिपार्टमेंट में ही खुद से अपने हाथों से राखी बनाते हैं।
0: और ये बताइए, जो सुंदर सुंदर राखियाँ दिख रही है, ये आप कब से बना रहे हैं?
2: ये हम पिछले 2 हफ्ते से बना रहे हैं, जो अभी तक हमारा पूरा राखी कम्प्लीट हो चुका है।
0: और 2 हफ्ता में आपने कितनी राखी बना ली?
2: हमने 3-4 हजार राखियां बना चुकी है।
0: ये तो पूरी टीम ने मिलकर बनाई होगी। सुहानी जी, मैं पूछ रहा हूँ कि आपने 2 सप्ताह में कितनी राखी बनाई?
2: मैंने 200 राखी बना चुकी है।
0: 200 राखी आपने बनाया, और इन राखियों को आप कहाँ सेल करती हैं?
2: ये हम अलग अलग कॉलेज में जाके सेल करते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग भी करते हैं और अपने यूनिवर्सिटी में भी सेल करते हैं।
0: और जैसे आपने 200 राखी बनाई, तो उसका एक का रेट जो प्राइस है वो आप कितना रखती हैं?
2: ये अलग अलग राखियों का प्राइस हम अलग अलग उसमें डिपेंड करता है। एक राखी का प्राइस लगभग 30 से 35 रुपए है।
0: 30 से 35 रुपए, और आपने 2 सप्ताह में करीब 200 राखी बनाई। अब मुझे ये बताइए सुहानी, कि आप रक्षाबंधन को लेकर के राखी बना रही हैं, आपका कौशल विकास तो एक हो रहा है कि आप पढ़ाई के साथ साथ कुछ सीख रही हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपको कोई फायदा मिल रहा है क्या इसका?
2: यस सर, हम बहुत सारे इससे फायदे मिल रहे हैं, हमारा स्किल डेवलप हो रहा है, इससे जो भी पैसा आ रहा है वो हमारे पढ़ाई के लिए भी जा रहा है।
0: कैसे पढ़ाई के लिए जा रहा है, हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं को थोड़ा बताएं।
2: जो इससे जो पैसा आता है वो हमारे जो ग्रुप है स्वावलंबी छत्तीसगढ़ योजना में जो भी जुड़े हैं वो हम डिवाइड करते हैं, पैसा बच्चों में डिवाइड होता है, फिर जो भी पैसा मिलता है हम उसको में फीस पटाते हैं।
0: अच्छा, बहुत अच्छा। तो सुना युवा साथियों, आप सभी ने, सुहानी का कहना है कि ये जो विद्यार्थी हैं, अपने पढ़ाई के बाद जो समय बचता है उसमें ये अपने कौशल विकास करते हैं और अपने मेहनत से राखी का निर्माण करती हैं, उसके बाद ये सेल होता है, और उसके बाद जो अमाउंट बचता है, जो इनका नेट इनकम होता है, वो टीम में बराबर बंटता है, और उसके बाद वो विद्यार्थी जो है उन पैसों को अपने फीस को पेमेंट करते हैं। तो आपका फीस कितना है सेमेस्टर का?
2: मेरा 3rd सेमेस्टर का फीस है 5,000।
0: 5,000 रुपए, और आपने 3rd सेमेस्टर की फीस जो है पेमेंट कर दी 5,000 रुपए।
2: यस।
0: तो घर वाले तो बहुत खुश होते होंगे?
2: यस सर, घर वाले काफी खुश होते हैं इस।
0: तो आप अभी BSc में हैं, कल से आपका पहला ये इनकम होगा जीवन का?
2: यस सर, ये पहला इनकम।
0: तो कैसा लगा आपको?
2: बहुत अच्छा लगा ये जानकर, ये हमको स्किल भी मिला इससे और काफी खुशी हुई।
0: ठीक है, धन्यवाद सुहानी, आपसे फिर बात करेंगे। चलते हैं अगले साथी की ओर। बताइए आपका क्या नाम है?
3: मेरा नाम अभय पांडे, मैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का 3rd सेमेस्टर का छात्र हूँ।
0: आप कौन से विभाग से पढ़ रहे हैं?
3: रूरल टेक्नोलॉजी एंड सोशल डेवलपमेंट।
0: रूरल टेक्नोलॉजी एंड
3: सोशल डेवलपमेंट।
0: तो अभय, बताइए कि क्या आपने भी अपने फीस का पेमेंट इस राखी के माध्यम से किया है?
3: जो भी हमने राखी बेचा है उससे जो भी पैसे मिले हैं हमको, हाँ, उसी से फीस पेमेंट हुआ हमारा।
0: और जैसे आपके टीम में कितने लोग हैं ये बता सकते हैं क्या?
3: अभी ऐसे हमारे डिपार्टमेंट में बोलेंगे तो 20-25 लोग जुड़े हुए हैं, सीनियर्स भी साथ में हैं
0: जी।
3: और ऐसे योजना में बोलेंगे छत्तीसगढ़ स्वावलंबी योजना में तो 200-300 लोग जुड़े हुए हैं लगभग।
0: अच्छा, ये 200-300 पूरे विश्वविद्यालय, हाँ,
3: साथ में महिला समूह भी जुड़े हुए हैं उसमें।
0: अच्छा, अब अभय जी ये बताइए कि आप अभी कौन से क्लास में है? 3rd सेमेस्टर में। तो आपके अंदर ये ललक कैसे जगी, आपके मन में ये कैसे आया कि इस टीम से हमको जुड़ना चाहिए?
3: सर नए नए स्किल्स सीखने को मिल रहे थे, पढ़ाई के साथ में स्किल्स भी डेवलप हो रही थी, तो लगा कि कुछ नया सीखने को मिलेगा आगे चल के, अगर जॉब अब नहीं मिलता है तो कुछ स्किल्स काम आएंगी आगे चल के।

0: सके अपने बिजनेस खुद का खोलने के लिए,
1: जी,
0: इसलिए
1: आत्मनिर्भर
0: लगा।
1: भारत की ओर एक अच्छा कदम हो
0: जी
1: सकता है
0: सर,
1: कौशल विकास।
0: जी सर,
1: तो आप धान की राखी बना रहे हैं, आपने कहा कि अलग अलग कौशल हमने सीखा,
0: जी
1: तो
0: सर,
1: इन करीब 1.5 साल हो गए आपको
0: जी
1: विश्वविद्यालय
0: जी
1: में आए,
0: सर, हो
1: चूंकि
0: गए
1: आप तीसरे सेमेस्टर में हैं, तो इन 1.5 साल के दरम्यान में आपने क्या क्या कौशल सीखे?
0: सर। अभी तो फिलहाल राखी बनाना सीख रहे हैं धान से, उससे
1: जी
0: पहले हमने गुलाल भी बनाया, ऑर्गेनिक गुलाल वगैरह, और
1: अच्छा
0: वर्मी कंपोस्ट भी सीखा हुआ है,
1: जी
0: और बहुत सारे स्किल्स है सर।
1: जी तो सुना युवा साथियों, आप सभी ने करीब 18 महीने में अभय ने बताया कि उन्होंने 3 प्रकार के कौशल सीखे, पहला धान से राखी बनाना, दूसरा ऑर्गेनिक गुलाल बनाना, और तीसरा वर्मी कंपोस्ट। तो साथियों देखेंगे तो इन मतलब हर एक सेमेस्टर में हम कह सकते हैं कि एक कौशल इन्होंने सीखा, और साथियों मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, ये राखी सच में बेहद प्यारी है, रेशम के धागों से बनी हुई है, और जो धान के दाने और चावल के दाने इसमें लगाए गए हैं खूबसूरती को बहुत बढ़ाते हैं, कह सकते हैं कि इसमें 4 चांद लगा रहे हैं। आइए साथियों और विद्यार्थियों से बातचीत करते हैं, बताइए आपका क्या नाम है?
2: नमस्कार, मेरा नाम साहिल कुमार है, मैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का 3rd सेमेस्टर का छात्र हूँ।
1: तो साहिल बताइए कि आप इस टीम में कैसे जुड़े, किसने बोला आपको जोड़ने के लिए?
2: सर ऐसे किसी ने बोला नहीं, लेकिन हम अपने सीनियर भैया लोग को देखते थे कि वो लोग कार्य कर रहे हैं स्वावलंबी छत्तीसगढ़ योजना के तहत, जिसमें वो लोग अपना फी पेमेंट कर रहे हैं, छोटा मोटा मिसलिनियस खर्च निकाल रहे हैं, जिस वजह से वो लोग अपने पेरेंट्स पे प्रेशर भी नहीं बनते थे पेमेंट के लिए। तो उनको देख करके और स्किल कुछ नया सीखने की ललक की वजह से हम इस स्वावलंबी छत्तीसगढ़ योजना में जुड़े।
1: तो कुछ नया सीखने की ललक से आप इस स्वावलंबी छत्तीसगढ़ योजना में जुड़े। अब ये चीज बताइए कि आप आज विद्यार्थी हैं, आज आप रूरल टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं, आपको आगे क्या बनना है? आप जॉब प्रोवाइडर बनना चाहते हैं या आप खुद जॉब करना चाहते हैं?
2: सर हमारा सपना तो है जॉब प्रोवाइडर बनने का, जितने लोगों को हम रोजगार दे सके, जितने
1: जी
2: लोगों को मतलब आर्थिक स्थिति नहीं सही है, उनको जितने कम से हो सके उतने में हम उनको जॉब प्रोवाइड करना चाहते हैं, ताकि वो भी अपना जीवन अच्छे से यापन कर सके।
1: और इसके लिए आप किस योजना पे काम करेंगे?
2: सर पहले तो हम खुद की स्किल पे काम करेंगे, ताकि हम आगे चल के दूसरों को उस लायक जॉब दे सके कि वो लोग अपना घर चला सके।
1: स्किल को एनहेंसमेंट करेंगे और उसके बाद एनहांस करने के बाद आप दूसरों को जॉब देंगे। तो युवा साथियों और आकाशवाणी के प्यारे श्रोताओं, मुझे इनकी बात सुनकर बेहद खुशी हो रही है कि आज कोई विद्यार्थी जो जेन जी का है, जेन जी जनरेशन का है, और वो यह कह रहा है कि मुझे जॉब सीकर नहीं जॉब प्रोवाइडर बनना है, ये सच में बहुत बड़ी बात है। और कौशल विकास करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने छत्तीसगढ़ राज्य को स्वावलंबी बना सकते हैं, अपने भारत देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। साथियों इन सभी से हमारी बातचीत हो रही है, और मैं बताना चाहूंगा इन सभी को जो लीड करते हैं वो शशिकेश राज हैं, विद्यार्थी हैं, विश्वविद्यालय के PhD स्कॉलर हैं। आइए उनसे बात करते हैं। शशिकेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: जी धन्यवाद शुभम पाठक जी।
1: तो शशिकेश जी एक चीज हमें बताइए, कहा जाता है आमतौर पर यह धारणा होती है और यह देखा भी गया कि जो व्यक्ति रिसर्च करता है, जो शोध कर रहा है, वो अपने शोध के कार्य में इतना व्यस्त हो जाता है कि अलग से वो किसी चीज के लिए समय नहीं दे पाता। आप समय का प्रबंधन किस प्रकार करते हैं?
3: वर्तमान में समय का प्रबंधन बेहद मुश्किल है, लेकिन मेरा जो शोध विषय है वो एंटरप्रेन्योर और हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड है।
1: जी
3: तो इन बच्चों के साथ काम करना मुझे बेहद पसंद है, और जो इन कार्यों को कराते हैं हमारे डॉक्टर दिलीप कुमार जो अभी एसोसिएट प्रोफेसर है, उनके मार्गदर्शन में ये चीजें बेहद आसान हो जाती है, क्योंकि वो बेहद ही मैनेज तरीके से कार्यों को संपन्न कराते हैं।
1: जी तो आपने बताया कि आपका जो रिसर्च है वो हैंडीक्राफ्ट और एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के है, तो आप थ्योरी के साथ साथ एक प्रैक्टिकल भी आप करवा रहे हैं।
3: ये प्रैक्टिकल मेरे लिए भी काफी लाभदायक है, क्योंकि मुझे ग्राउंड लेवल पर यह सीखने को मिलता है कि किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ता है, जैसे पैकेजिंग की समस्या, जैसे रॉ मटेरियल की समस्या। तो इन समस्याओं को मैं जमीनी स्तर पर देख पाता हूँ, समझ पाता हूँ कि कैसे ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना है।
1: यदि कोई व्यक्ति आकाशवाणी की इस वार्ता को सुन करके वो धान की राखी खरीदना चाहे या धान की राखी बनाना चाहे, तो वो कहाँ पर संपर्क करेगा?
3: इन लोग आपके घर तक पहुंचा सकते हैं राखी। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमारे रूरल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट पहुंचिए, आपको इजीली राखी उपलब्ध हो जाएगी।
1: तो सुना युवा साथियों आप सभी ने, यदि आपको ये धान की आकर्षक प्यारी राखियां चाहिए, और कोई भी बहन जो इस वार्ता को सुन रही हो अपने प्यारे भाई के कलाई पे धान से बनी हुई राखी बांधना चाहती हैं, तो आप गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के ग्रामीण प्रौद्योगिकी विभाग, जिसे इंग्लिश में रूरल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट कहते हैं, आप वहां आ सकते हैं और डॉक्टर दिलीप कुमार से संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों आज हमने इन विद्यार्थियों से बातचीत की और यह जाना कि कौशल विकास कक्षा के साथ साथ क्यों जरूरी है, और एक कौशल के माध्यम

से हम किस प्रकार की कक्षा से करियर तक की दूरी को बड़े ही आसानी से नाप सकते हैं और कक्षा से निकल करके अपने करियर को बना सकते हैं। तो साथियों, समय हो गया आप सबसे विदा लेने का। आप सबको आज का यह क्रम कौशल विकास कैसा लगा, आकाशवाणी को पत्र अथवा ईमेल के माध्यम से जरूर बताएं। तो साथियों, समय हो गया एक प्यारे से गाने का। आइए सुनते हैं फिल्म स्त्री का यह खूबसूरत गीत, जिसे अपनी आवाज से सजाया है आस्था गिल और सचिन जिगर ने। बोल हैं वायु के और संगीत दिया है सचिन जिगर ने।

तो साथियों, समय हमें इतनी ही इजाजत देती है। आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा, आकाशवाणी को पत्र अथवा ईमेल के माध्यम से जरूर बताएं। और अब अपने साथी शुभम पाठक को आज्ञा दें। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा जगत। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.2 MHz पर। शाम के 6:05 हुए हैं। आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी हम देंगे कार्यक्रम विवरण के माध्यम से।

रात्रि 8 बजे आकाशवाणी रायपुर से हम रिले करेंगे भिलाई में संपन्न अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन की रेडियो रिपोर्ट शाम 6:20 पर और शाम 7 बजे आनंद लीजिएगा। ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम का। शाम 7:30 पर हम बढ़ेंगे ग्राम सभा की ओर। बेरा के गोठ में चर्चा का विषय होगा ई नेम और किसान मोबाइल ऐप, डिजिटल कृषि की ओर बढ़ता देश। इसके बाद सुनेगा फोन इन कार्यक्रम जिसमें धान रोपाई

इसी में खरपतवार नियंत्रण विषय पर श्रोताओं द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देंगी डॉक्टर गीत शर्मा। रजनीगंधा की महक हम बिखेरेंगे रात्रि 8:30 पर।

आइए अब जानते हैं कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों को। सुबह 9:15 पर प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। सुबह 8:30 पर समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह, सुबह 9:00 बातों बातों में और शाम 7:30 पर किसान वाणी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। प्रातः 6:30 पर खेती की बात का विषय होगा बाजरा के प्रमुख रोग एवं नियंत्रण, वाचक होंगे अभिनव गौरहा। प्रातः 6:45 पर चिंतन का विषय होगा अहिंसा का अर्थ, आलेख डॉक्टर शलभ तिवारी का है। सुबह 7:05 पर प्रतिदिन की तरह हम पेश करेंगे कार्यक्रम आज सुबह, सदाबहार नगमों को सुनिएगा सुबह 7:30 पर। कार्यक्रम अमराई का समय होगा सुबह 10:00। कलाकार होंगे दिलीप यादव, कुमारी गोस्वामी साहू और साथी, जीडी मानिकपुरी और साथी। सुबह 10:30 पर हम शुरू करेंगे सफर नए तराने कार्यक्रम का। संध्या 5:00 सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ, चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा संध्या 5:05 पर। ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम हम पेश करेंगे संध्या 5:35 पर, शाम 6:20 पर और शाम 7:00। सुगम संगीत में नूर जहां के गीत हम पेश करेंगे रात्रि 8:00। कार्यक्रम रजनीगंधा की महक हम बिखेरेंगे रात्रि 8:15 पर। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार छत्तीसगढ़ी में।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग धर्मेंद्र दुबे के जय जोहार। आज के प्रमुख समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ह प्रवेश स्तर के न्यायिक सेवा परीक्षा दे के बारे में विधि स्नातक बर जरूरी 3 बच्छर के वकालत के बेरा लगटा के करीन 1 साल। मुख्यमंत्री ह उत्तराखंड के चमोली में हुए घटना में कोंडागांव जिला के 4 जिन मजदूर के परिवार बारे मन ला 5-5 लाख रूपया के आर्थिक सहायता दे के निर्देश दे है। और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में प्रश्न पत्र लीक होए के सूचना के बाद परीक्षा निरस्त करे के घटना के जाँच पर बनाए गए है समिति। अब समाचार विस्तार ले। सर्वोच्च न्यायालय ह प्रवेश स्तर के न्यायिक सेवा परीक्षा दे के बारे में विधि स्नातक बर जरूरी 3 बच्छर के वकालत के बेरा लगटा के 1 साल कर दे है। न्यायालय ह ए बारे में 5 बच्छर के अपन फैसला में संशोधन करे है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति एजी मसीह और के विनोद चंद्रन की पीठ है पुनर्समीक्षा ला खारिज करत 2-1 ले ए फैसला दिन। उत्तराखंड के चमोली जिला के पीपल कोटी में पाछू हफ्ता सुरंग हादसा में लापता 2 जिन मजूर के शव में 1 जिन के पहचान छत्तीसगढ़ के चेतन पोयाम के रूप में हो है। संगे संग ए घटना में जान गंवैया लोगन मन के संख्या बाढ़ के 10 हो गई है। ए घटना में कोंडागांव जिला के गांव धनसूली के 2, मन्नार के 1 और दही कोंगा के 1 जिन मजूर के मौत होए के पुष्टि पहले करे जा चुके है। ए घटना में यही जिला के 2 जिन मजूर घायल हुए है।

0: मंत्री विष्णु देव साय हा उत्तराखंड के चमोली मा बनत सुरंग मा पानी भरे के घटना मा कोंडागांव जिला के चार जिन मजूर के मौत ऊपर गहरा शोक व्यक्त करे हे। मुख्यमंत्री हा मृतक श्रमिक मन के परिवार वाले मन ला 5-5 लाख रुपया और ये घटना मा घायल दोनों श्रमिक मन ला 50-50 हजार रुपया के आर्थिक सहायता दे के निर्देश दे हेवे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में पेपर लीक के मामला आगुआए के बाद परीक्षा रद्द कर दे गए है। मुख्यमंत्री है ये मामला ला संज्ञान में ले है। उमन किन की एकर जांच पर 5 सदस्यीय जांच समिति बनाए गए है। जांच रिपोर्ट आए के बाद दोषी मन के खिलाफ कड़ा कार्रवाई करे जाही। ये मामला में FIR दर्ज करा दे गए है। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के सचिव अविलक्ष्य लेखी हकीन है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम ले मत्स्य किसान मल्ला आधुनिक तकनीक वित्तीय सहायता और बढ़िया अधोसंरचना दवाया जाती। काली रायपुर में रखे गए एक थीन कार्यक्रम में ओमन किहीन कि छत्तीसगढ़ में मछली उत्पादन के बढ़िया संभावना है और राज्य में तिलापिया क्लस्टर विकसित करे जाते। ओमन बताइन कि राज्य में मत्स्य क्षेत्र के परियोजनाओं पर करीबन 900 करोड़ रुपया खर्चा की मंजूरी दे जा चुके हैं। राज्य में 2000 ले ज्यादा किसान मल तिलापिया पालन करत है। प्रदेश के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में आने सरकारी संस्थान मन में अलग अलग शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पद में कॉन्ट्रैक्ट भर्ती पर राज्य स्तरीय ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा रखे जाए जेकर परिणाम एक हफ्ता के भीतर घोषित कर दे जाही। ये जानबा स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव हा आज नवा रायपुर में रखे गए पत्रकार वार्ता में दिन स्कूल शिक्षा मंत्री हा घिन कि स्कूल शिक्षा विभाग डहार ले पाछो 2 साल में 2104 शैक्षणिक पद में सीधी भर्ती करे गए है और 5000 ले ज्यादा पद में भर्ती के काम चलत है। ओमन किहीन कि विभाग डहार ले 7000 ले ज्यादा शिक्षक मल्ला आने आने पद में प्रमोशन दे गए है। ओमन बताइन कि बहुभाषी शिक्षा ला बढ़ावा देवत बस्तर संभाग में उन्हें के भाषा के प्रयोग करके शिक्षक मल्ला प्रशिक्षण दे गए है। उन्हें छात्र मल्ला बेरा में मुफत में पाठ्य पुस्तक और ड्रेस दे जाही। एकर अलावा विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम ले स्कूल शिक्षा के आने आने गतिविधि मन के ऑनलाइन निगरानी करे जाते। मुख्य सचिव विकासशील मंत्रालय ले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले प्रदेश में जल जीवन मिशन के कामकाज की समीक्षा पर कलेक्टर कॉन्फ्रेंस रखी। ओमन कलेक्टर मल्ला हर घर नल ले पानी पहुंचाए पर मिशन कोड में काम करे के निर्देश दिन। मुख्य सचिव हा पूरा हो चुके योजना मन के भौतिक सत्यापन कराए और पंचायत मल्ला हस्तांतरित योजना मन के रुके भुगतान ला जल्दी करे बर कहीन। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगु बढ़बो बाचे समाचार कोती। सुनैया मल्ला बता दन कि प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में एदारी कोंडागांव जिला में शुरू करेगे हिलल हर्बल गार्डन योजना ऊपर केंद्रित औषधीय पादप बोर्ड के अध्यक्ष विकास मरकाम लेके भेंटवार्ता प्रसारण करे जाही। एकर प्रसारण काली 22 अगस्त के आकाशवाणी केंद्र रायपुर डहार ले FM और प्राइमरी चैनल में बिहनिया 9 बजे ले करे जाही। जिला छत्तीसगढ़ के जम्मू आकाशवाणी केंद्र एके संग्रह रिले करही। नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोड़ा हा काली मंत्रालय में विभागीय अधिकारी मन के बैठक लेके योजना मन के क्रियान्वयन और विकास कामकाज के समीक्षा करें। ओमन नगर निगम आयुक्त और मुख्य नगर पालिका अधिकारी मन के टीम के संग रोजेच वार्ड मन में घूम के विकास और साफ सफाई के निगरानी करे बर कहीन। संगे संग बाजार मन में रोजे साफ सफाई बेरा में कचरा उठाए ऊपर ध्यान देके बात कहीन। प्रमुख सचिव है आने आने नगरी निकाय मन में बनत 38 ठिन नालंदा परिसर मन के काम ला जल्दी पूरा करे के निर्देश दिन। राजनांदगांव जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत सोमनी के सरपंच नीलिमा साहू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गए है। मतदान के दौरान सरपंच के संगे संग दूजिन पंच हा वोट नहीं डालिस जेखर ले अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कुल 16 मत मिलिस और उप सरपंच के पक्ष में एको मत नहीं पड़ीस और अविश्वास प्रस्ताव 16-0 के स्पष्ट बहुमत ले पारित हो गए। प्रादेशिक सेना में राष्ट्रीय स्तर में हैकथान टेरियर साइबर क्वेस्ट के शुरुआत करेगी है। एकर उद्देश्य रक्षा, साइबर सुरक्षा और सूचना के क्षेत्र में आवत चुनौती ले निपटे पर नवा समाधान बनाना है। हैकथान

की शुरुआत साइबर पीस की मदद लेकर की गई है। इकर तहत शिक्षा जगत, उद्योग अनुसंधान संस्थान, सरकारी संगठन और सशस्त्र बल के तकनीकी प्रतिभा मल्ल एक संग्रह लाए जाए। रक्षा मंत्रालय बताइन कि ये पहल के माध्यम ले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और डिजिटल जागरूकता के संगे संग राष्ट्रीय सुरक्षा पर स्वदेशी समाधान विकसित करे पर आगू लाए जा। प्रतियोगिता पर पंजीकरण 31 अगस्त तक कराया जा सकते। ऑनलाइन चयन 1-10 सितंबर तक करे जाही। एकर बाद फाइनल नई दिल्ली में 6-8 अक्टूबर तक होही। बिलासपुर जिला के पचेपेड़ी थाना क्षेत्र में काली संझा तरिया में बुड़ेले दूजिन सगा भाई के मौत हो गए। जानबा के मुताबिक 4 और 7 साल के ये दोनों लड़का मन अपन बाबू के संग तरिया गे रही। इस दौरान 4 साल के लड़का के पैर फिसले ले वहा गहरा पानी में चले गए। भाई लड्डूबत देख बड़का भाई है घलो बचाए की कोशिश में तरिया के पानी में चले गए। गहराई ज्यादा हो के सेती दोनों भाई के पानी में बुड़ेले मौत हो गए। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के पेंड्रा में राखे गए 4 दिवसीय 26वां राज्य स्तरीय साले क्रीड़ा प्रतियोगिता आज सिरा गई। प्रतियोगिता में जिम्नास्टिक, ताइक्वांडो, कबड्डी और क्रिकेट में बढ़िया प्रदर्शन के आधार में बिलासपुर संभाग ओवरऑल चैंपियन रही। समापन समारोह में कोरबा सांसद ज्योत्सना चरण दास महंत बढ़िया प्रदर्शन करैया खिलाड़ी और विजेता टीम ला पुरस्कार देके सम्मानित करीन। ये मौका में ओमन फिजिकल कॉलेज मैदान के जीर्णोद्धार पर 20 लाख और पदगवा में सीसी रोड बनाए पर 10 लाख रुपया देके घोषणा करीन। राज्य स्तरीय साले क्रीड़ा प्रतियोगिता में प्रदेश के 5 संभाग ले 540 खिलाड़ी मन भाग लीन। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के मुख्य परीक्षा आज ले शुरू हो गई है। ये परीक्षा 22, 23, 29 और 30 अगस्त तक चलही। परीक्षा बिहनिया 9 बजे ले मंझनिया 12 बजे तक और 2:30 बजे ले 5:30 बजे तक दो पाली में चलत है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। सर्वोच्च न्यायालय प्रवेश स्तर के न्यायिक सेवा परीक्षा दे के बारे में विधि स्नातक पर जरूरी 3 बच्छर के वकालत के बेरा लगटा के करीन 1 साल। मुख्यमंत्री उत्तराखंड के चमोली में हुए घटना में कोंडागांव जिला के 4 जिन मजदूर के परिवार वाले मल्ला 5-5 लाख रुपया के आर्थिक सहायता दे के निर्देश दे है। और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में प्रश्न पत्र लीक होए के सूचना के बाद परीक्षा निरस्त करे के घटना के जांच भर बनाए गए है समिति। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।

0: छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
0: एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:20 हुए हैं। लीजिए पेश है ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें, गीत सुने। कार्यक्रम का पहला गीत हम लेकर आए हैं दुश्मन फिल्म से, लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में। आनंद बख्शी की रचना है, उत्तम सिंह का संगीत है और फरमाइश आप सभी की। नरगोड़ा से हमारे साथी हैं कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि शीतल राजेश। मोहाली चंडीगढ़ से टी मल्होत्रा, डी ऋतिक, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप। वीराम गाम राजकोट से रुचि गुप्ता, ट्विंकल और उमा गुप्ता। बिलाईगढ़ से खिकराम देवांगन, रेणु, रजनी, प्रियंका देवांगन। डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, अनिष्का और तन्मय गजभिये। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा। सौंगा मगरलोट से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित, देविका रानी, गजेंद्र कुमार, हेयांश कुमार चंदन। पोड़ी भाटा अगलतरा से हमें फरमाइश भेजी है दिलीप चंदन, चुआराम यदु, निखिल, वसुंधरा चंदन, प्रांजल चंदन।

मदनपुर से हमारे साथी हैं श्रवण कुमार साहू, योगेश राहुल साहू, कुंभार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा प्रतीक्षा चंदन, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित गर्व हिमाक्ष, पांडरकवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा अनुश्री धनश्री बुरांडे, भटिंडा पंजाब से परेम सिंह जौड़ा, मंजीत कौर करणवीर करण दपिंदर वरिंदर कुलदीप सीमू एकम दमन अभिजोत, तिवर्ता डबरीपारा जिला कोरबा से महेंद्र प्रताप मरकाम जया जागेंद्र गजेंद्र जयंती ममता मनीषा मंजू मानसी सुरेंद्र मरकाम मोहन सिंह सोहद्रीबाई मनमोहन सिंह गिरजाबाई चंद्रपाल मरावी लक्ष्मी थदवानी। दिल्ली से हमें फरमाइश भेजी है तुलसी मस्किन वीना चैतन्य मेघा मस्किन ने। देगलूर नांदेड़ से संतोष भाकरे सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे। महसौल सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहानाज तलत फरहत रिफत नुजहत साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज। चिरमिरी कोरासिया कालरी से इंद्रबान सिंह अनुभव सिंह ऋषभ सिंह राम सहोदर नारायण प्रसाद लहरे दिनेश प्रसाद लहरे कालिंद्री लहरे। तेलंगाना भोंगीर से हमारे साथी हैं मोहम्मद बुरहानुद्दीन मोहम्मद यूसुफुद्दीन। रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी हेमलता हीना हर्षित खुशी गोस्वामी। पटियाला से मुकेश बत्ता नीलम बत्ता। जगराओं से सुनील पाठक कमल पाठक दीपिका मल्होत्रा गाव्या मल्होत्रा सुच्चा सिंह पाठक। मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज पीयूष कुमार रोहित राज। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा जसवीर जस्सी सीता और गीता। मेरठ केंट से दिग्दर्शन कविता कर्ण शक्ति रिया जया और दर्शन भाई। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये गीत।

0: कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना दुश्मन फिल्म से लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में।
1: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जाँचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
0: इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास ईमेल्स आए हैं। फरानसी हिसार से राजकुमार दूदी, प्रमोद कुमार पुष्पेंद्र सिंह दूदी का। रायगढ़ से हमारे साथी हैं नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र जोई यामिनी उमा तिवारी। हांसी से राजू मिगलानी, बब्बू डब्बू बबीता मिगलानी और सुभाष योगी। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव। मणि डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित तानिया नारंग। धुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव नवीन, युवराज साहू। बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी। खम्हरिया से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार। मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर से मुकेश कश्यप, सोनू, सुरेश राजपाल, पंकज, काजल, सीमा मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह। पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानकचंद मल्होत्रा। तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख, शेख रही मुन्ना। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू, पप्पी भाटिया, राज

कोट से राजेश कृष्णा, स्वाति और ख्याति कुमारी, बुल्ढाना वरशिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार, जमशेदपुर से अपूर्व सिंह, अनुपम राकेश कुमार, लगान पंडरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी साहिल, भारती बघेल, भोपालगढ़ राजस्थान से हमारे साथी हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहार, इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता गणेश, कार्तिक परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी, कुमारी देवी चौधरी, मालती चौधरी, भाटापारा से हमें फरमाइश आई है बचकामल मोतीलाल यादव, सियाराम चुआराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदू, भुवन कामरीका, रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या, कीर्ति, डिकेश, वासु, डॉली, पूर्वेश साहू की, नरवेल महाराष्ट्र से पीएम नहावकर, निर्मला विशाल नहावकर, हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला इंदु, पार्वती हिमांशु गोदारा, रायपुर से नीलू मेघ, वंदना कुमार, बिट्टू कुमार, यवतमाल से जयराम सिंगणकर, दिशांत और अर्पिता, राजकोट से जूली जगदीश, गुजराती प्राची और प्रवीण पुजारी। इस गीत को गाया है चित्रानी, देव कोहली के बोलों को सुरों में बांधा है अनु मलिक ने, और फिल्म का नाम है मैं प्रेम की दीवानी हूँ।

0: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जांचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: कार्यक्रम का आखिरी फरमाइशी गीत हम पेश कर रहे हैं, ये वादा रहा फिल्म से, किशोर कुमार और आशा भोसले के युगल स्वर में। गीतकार गुलशन बावरा है, संगीतकार RD बर्मन है और पसंद आप सभी की। तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा की। श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद की। सादुल शहर राजस्थान से हमारे साथी हैं राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश निवान, सौरव, शैना, मैंडी शर्मा। मुरादाबाद से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। गुमला झारखंड से नजमुल होदा, SM जावेद और शगुफ्ता अंजुम। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव भानु पिरिया, माधुरी किरण। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा रजत, मंजू भाटिया और मयंक भाटिया। चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रबान सिंह, अनुभव ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालिंद्री लहरे। निमनाबाद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरबीत सिंह, लवप्रीत करमजीत कौर। बहादुरा नागपुरा से वैशाली शैलेश गंवाड़कर, टुकटू गंवाड़कर, प्रिंस एकांश, सुमित ध्वनि गंवाड़कर। पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर मनु। जनकपुरी सहारनपुर से हमें फरमाइश भेजी है जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल, विलिस डिकेस्ट्रो ने। तिलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा सुजाता पोहरकार। कांकेर जिला भानबेड़ा मुंगू

वाल से भारत राम पड़ोती, जयंती हेमंत उमंग मोक्ष पड़ोती, करनाल से सुधीर नूतन संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति प्रतिभा शर्मा इशप्रीत शर्मा, कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संजीत वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सरवत देशमुख और सानवी देशमुख, दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम, नगमा अजीम, गंडई टिकरीपारा से जागेश्वर देवांगन, कचरी बाई, दीपक जयश्री देवांगन, ऋषभ ऋचा देवांगन, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली और धनंजय, दिल्ली से सोनम सना और आदिबा, मालौट से रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू गुड्डू जाजौरिया, दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना अश्वनी विपुल कांबड़े, जालंधर से रोशन जहां, मन्नत जहां, इशरत जहां, मक्कार जहां, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी।

रानी गगनदीप, आरजू गुड्डू झांझोरिया, दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना अश्वनी विपुल कांबड़े, जालंधर से रोशन जहां मन्नत जहां इशरत जहां मक्कार जहां, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये आखिरी नगमा।

ये वादा रहा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में। इसी के साथ कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने यहीं संपन्न हुआ। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:45 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा नाम मुनिया भाई राठिया है, मैं ग्राम केरा कछार से हूँ। 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 93,000 का वित्तीय राशि मिला खरीफ फसल में, कि फसल बीमा जरूर कराएं ताकि फसल में जो नुकसान होता है उसके लिए सहायता मिल सके। फसल बीमा कराना बहुत जरूरी।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
5: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
6: क्यों?
5: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
7: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें।

0: क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए।
3: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड लीडर्स फोरम में मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को केवल नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि शासकीय स्कूलों में कॉन्ट्रैक्ट भर्ती के लिए राज्य स्तरीय ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना पर परीक्षा निरस्त कर घटना की जांच के लिए समिति बनाई गई। और उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में पानी भरने की घटना में मारे गए छत्तीसगढ़ के 4 श्रमिकों के परिजनों को राज्य सरकार 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को केवल नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड लीडर्स फोरम में छत्तीसगढ़ की युवा केंद्रित अर्थव्यवस्था और निवेश की संभावनाओं का रोड मैप प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद प्रदेश को 8 लाख करोड़ रूपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2030 तक 5,000 स्टार्टअप विकसित करने का लक्ष्य है। युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख शासकीय कर्मचारियों को AI प्रशिक्षण देने की योजना है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 500 करोड़ रुपए का राज्य AI मिशन शुरू किया जा रहा है। नव रायपुर में करीब 1,000 करोड़ रुपए की लागत से AI डेटा सेंटर पार्क विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में सुरक्षा की स्थिति में सुधार के बाद विकास, पर्यटन, निवेश और रोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं। प्रदेश के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय और अन्य सरकारी संस्थानों में अलग अलग शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक पदों पर कॉन्ट्रैक्ट भर्ती के लिए राज्य स्तरीय ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसका परिणाम 1 सप्ताह के भीतर घोषित किया जाएगा। यह जानकारी स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने आज नवा रायपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग के पिछले 2.5 वर्षों की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों में 1,895 पदों और स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालयों में 1,171 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रदेश के 10,538 सरकारी स्कूलों को तर्कसंगत किया गया है। वहीं शिक्षकों के 5,000 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि सरकारी योजनाओं की ऑनलाइन निगरानी के लिए विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। उन्होंने कहा कि इसकी जांच के लिए 5 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में FIR दर्ज करा दी गई है।
4: हमारे संज्ञान में भी है और विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा निरस्त कर दिया है और 5 सदस्यीय समिति का भी गठन हुआ है। उस पर जांच होगी और जांच के बाद रिपोर्ट आने पर दोषीदारों के ऊपर में सख्ती से कार्रवाई होगी।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाएं देने के संबंध में विधि स्नातकों के लिए अनिवार्य 3 वर्ष की वकालत की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। न्यायालय ने इस बारे में पिछले वर्ष के अपने ही फैसले में संशोधन किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति AG मसी और के विनोद चंद्रन की पीठ ने पुनर्समीक्षा को खारिज करते हुए 2-1 से यह फैसला दिया। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के सचिव अविलक्ष लेखी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मत्स्य किसानों को आधुनिक तकनीक, वित्तीय सहायता और बेहतर अधोसंरचना उपलब्ध कराई जा रही है। कल रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में मत्स्य उत्पादन की व्यापक संभावनाएं हैं और राज्य में तिलापिया क्लस्टर

विकसित किया जा रहा है। श्री लेखी ने बताया कि राज्य में मत्स्य क्षेत्र की परियोजनाओं पर करीब 900 करोड़ रुपए व्यय और स्वीकृत किए जा चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों को किसानों की आय बढ़ाने, गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज उत्पादन और निर्यात क्षमता मजबूत करने के निर्देश दिए। राज्य में 2000 से अधिक किसान तिलापिया पालन कर रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के पीपलकोटी में पिछले सप्ताह सुरंग हादसे में लापता दो श्रमिकों के शव में से एक की पहचान छत्तीसगढ़ के चेतन पोयाम के रूप में हुई है। इसके साथ ही हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। इस हादसे में कोंडागांव जिले के ग्राम धनसुली के दो, मदनार के एक और दही कुंगा के एक श्रमिक की मृत्यु की पुष्टि पहले ही हो चुकी है, जबकि जिले के दो श्रमिक घायल हुए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में पानी भरने की घटना में कोंडागांव जिले के चार श्रमिकों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मृतक श्रमिकों के परिजनों को 5-5 लाख रूपये तथा हादसे में घायल दोनों श्रमिकों को 50-50 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की मुख्य परीक्षा आज से आयोजित की जा रही है। यह परीक्षा 22, 23, 29 और 30 अगस्त को भी आयोजित होगी। परीक्षा सुबह 9 से 12 और दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक दो पालियों में हो रही है। राजनांदगांव जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत सोमनी की सरपंच नीलिमा साहू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है। मतदान के दौरान सरपंच सहित दो पंचों ने वोट नहीं डाला। इस प्रकार अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कुल 16 मत प्राप्त हुए, जबकि सरपंच के पक्ष में एक भी मत नहीं पड़ा और अविश्वास प्रस्ताव 16-0 के स्पष्ट बहुमत से पारित हो गया। गोरेला पिंडरा मारवाही जिले के पिंडरम में आयोजित 4 दिवसीय 26वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आज समापन हो गया। प्रतियोगिता में जिम्नास्टिक, ताइक्वांडो, कबड्डी और क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर बिलासपुर संभाग ओवरऑल चैंपियन रहा। समापन समारोह में कोरबा सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और विजेता टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। धमतरी के लाइवलीहुड कॉलेज में जनजातीय कारीगरों, कलाकारों और उद्यमियों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर के बाजार से जोड़ने के उद्देश्य से एक दिवसीय जनजातीय कारीगर सूचीबद्धता मेला आयोजित किया गया। इस मेले में जिले के 20 कलाकारों और कारीगरों ने अपने उत्पादों के स्टॉल लगाए। मेले में पात्र कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों, वन धन विकास केंद्रों, किसान उत्पादक संगठनों और जनजातीय उद्यमियों को ट्राइफेड से सूचीबद्ध होने का अवसर दिया गया। नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने कल मंत्रालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर योजनाओं के क्रियान्वयन और विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने नगर निगम आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को टीम के साथ रोजाना वार्डों का भ्रमण कर विकास और सफाई कार्यों की निगरानी करने को कहा। साथ ही बाजारों में नियमित सफाई, समय पर कचरा उठाने और कचरे को अलग अलग करने की व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया। प्रमुख सचिव ने विभिन्न नगरीय निकायों में बन रहे 38 नालंदा परिसरों का निर्माण जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर पेयजल, शौचालय और सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा। बिलासपुर जिले के पचपेड़ी थाना क्षेत्र में कल शाम तालाब में डूबने से दो सगे भाइयों की मौत हो गई। बताया गया है कि 4 और 7 वर्ष के दोनों बच्चे अपने पिता के साथ तालाब गए हुए थे। इसी दौरान 4 वर्षीय बच्चा फिसलकर गहरे पानी में चला गया। छोटे भाई को डूबता देख बड़े भाई ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन गहराई अधिक होने के कारण दोनों भाई डूब गए। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में के तहत इस बार कोंडागांव जिले में शुरू किए गए हीलर हर्बल गार्डन योजना पर केंद्रित औषधीय पादप बोर्ड के अध्यक्ष विकास मरकाम से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इसका प्रसारण कल 22 अगस्त को आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा एफएम और प्राइमरी चैनल पर सुबह 9 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। प्रादेशिक सेना ने राष्ट्रीय स्तर पर हैकाथॉन टेरियर साइबर क्वेस्ट की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य रक्षा, साइबर सुरक्षा और सूचना के क्षेत्र में उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए नए समाधान विकसित करना है। हैकाथॉन की शुरुआत साइबर पीस के सहयोग से की गई है। इसके तहत शिक्षा जगत, उद्योग, अनुसंधान संस्थाओं, सरकारी संगठनों और सशस्त्र बलों की तकनीकी प्रतिभाओं को एक साथ लाया जाएगा।
रक्षा मंत्रालय ने

0: बताया कि इस पहल के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और डिजिटल जागरूकता सहित उभरते क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए स्वदेशी समाधान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण 31 अगस्त तक कराया जा सकता है, वहीं ऑनलाइन चयन 1 से 10 सितंबर तक किया जाएगा, जिसके बाद ग्रैंड फिनाले नई दिल्ली में 6 से 8 अक्टूबर को आयोजित होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड लीडर्स फोरम में मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को केवल नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि शासकीय स्कूलों में कॉन्ट्रैक्ट भर्ती के लिए राज्य स्तरीय ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना पर परीक्षा निरस्त कर घटना की जांच के लिए समिति बनाई गई और उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में पानी भरने की घटना में मारे गए छत्तीसगढ़ के 4 श्रमिकों के परिजनों को राज्य सरकार 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे।
2: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने के शेष भाग के साथ। हम पहुंच चुके हैं फिर आपके पास, तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आपके फरमाइशी गीत के साथ। फिल्म है इज्जत, आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की है, रचना साहिर लुधियानवी की है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और फरमाइश आप सभी की। जमानिया गाजीपुर यूपी से हमारे साथी हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक, स्वाति जायसवाल की। सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम। गुजरात से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जोहारी। भिलाई नगर से अशोक श्याम कुंवर, प्रमीला आसमा श्याम कुंवर। लुतरा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज। लोहगढ़ से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह। लोहार डी जिला कवर्धा से हमें फरमाइश भेजी है अशोक कुमार साहू, लिलेश्वरी, ललीमा, खुशांत साहू, निशान साहू ने। गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन, अनजान साइमा नवाज, हसन नवाज अहद, मिफ्रा नवाज और चाहत। पलारी से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग, पूना राम देवांगन, कृष्णा देवांगन। लुतरा खमरिया से अक्रम अमीन, अर्श आतिका। डोंडी लोहारा बालौद से हमें फरमाइश भेजी है देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया और अल कबीर ने। सरगांव बाजार से नसीब मोहम्मद, हबीब मोहम्मद, इरफान मोहम्मद। बागबहरा भदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू सेन, तारा कौशल सेन। दिल्ली से आसमा परवीन, आमना परवीन और वली अंसारी। सावतपुर से हमारे साथी हैं ऋषि सेन, रितेश सेन, कंचन सेन, माही सेन। बरका काना से

अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना सोनू तस्नीम, निप्पी साहनी, मोहम्मद अफजल मलिक। हिंगोली से शाहजी बोड़के नंदा हनुमान बोड़के। पलेरा टीकमगढ़ से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा। लच्छनपुर से इस गीत को सुनना चाहा है विश्वनाथ साहू, पंकज तिरुपति साहू ने। लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, महराज जहां। टोरोवाल नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता प्रियंका प्रशांत, प्रियम थांदी, वामिका और वाणी। मुंबई से आदिबानास, फातिमा नसरीन अंसारी, आलिया और सबा अंसारी। पूर्णा जंक्शन मस्तानपुर से अनंत भगत, अनंता भगत, अरुणा सुलोचना भगत और चेतन भगत। बागपत से संजय ढिंगिया, नमन अपार ढिंगिया। पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल यशस्वी, अन्नपूर्णा वर्मा। पुतकी कला कवर्धा से राधेश्याम पांडे, वीणा विनय शंकर पांडे। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का पहला गीत।

0: अभी आपने सुना इज्जत फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वर में। श्रोताओं, कृपया महिला सभा हेतु ये सूचना सुनिए। फ़ोन करें, गीत सुने। कार्यक्रम का प्रसारण महीने के चौथे मंगलवार को होता है। इस माह इसका प्रसारण 25 अगस्त 2026 मंगलवार को शाम 5:35 से किया जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग 24 अगस्त 2026 सोमवार प्रातः 11 बजे से 11:30 के बीच की जाएगी। आपसे चर्चा का विषय होगा अतिथि देवो भवः। आप जिन फिल्मों के गीत सुन सकती हैं उनके नाम है बातों बातों में, क्या कहना, जब वी मेट। आप हमें फ़ोन कर सकती हैं इन नंबरों पर 07752-266-592। आपके फ़ोन का हमें इंतज़ार रहेगा। ये सूचना यहीं समाप्त हुई।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
1: मन का सुकून, दिल की आरती,
2: सुरीली संदली।
0: अगले गीत के लिए हमें ईमेल्स भेजे हैं कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष देवांगन, रवि, सनी, रियांश, कान्हा, आदित्य देवांगन ने। बुड़गहन से राम दुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला, शशिकांता प्रजापति ने। अंबाला हरियाणा से हमारे साथी हैं रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल। जालंधर से संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत, भरत, कमल साहनी। गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र।

रौनक सेन ने। सहारनपुर से इस गीत को सुनना चाहा है सुरेश नारंग, आशु सोनाली नारंग ने। बरेली कैंट चनहटी से विनेश कुमार, रागिनी और मुस्कान। सरगांव से राजेश वर्मा, हिरुमन वर्मा, पल्लवी राजेश्वरी वर्मा। खोंदला उदयपुर सरगुजा से जीवनधन सिंह पैकरा, धुरनी करिश्मा सोमारसाए, कलेश्वर सिंह, सुखराम हीरामणि, ऐश्वर्या पैकरा। भिलाई चरौदा से नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदुन जिशान, शाहनवाज अहमद सिद्दीकी। बोरसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू। पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश नेहा और वानिया सिंगरौल। बिलासपुर से हमारे साथी हैं छन्नूलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा, अंजू योगिता श्रीवास, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी। भाटापारा से दान सिंह रावत दानू, पद्मनी रावत, नीरज रावत, शुभम सौरभ रावत। ग्वालियर से हमें ईमेल भेजा है सुरेश खुराना, किरण लव्या, आरव खुराना, एस के पप्पी ने। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला, ओम कुमार सुरलकर। बलिया मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, दुखनी सदफ, आरजू जूही इकबाल, इमरान अहमद, आमना नसरीन बागवान, आसमा परी, राबिया मंतशा, आशु अहमद फूलवाले। दिल्ली से प्रमीला, हेमा और अंतरा सिंह। डुमराओं से वली उल्ला अंसारी, सोनम वली और आसमा वली। गीतकार समीर है, संगीतकार आनंद मिलिंद है, आवाज़ें अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की है। फिल्म का नाम है दिल।

श्रोताओं, बढ़ते साइबर अपराध और उनसे सुरक्षा से संबंधित ये सूचना सुनिए। आकाशवाणी बिलासपुर द्वारा एक विशेष फोन इन कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग सोमवार दिनांक 24 अगस्त 2026 को सुबह 11:30 से 12:30 के बीच की जाएगी। इस विषय पर जानकारी देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगे नगर के DIG वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह। श्रोता हमें 07752-266-592 इस नंबर पर कॉल करें और अपनी समस्याएं सीधे DIG सर से पूछें। आपके फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। समय याद रखिएगा, सोमवार सुबह 11:30 से 12:30 के बीच। ये सूचना यहीं समाप्त हुई। श्रोताओं, अब पेश है आप सभी की पसंद पर प्यार किया तो डरना क्या फिल्म का गीत। समीर के बोलों को सुरों में बांधा है जतिन ललित ने, गायकी कुमार सानू अलका याग्निक की है और पसंद आप सभी की। महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश और प्रीतेश संघई की। भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत राघवेंद्र साहू। यवतमाल से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षता लोखंडे की। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताइड़े, वसंतराव भोजने, निवृत्ति आडोकार। नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल, नीति सुरभि, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र शाह। धरदी सरगांव से चंदूलाल पटवा, सुनीता, हर्ष, विनित, कृष्टि पटवा। वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी, लवली आर।

ज्योति अरोड़ा, अड़ार नानघाट से माखन वर्मा, चांदनी भूपेश, दीपेश वर्मा, पैठन से सुरेश जाधव, अनीता, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल, सिया जाधव, कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित कुमार, हैप्पी राय, ततरेंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि, नोखेलाल वर्मा, सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री, पिपरिया से हमारे साथी हैं कमलकांत गुप्ता, दीपा, रिमझिम गुप्ता, पजौनिया जिला जालौन से सतेंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक चंसौलिया, लसूड़िया से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी, यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा, श्राव्या रामटेके, बठेना पाटन से परमेश्वर साहू, राजबत्ती, काजल, पूर्वी, हेजल, राजेश, रेशमा साहू, बलिया कजरत से अब्दुल कलाम राइन, अब्दुल सलाम राइन, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मे, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, नागर कोहरा जिला राजनांदगांव से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, आराध्या साहू, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहार, रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका दले। आप सभी की फरमाइश पर हम लेकर आए हैं ये गीत और ये इस कार्यक्रम की आखिरी फरमाइश है।

प्यार किया तो डरना क्या। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। इसी के साथ कार्यक्रम ईमेल करें, गीत सुने यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:30 हुए हैं। आइए बढ़ते हैं ग्राम सभा की ओर।

संगवारी हो राम राम जय जोहार। ग्राम सभा सुनिया सबो संगी संगवारी मित मितान काकी काका मल्ला पंचू भाई के चौकाओ जय जोहार राम राम। सावन के महीना चला थे और हमार सावन के महीना सबले ज़्यादा संसोर थे कि हमार बूता काम कैसे हो के काबर की होत बिहना घर ले एक घर ले दूसर घर हमन केवल बनिहार नांगर यही चक्कर लगावत हमन। काबर की संसो ये बात करत थे कि दिनों दिन बेरा जावत जाते खेती किसानी हो नहीं है। जौन किसान भाई मन कर पहले ले पल्लोक साधन रहना हवा है उन पर अगवा के जौन हमारे खेती किसानी बूता काम रहना हवा है बूता काम ला मस्त करके ठल्हा बैठे हवा है। तब बोले देखिए संगवारी हो तो हमारे कतेक किसान भाई मन के अभी भी बूता काम है रुके हवा है। कबू कबू बनिहार नहीं मिले थे ओकर कारण तो कबू कबू ऐसा हो गया कि लगातार पानी गिराई में जौन खार है वो खार कर देखिए खेती किसानी घलो नहीं बन पाते। ऐसे बेरा में देखिए तो जौन किसान भाई मन के खेती किसानी हो चुके है वो किसान भाई मतलब विशेष करके लगातार खेत की निगरानी करना बहुत ही आवश्यकता हवा है ताकि पानी यहाँ बराबर रहा कोनो प्रकार के की व्याधि झन होए। संगे संगे मतलब कृषि विशेषज्ञ है कृषि वैज्ञानिक की उनका कर मतलब सलाह लेना चाहिए कि हमार खेती किसानी पूरा हो गई है तो का दवाई पानी हमन छिड़काव करना चाहिए ताकि हमारे जो धान पान है

0: बने अच्छा रहा है। बात करें किसान भाइयों कि अब हमारे जो खेती किसानी है केवल खेती किसानी तक ही सीमित नहीं रही है। आज हम जैसे जैसे आधुनिकता में आगू बढ़त जाथन वैसे वैसे हम खेती किसानी में भी एक नवा हमन इतिहास रचत जाथन। जैसे अपन जानते हवा कि ई नेम और किसान मोबाइल ऐप डिजिटल कृषि में हमार बढ़त भारत। अपन जानते हवा कि आज मोबाइल के माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से हमार कतेक कन बूता काम घर बैठे हुआ था वह। जैसे कि कल पानी गिरा था वह तो पानी की पूरा जानकारी हमला मोबाइल के माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे हमला प्राप्त हुआ थे। यही तो कथे संगवारी हो कि आधुनिकता के साथ हमारे जो खेती किसानी है तेहू संगे संग आगू बढ़त हवा। एक बेरा ऐसे रही हवा कि हमन बनिहार खोजन और बनिहार खोजत खोजत हमार जो बूता काम होबो नहीं करे। आज ऐसे हो गए है कि ड्रोन के माध्यम से हमन अपन खेती किसानी के बूता कामला घलो करत हन। यहाँ तक देखिए संगवारी हो तो आधुनिक यंत्र घलो आ गए खेती किसानी में जेमन रोपाई के बूता काम घलो करत हैं। ई नाम और किसान मोबाइल ऐप के डिजिटल के बात करी किसान भाइयों तो एक बेरा ऐसे रही कि हमन खेती किसानी के करण और ओकर संगे संग हमन का करी मंडी के चक्कर काटन कि धान के का भाव है गेहूँ के का भाव है साग भाजी का भाव है। लेकिन आज हमन घर बैठे कोनो भी साग भाजी है फसल है ओकर जानकारी हमन घर बैठे ले सकत हन। खेती अब केवल हमार हाल और मौसम तक ही सीमित नहीं रही के किसान भाइयों आज मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से हमारे खेती किसानी बूता काम ये कहीं तक इंटरनेट हमारे एक बड़का संगवारी घलो बन गए जो हमारे घर बैठे खेती किसानी के सब्बो जानकारी ला परोसत रहते और ओकरे माध्यम से आज हम कहीं कहीं हमन जौन खेती किसानी के बूता काम ला अगवा के करत हन। कौन प्रकार के हमारे दवाई पानी छिड़का हवा है एक बारे हम इंटरनेट से निकाल के अच्छे से हमन अपन जौन बूता काम है वहूल हमन करत रहन। आज देखो संगवारी हो तो कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से अपन अकन कृषि ऐप हवा ओला बताते कि कैसे हमन ऐप के माध्यम से जौन मौसमी फसल हवा ओला ले सकत हन का बीमारी हवा है ओकर बारे में हमें जानकारी प्राप्त कर सकत हन। तो यही के बस संगवारी हो कि जितके ज़्यादा हो अपन डिजिटल कृषि जौन ऐप हवा ओकर उपयोग करा और मौसम के जानकारी घलो प्राप्त कर सकत है अपन संगे संग जौन फसल में कीट व्याधि रोग लगत हवा ओकरो अपन एकर ओमन निदान पा सकत हन। संगवारी हो बढ़तन कार्यक्रम के अगुगति अब आज है शुक्रवार और शुक्रवार के अपन अगुरा रथे फोन इन कार्यक्रम और आज के विषय हवा धान रोपाई ब्यासी के खरपतवार नियंत्रण हमन कौन प्रकार से करी। आज हमारे बीच में पहुना आरिन हवा विशेषज्ञ डॉक्टर गीत शर्मा वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर और इनका करा गोड़ बात करते हैं हमार संगवारी जीतू भैया तावा सुनतन संगवारी हो फोन इन कार्यक्रम।
1: फोन इन कार्यक्रम में आप जम्मू किसान भाई मन के स्वागत है। आप मन ला राम राम जय जोहार। किसान भाई हो जैसा आप मन जानता समसामयिक विषय लेके हम बढ़िया सुग्घर फोन इन कार्यक्रम परुस्थन। आज फोन इन कार्यक्रम के हमर विषय है धान के फसल में खरपतवार नियंत्रण। चाहे कोनो भी तरीका से आप धान ला लगावा ओमा खरपतवार नियंत्रण कोन ढंग से करे जाए आज ये हमर सुघर विषय है। और ये सुघर समसामयिक विषय में जानकारी दिए बर आज हमर बीच जाने चिन्हे विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर गीत शर्मा जी मने वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर ले। तो सबले पहली हमर पहुना के स्वागत कर लेथन। डॉक्टर साहब आप मन के हमर कार्यक्रम में स्वागत है। आप मन ला राम राम।
2: राम राम। साथ ही सभी किसान भाइयों को नमस्कार।
1: डॉक्टर साहब जैसे आज के हमर विषय है भाई धान के तो फसल हमर धान के कटोरा कहे जाए मुख्य जिन भाग है हमर छत्तीसगढ़ और हमर बिलासपुर संभाग में अच्छा ज्यादा होते। हर किसान भाई मन खरीफ में धान के फसल ले लेते हैं। इधर ही पोठ पानी घलो गिरे है।
2: हाँ अभी है तो बढ़िया बारिश हो रही है।
1: तो अब रोपाई चाहे लगाए हैं चाहे उमन कोनो भी तरीका से लगाए हैं अब समय है खरपतवार ला हटाए के निदान करे के। तो आज के हमारे यही विषय है कि धान के फसल में खरपतवार नियंत्रण कौन ढंग से करी। तो सबले पहले हमारे किसान भाई मन ले बताओ खरपतवार होते का काला समझी हम खरपतवार।
2: देखिये जीतू भाई खरपतवार वे पौधे होते हैं जो खेत में बिना बोए उग जाते हैं
1: जी
2: और हमारे मुख्य फसल को लाभ की तुलना में हानि ज्यादा पहुंचाते हैं। ये जो है अपने जो धान के पौधे होते हैं उनसे प्रकाश स्थान पोषक तत्व और जल के लिए प्रतियोगिता करते हैं और फसल की उत्पादकता के साथ साथ उसकी गुणवत्ता को भी कम

0: नहीं कर देते हैं।
1: अच्छा,
0: प्रयोगों द्वारा तो यह भी पाया गया है कि कीड़े बीमारी से जितना अधिक नुकसान नहीं होता, उससे ज्यादा नुकसान तो खरपतवारों से होता है। वैज्ञानिक परिभाषा में देखा जाए तो यदि जैसे कोई किसान ने मान लीजिए स्वर्णा बोया है और उसके खेत में महामाया के पौधे आ जाते हैं, तो एक प्रकार से महामाया भी जो है वो हमारे लिए खरपतवार है।
1: अच्छा,
0: तो क्योंकि वो भी जो है कटाई के समय में अंतर होगा, साथ ही साथ उसकी गुणवत्ता को भी अंतर पैदा कर देंगे जब बीज में मिल जाएंगे, तो इन खरपतवारों को समय समय पर नियंत्रण करना अति आवश्यक होता है।
1: बहुत बढ़िया ढंग से खरपतवार के बारे में बताया है। धान के फसल में एकर नुकसान ल भी आप मन बताया है, कतका प्रकार के खरपतवार होते?
0: जितना अधिक धान की फसल में खरपतवार पाए जाते हैं, खासकर खरीफ ऋतु में, उतना खरपतवार अन्य किसी फसल में नहीं पाए जाते।
1: ऐसे?
0: हाँ, क्योंकि धान की फसल गर्म और आर्द्र जलवायु चाहती है और इस मौसम में खरपतवार पनपने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। और ये जितने भी खरपतवार होते हैं इनको हम तीन रूप में मोटे मोटे बांट सकते हैं। पहला है घास कुल के पौधे, ये इनकी पत्तियां लंबी और नुकीली होती हैं और किसान भाई इसको आसानी से पहचान सकते हैं कि यदि ये पत्तियों को फाड़े तो एक सरल रेखा में पत्ती फटती है।
1: अच्छा,
0: तो ये घास कुल के पौधे हैं, इसमें सावा कोदो इस प्रकार के पौधे आते हैं। दूसरा होता है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार।
1: ठीक,
0: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जो है सामान्यतः इनकी पत्तियां चौड़ी रूप से होती हैं, ये द्विबीजपत्री होते हैं। और पहचानने के लिए बहुत आसान तरीका है कि यदि इनकी पत्तियों को फाड़ा जाए तो ये आड़े तिरछी फटती हैं, एक सीधी रेखा में नहीं फटती।
1: ठीक,
0: तो ये चौड़ी पत्ती वाले। एक तीसरे जो और होते हैं वो हम जिसे कहते हैं मोथा कुल के खरपतवार। तो ये मोथा कुल के पौधों के पत्तियां भी लंबी और नुकीली होती हैं, लेकिन मुख्य अंतर ये होता है कि इसका तना तिकोना होता है और ठोस होता है।
1: अच्छा।
0: घास कुल में तना मतलब अंदर से खोखला होता है, लेकिन मोथा कुल के पौधों की ये खासियत होती है कि इसका तना तिकोना होता है और ठोस होता है।
1: अच्छा।
0: तो इस तरह जो है इसमें जो है मोथा, नागर मोथा जिसे हम कहते हैं, या छतरी वाला मोथा, इस प्रकार के पौधे ये मोथा कुल के अंतर्गत आते हैं।
1: डॉक्टर साहब, पहला कॉलर जुड़ गए, ले लेते हैं आज के विषय।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हेलो।
2: हेलो, ये भरत भूषण जायसवाल बोला था, बलौदा बाजार जिला से, मोर माया भरे राम राम।
1: जायसवाल जी, आपके हमारे कार्यक्रम फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है, आप ला राम राम, बतावा का प्रश्न है?
2: भैया, मैं है ये साल पहली बार किसानी करत हूँ।
1: अरे वाह।
2: मोर डॉक्टर साहब से एक ठो प्रश्न रही सवाल।
1: अच्छा।
2: कि मोर खेत में बहुत का बोलते कोदैला बहुत हो गए हैं सर, ओकर निवारण के लिए कुछ दवाई बताए के कृपा करती।
1: अच्छा, कौन सा आप मन धान के किस्म लगाए हैं?
2: सरना हरे सर।
1: सरना हरे, डॉक्टर साहब बतावा थे।
0: जायसवाल जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। और जैसा कि आपने पहली बार धान की खेती की है और स्वर्णा धान लगाया है, आपने चूंकि सीधी बुआई की है, सीधी बुआई में तो बहुत ज्यादा खरपतवार आते हैं, हालांकि ये बहुत अच्छी पद्धति और आने वाले दिनों में लोकप्रिय होने वाली है, लेकिन इसमें आप दो काम कर सकते हैं, छिटकवा किए हैं कि कतारों में बुआई किए हैं?
2: छिटाई किए हैं सर।
0: छिटाई किए हैं, तो छिटाई किए हैं, अगली बार से आप ध्यान रखिए कि आप कतारों में बोइए, तो दो कतार के बीच में जो है आप कोई कृषि यंत्र चलाकर इसका नियंत्रण कर सकते हैं, जैसे हो वगैरह चलाकर कर सकते हैं। अभी आपने छिटकवा विधि से बुआई की है तो आपको जो है बुआई करने के तुरंत 3 दिन बाद जब खेत में नमी आ जाए तो उस समय जो है पायरेजो सल्फ्यूरान करके एक दवाई आती है, इसकी 80 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से देना था, तो इससे जो है काफी सकरी पत्ती वाले और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार आपके खेत में नहीं पनपते। अब चूंकि आप बुआई कर चुके हैं और अभी खरपतवार है, तो 20 से 25 दिन बाद आप एक बिस पायरेबिक सोडियम करके दवाई आती है, या बिस पायरेबिक सोडियम के साथ जो है आपका पायरेजो सल्फ्यूरान का भी एक मिश्रण आता है, इस दवा का छिड़काव जो है आप 20 दिन बाद कर दीजिए अपने खेत में। मात्रा रहेगी आपकी 100 ml प्रति एकड़ की दर से, यानी 100 ml दवा एक एकड़ के लिए लगेगी। इस दवा का छिड़काव करिए, पानी की मात्रा आप स्प्रेयर की सहायता से छिड़काव करेंगे, 200 लीटर पानी की मात्रा होनी चाहिए एकड़ के पीछे, तो इससे काफी हद तक जो आपके सकरी पत्ती वाले और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों का प्रबंधन हो जाएगा। सभी खरपतवार तो नष्ट नहीं होंगे, लेकिन अधिकांश जो है इस दवाई के छिड़काव से आपके खत्म हो जाएंगे।
1: ठीक है जायसवाल जी, और कुछ प्रश्न है?
2: नहीं है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब ला, आप ला भी।
1: चला, फोन लगाया, आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम। डॉक्टर साहब, हमारे कॉलर जुड़ी निमन खातु के बारे में भी अपन मन में शंका रही तेनो ला पूछ लेना आप मन सो, बढ़िया ढंग से एकर प्रश्न के निवारण हो। आगू मुरमन में प्रश्न है और सबो किसान भाई मन के

0: भाई कई पैत कई किसान भाई नवा जुड़ते जैसे मन पहली पैत खेती में उतरे हैं तो ये जिन खरपतवार मन है खेत में धान लगाए के कतका दिन बाद आक्रमण करते हैं।
1: देखिए जैसे ही हम धान की बुआई करते हैं वैसे ही खरपतवार हमारे खेत में पनपते लग जाते हैं या जैसे ही हमारे खेत में पानी आता है तो ये खरपतवार के बीज अंकुरित होने लगते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि धान में अंकुरण बाद में आता है लेकिन खरपतवारों में अंकुरण पहले आ जाता है तो बड़ी तेजी से बढ़ते हैं है ना।

0: समस्या ये होती है कि धान में अंकुरण बाद में आता है लेकिन खरपतवारों में अंकुरण पहले आ जाता है तो बड़ी तेजी से बढ़ते हैं है ना। तो और दूसरा, जब हम समय समय पर अलग अलग प्रकार के खरपतवार हमको खेत में दिखाई देते रहते हैं, ये सभी के सभी खरपतवार एक साथ नहीं उगते हैं,
1: नहीं, अलग अलग समय में,
0: अलग अलग समय में उगते रहते हैं, इसलिए हमको नियंत्रण की प्रक्रिया जो है लगातार अपनानी रहती है।
1: अच्छा,
0: लेकिन शुरू की अवस्था जो है धान की प्रारंभिक अवस्था ये बड़ी नाजुक होती है।
1: अच्छा,
0: यानी कहना चाहिए कि यदि सीधी बुआई कर रहे हैं जैसे जायसवाल जी ने की थी तो प्रारंभिक के 15 से 45 दिन, और यदि कोई किसान रोपाई कर रहा है तो रोपाई के 30 से 45 दिन की अवस्था जो है ये बड़ी नाजुक होती है, और इस समय खेत को खरपतवार रहित करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि बाद में जो है आप अवधि के बाद यदि आप खरपतवार प्रबंधन कर रहे हैं तो ये समझिए कि वो अगले साल के लिए कर रहे हैं, उसका फायदा आपको अगले साल की खेती में दिखाई देगा। कि फसल को बचाना है आपको तो ये शुरू के 30 से 45 दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और इस समय हमको निंदा नियंत्रण कर लेना चाहिए।
1: ठीक,
0: और इसीलिए जो है हम ये कहते हैं कि यदि हाथ से निंदाई कर रहे हैं आप या यांत्रिक विधि से कर रहे हैं तो पहली निंदाई आपको 20 दिन बाद और दूसरी निंदाई जो है 40 से 45 दिन बाद हमारे खेत में हो जानी चाहिए। रोपा में एक ही निंदाई की जरूरत पड़ती है, क्योंकि रोपा पद्धति में जो है हम मताई करते हैं तो मताई के दौरान पे जो है काफी खरपतवार नष्ट हो जाते हैं, लेकिन यदि आप बोता पद्धति से कर रहे हैं तो आपको दो निंदाई की आवश्यकता होती ही है।
1: ठीक, आपन बहुत बढ़िया ढंग से बताया है कि कौन कौन समय में हमें करना है। अब मुख्य जन बात है वो तकनीक ला जानबो कि कौन कौन तकनीक है प्रबंधन करे के खरपतवार मनला, कब कब करिए, कैसे करिए, खरसस्य प्रबंधन भी काहे होला बढ़िया बतावा।
0: देखिए, खरपतवार प्रबंधन की कई सारी विधियां होती हैं, जैसे कि निवारक विधि है, सस्य वैज्ञानिक पद्धति से जो है निवारण किया जा सकता है, यांत्रिक विधि अपनाई जा सकती है, साथ ही साथ रासायनिक पद्धति भी अपनाई जा सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम निवारक पद्धति की, और निवारक पद्धति वह पद्धति है या वो विधि है जिसमें जो है,
1: डॉक्टर साहब ये निवारक पद्धति के फिर आगु आपन बात बता, पहली कालर जुड़ गए ले लेतन। हेलो
2: हेलो
1: भैया, स्वागत है आपके हमारे कार्यक्रम में, बतावा का हाल चाल है।
2: बढ़िया है भैया, भगत राम पटेल बोला समय सिंगारवाड़ी घुटकुले, अब ये समय के जिन मौसम है ना, और हमारे खेती किसानी काम ला बढ़ा दिए है भैया।
1: अरे का करिया, जब जब बोलते कि भाई पानी नहीं गिरा वही साल कस के पानी गिर जाते।
2: बहुत सही बात बोले भैया, और जिन अभी के जिन हमारे काम बोता है ना वह बढ़िया सुचारू रूप से चलत है, जिन रोपाई है, निंदाई है, ब्यासी है, ये जिन काम है जैसना जैसना ना वो बढ़िया सुचारू रूप से चालू हो गए।
1: इधरी कौन सा किस्म के धान लगाया है भैया?
2: हाईब्रिड लगते भैया, ये समय जिन लगा थे ना गरहुन हाईब्रिड और दो किस्म के लगाए, मैं हरहुन भी लगाया काबर के मतलब बारी को लगाए पड़ते भैया जल्दी से, तो आधा में हरहुन और आधा में गरहुन।
1: अच्छा, हरहुन में महामाया है।
2: हाँ,
1: अच्छा, ले वह का प्रश्न है बताओ आज।
2: हाँ, मैं जानना चाहते हैं, हमारे दो ही प्रश्न है। पहली प्रश्न तो ये है कि यदि हम हाँ खेत ला ब्यासी करा था ना कहीं वो ज्यादा खरपतवार है तो ऐसा स्थिति में हम लोग कौन ढंग से खरपतवार नाशक डालना है। दूसरा चीज ये है कि यदि कहीं धान की रोपाई लेट होते तो फिर हम लोग कौन हिसाब से रोपाई की जिन चयन है करना है, जिससे रोपाई में भी अब धान है और धान के जिन उत्पादन है बढ़िया हो सके, इसके बारे में जानना चाहते हैं।
1: दोनों विधि में आपके मतलब हो गए धान लग गए है ना?
2: हाँ भैया।
1: अच्छा ठीक है, डॉक्टर साहब बताते।
0: आपने दोनों पद्धति से धान की खेती की है, ब्यासी और रोपा पद्धति से। ब्यासी पद्धति में हम सामान्यतः ये करते हैं कि खेत में जुताई करके बुआई कर देते हैं और उसके बाद जब 20 से 21 दिन बाद उसमें थोड़ा सा पानी आ जाता है तो हम खेत में हल चला देते हैं, और ब्यासी की पद्धति करते हैं और चलाई करके पौधों की संख्या को बराबर भागों में बांट देते हैं, साथ ही साथ उस समय हम एक निंदाई कर लेते हैं है ना। तो शुरू के जो 20 से 21 दिन होते हैं ये आपके धान के पौधों के साथ साथ खरपतवार के पौधे भी उगते रहते हैं जो कि धान की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसके लिए चाहिए कि ब्यासी पद्धति जब आप अगली बार करें तो जैसे ही आप धान की बुआई करते हैं तो आप तीसरे दिन बाद जो है पायरेजोसल्फ्यूरान दवाई का उपयोग कर सकते हैं या पेंडामेथिलीन दवाई का उपयोग कर सकते हैं, और इन दवाइयों को पानी में मिलाकर आप छिड़काव कर दीजिए। इस समय आपने बुआई की है तो आपको खेत खाली दिखाई देगा, किसी प्रकार के खरपतवार नहीं दिखाई देंगे, तो एक प्रकार से खाली भूमि में आप दवाई का छिड़काव करिए। तो ये जो दवाई है पायरेजोसल्फ्यूरान और या पेंडामेथिलीन का उपयोग करते हैं तो ये दवाइयों का असर 20 दिन तक 25 दिन तक खेत में बना रहता है और कई प्रकार के सक्रिय और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नहीं उग पाते हैं, लेकिन धान के पौधों को कोई मतलब धान के पौधे आसानी से उग जाते हैं। फिर आपने ब्यासी कर ली है और ब्यासी के बाद खेत में पानी रुकने लगता है तो पानी के रुकने से कई प्रकार के खरपतवार नहीं आते, फिर भी कई सारे खरपतवार जो है आ जाते हैं, तो उनके नियंत्रण के

0: लिए आपको ब्यासी करने के बाद करीब करीब 10 से 15 दिन बाद जो है आपको बिसपायरेबिक सोडियम का छिड़काव करना चाहिए। इसकी मात्रा 100 ml प्रति एकड़ होती है। 200 लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करें तो आपके खेत में फिर से सक्रिय और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नहीं आएंगे। तो इस प्रकार आप देखोगे कि ब्यासी में तीन समय पे आपने खरपतवार नियंत्रण कर लिया, दो प्रकार की दवाइयां उपयोग किया और एक ब्यासी का उपयोग किया, तो आपके खेत में खरपतवार का प्रकोप कम हो जाता है। फिर आपने रोपा लगाया है, यदि आपके रोपा लगाने में देर हो रही है तो हमारा सुझाव ये रहता है एक स्थान पर जो आप दो पौध लगा रहे हैं उसकी जगह पे 4 से 5 पौध की लगाएं, यानी सीडलिंग लगाएं, एक स्थान पे रोपें। साथ ही साथ आधार खाद में नत्रजन की मात्रा को बढ़ा दें और यहाँ पे भी निंदा नियंत्रण करने के लिए आपने जब रोपाई की है तो 15 से 20 दिन बाद जो है बिसपायरेबिक सोडियम का उपयोग आप कर सकते हैं। शुरू में आप पैराजोसल्फ्यूरान का भी उपयोग कर सकते हैं, चूंकि आपने यहाँ पे रोपा लगाया है और खेत में पहले से ही पानी है, पैराजोसल्फ्यूरान का उपयोग कर रहे हैं शुरू में 3 दिन बाद, तो इसको रेत में मिलाकर छिड़काव करें। 8 से 10 किलो रेत जो है अच्छी तरह से सूखी हुई हो, बारीक हो, छनी हुई हो, इस रेत में मिलाकर एक समान छिड़काव कर दें। और जब आप 20 दिन बाद बिसपायरेबिक सोडियम का छिड़काव कर रहे हैं, इस समय आपके खेत में खरपतवार उग आते हैं, दिखाई देते हैं, तो इस समय 200 लीटर पानी में मिलाकर 100 ml बिसपायरेबिक सोडियम की मिला लें और इसका छिड़काव करें, तो आपके जो है खरपतवार प्रबंधन आसानी से हो जाएगा।
1: बहुत सुंदर भैया, आप मन की जिन कार्यक्रम जिन आप प्रोस्ता हो बड़ा सुंदर ही रही थे, हम शान भर सब जन भर एखन लिए आप ला डॉक्टर साहब के साथ में आकाशवाणी परिवार ला गाड़ा गाड़ा बधाई, जय जोहार, राम राम।
2: चला भैया फोन लगाया, बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम। हाँ डॉक्टर साहब, हम चर्चा करत रहे कि भाई कौन प्रकार से हम शुरू से प्रबंधन के व्यवस्था,
0: तो पहला जैसे हमें चर्चा कर रहा था निवारक विधि का, इस विधि का मुख्य उद्देश्य होता है कि धान के खेत में हम खरपतवारों के प्रवेश को ही रोक दें।
2: जी,
0: इसके लिए कुछ उपाय अपनाते हैं, जैसे कि हमको साफ सुथरा बीज लेना चाहिए, सामान्यतः प्रमाणित बीज का उपयोग करना चाहिए। दूसरा जो है अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर खाद या कंपोस्ट का उपयोग करना चाहिए, नहीं तो इसकी माध्यम से भी कई सारे खरपतवार हमारे खेत में पहुंच जाते हैं, तो अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर खाद का उपयोग करें। इसी तरह जब हम कृषि यंत्र एक खेत से दूसरे खेत में ले जाते हैं तो उसको पहले साफ सुथरा कर लें। तीसरी बात, हम सिंचाई की नाली के माध्यम से भी हमारे खेत में कई प्रकार के खरपतवारों के बीच पहुंचते हैं, तो सिंचाई की नालियों की भी साफ सफाई करते रहना चाहिए।
2: जी,
0: तो ये कुछ निवारक विधियां हैं जिससे कि हम खेत में अपने नए खरपतवारों के प्रवेश को रोक लेते हैं। इसके बाद हमारी दूसरी पद्धति आती है, आपकी सस्य क्रियाएं अपनाकर भी जो है हम खरपतवार प्रबंधन करते हैं। तो जैसा सबसे पहले यदि इसमें देखा जाए तो फसल चक्र अपनाकर, कई किसान हमारे धान के बाद लगातार धान की फसल लेते रहते हैं जिससे कि खरपतवार की समस्या और अधिक जटिल हो जाती है।
2: ठीक,
0: तो किसान भाई ऐसा ना करें, जब धान की फसल ले रहे हैं तो उसके बाद हम चना, अलसी या गेहूं या रबी में कोई अन्य फसल लें तो हम खरपतवारों को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम जल प्रबंधन करके भी खरपतवार प्रबंधन करते हैं, जैसा कि रोपा या ब्यासी करने के बाद हम खेत में जब जल भर के रखते हैं तो शुरू में हमको पानी का स्तर 1 से 2 सेंटीमीटर रखना चाहिए और उसके बाद जैसे जैसे धान की उम्र बढ़ती है तो 3 से 5 सेंटीमीटर पानी का स्तर बनाए रखते हैं, तो ये जल भराव होने के कारण जो है कई प्रकार के खरपतवार हमारे खेत में नहीं आ पाते हैं और जो उगते भी हैं तो उनकी वृद्धि नहीं हो पाती है। तो इस तरह जो है हम देखते हैं कि जल प्रबंधन से भी जो है हम खरपतवार नियंत्रण करते हैं। तीसरा जो है, हम उर्वरकों का उपयोग सही ढंग से करें तब भी जो है हमारे खरपतवार प्रबंधन आता है। जब हम उर्वरक छिटक कर देते हैं तो ये उर्वरक हमारे पौधों के साथ साथ हमारे खरपतवारों को भी मिलता रहता है जिससे खरपतवारों की अच्छी वृद्धि होती रहती है। तो यदि आप जब फसल कतारों में, जैसे धान फसल को हम शुरू में कतार बुआई कर रहे हैं तो कतार बुआई के साथ साथ हम फर्टिलाइजर जो है उसी समय दे देते हैं, कतारों में ही डालते हैं, तो अन्य जगह पर उगने वाले खरपतवारों की वृद्धि कम हो जाती है और हमारे जो उर्वरक है या खाद है वो पूरे के पूरे हमारे फसल के पौधों को मिलते हैं। इसी तरह यदि आप रोपा भी कतार में लगाते हैं तब छिड़काव कर रहे हैं तो ऐसा ध्यान रखें कि कतारों में ही आप जो है छिड़काव करें, कतार के आसपास करें, तो जिससे खरपतवार की वृद्धि रुक जाती है।
2: जी,
0: तो इस तरह जो है आप उर्वरक का प्रबंधन करके भी कर सकते हैं।
2: ठीक,
0: तीसरा इसी में आता है कि गहरी जुताई करके, जब हमारे ग्रीष्मकाल का अवसर होता है और यदि खेत में एक आध बार बारिश हो जाती है तो, या ना भी हो तब भी किसान जो मिट्टी पलटने वाले हल होते हैं जैसे मोल्ड बोल्ड लॉ है।

0: इसकी सहायता से खेत की गहरी जुताई कर लें, तो गहरी जुताई करने से जितने भी खरपतवार के बीज या कंद भूमि में जो दबे हुए होते हैं ये ऊपर आ जाते हैं और धूप के द्वारा या चिड़ियों के द्वारा जो है नष्ट कर दिए जाते हैं। तो गहरी जुताई का बहुत अधिक लाभ होता है खरपतवार नियंत्रण में, किसान भाई इसको अपनाएं। इसके अतिरिक्त बुआई से पूर्व भी हम खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे सामान्यतः हमारे यहाँ जून के मध्य से बुआई का कार्यक्रम प्रारंभ होता है और जून के प्रारंभ में यदि एकाध वर्षा हुई तो इस वर्षा काल में कई सारे खरपतवार के बीज अंकुरित हो जाते हैं। और हम यदि इस समय इसको जुताई कर दें, संख्या जो है बहुत कम हो जाती है, उसके बाद हमारी मुख्य फसल में आक्रमण नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त इसी पद्धति में एक और आजकल प्रचलित पद्धति हो रही है जिसे हम कहते हैं भूरी खाद का उपयोग। इस पद्धति में हम क्या करते हैं, चाहे किसान भाई सीधी बुआई से किया हो या रोपा किया हो, तो बुआई के समय या रोपाई के समय में हम ढेचा का बीज खेत में छिड़क देते हैं। तो ढेचा का बीज जब हम छिड़क देते हैं तो ये ढेचा भी धान फसल के साथ साथ उगने लगता है। और ये ढेचा जब उगता है तो बड़ी तेजी से उगता है। ये अपने साथ चूंकि तेजी से बढ़ता है इसलिए ये दूसरे खरपतवारों को ज्यादा बढ़ने नहीं देता, जगह भी घेरता है और दूसरों के भोजन पानी को भी खरपतवारों को जो मिल रहा है उसको अपना स्वयं ले लेता है, तो उनको तेजी से बढ़ने नहीं देता, उनकी वृद्धि को रोक देता है।
1: अच्छा,
0: अब जब 25 से 30 दिन हो जाएं, चाहे हम बोता बोए हों उसमें डाले हों ढेचा या हम रोपा। हमने रोपा में डाला हो, 25 से 30 दिन बाद जब ढेचा का पौधा अच्छा बड़ा हो जाए तो हम 2,4-D दवाई से इसको नष्ट कर देते हैं।
1: अच्छा,
0: तो 2,4-D की दवाई जो है 750 ml जो है लगती है और इसका छिड़काव करते हैं तो उससे ये ढेचा के पौधे मर जाते हैं। जब ढेचा के पौधे मर जाएं उससे क्या होता है, एक प्रकार की खाद बन जाती है, क्योंकि ये नष्ट होके जमीन में मिल जाते हैं तो एक प्रकार की खाद बन जाती है, तो इससे भी जो है हम खरपतवार प्रबंधन कर सकते हैं।
1: अच्छा, मतलब ये तो एक जिन प्रकार बताया आप मन एक प्रकार से अन्य खरपतवार मतलब चकमा दे दिया।
0: बिल्कुल बिल्कुल। फिर इसके बाद जो है हमारे पास कई सारी यांत्रिक विधि होती है, जैसे कि हम हाथ के द्वारा या खुरपी के द्वारा या यंत्र चलाकर निंदाई करते हैं। तो इस प्रकार जो है हम जैसे यदि कतार में बोया है तो हो चलाकर, या आपने रोपा लगाया है और कतार में रोपा लगाया है तो अंबिका पैडी वीडर है हमारे पास, इसको चलाकर हम नियंत्रण कर सकते हैं। और अंत में हमारा ब्रह्मास्त्र है रासायनिक दवाइयाँ।
1: ठीक है, तो रासायनिक दवाई के बाद हम नागू कर बो, पहली कालर ले लेते। हेलो
2: जित्तू भाई, राम राम।
1: राम राम भैया,
2: भाठा बड़ा दतरंगी ले बुलाते हैं जित्तू भैया, हीरू राम साहू।
1: साहू जी बड़े दिन बाद फोन करे है।
2: भाटा साहब नमस्कार भैया।
0: हाँ नमस्कार, बड़ी दूर से आप लगाए हैं भाटापारा के क्षेत्र से।
2: हाँ तो खर पतवार रासायनिक दवाई कहां
1: पूछा थे हीरू भैया, बड़ दूरियल फोन लगाए हैं कि धान फसल लगे है खर पतवार बाद कौन सा केमिकल, वही में हम डॉक्टर साहब पहुँचे रहे हैं ना।
0: बिल्कुल
1: बढ़िया बता दे,
0: तो सही समय पे इन्होंने फोन लगाया है। और जैसा आप धान की फसल लगाते हैं तो चाहे आप रोपा पद्धति से लगाए हो या आप ब्यासी पद्धति से लगा रहे हो या धान की कतार बोनी कर रहे हैं, थोड़े थोड़े से अंतर रासायनिक दवाओं के उसमें होता है। जैसे यदि आपने कतार बुआई की है तो शुरू में जो है आप 3 दिन बाद जब खेत में नमी हो तो उस समय आप पेंडामेथिलीन दवाई का उपयोग कर सकते हैं या पैराजोसल्फ्यूरान दवाई का उपयोग कर सकते हैं या प्रिटला क्लोर दवाई का उपयोग कर सकते हैं। तो 3 दिन में जो है इन दवाइयों की सही मात्रा डालकर अपना खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। और उसके बाद जब हमारी फसल 20 से 25 दिन की हो तो उस समय आप रासायनिक दवा का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि बिसपायरेबिक सोडियम है या पिनोक्सुलम और साइलोफॉप ब्यूटाइल का मिक्सचर होता है, या यदि सक्री पत्ती वाले हों तो विप सुपर का उपयोग जो है आप उसमें कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास कई प्रकार की रासायनिक दवा है जिनका सही मात्रा में सही समय पे सही तरीके से डालकर जो है आप अपने खरपतवार को प्रबंधन कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि इन दवाइयों के उपयोग से हम संपूर्ण खरपतवारों को एक बार में नष्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन उनकी संख्या को कम कर सकते हैं या उनकी संख्या को नियंत्रण कर सकते हैं ताकि हमारी वो मुख्य फसल को नुकसान ना पहुंचा पाए, हम इस अवस्था में ला देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, लेकिन इन दवाइयों की सही मात्रा सही समय पे डालना अत्यंत आवश्यक होता है।
1: ठीक है हीरू भैया।
2: हाँ जीतू भाई, ठीक है भाई।
1: चला फोन लगाया, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: स्थिर दूरी पर रखते हुए आपको एक सामान्य गति से पूरे खेत में चलते हुए पूरे खेत को कवर करना है।
1: जैसे हम साइकिल या गाड़ी चलाते हैं सीधा वैसा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। इसको जो है हिलाना डुलाना नहीं है, जैसे हम कीड़े मारने या बीमारी

0: से बचाने के लिए जब दवाई डालते हैं तो पूरे पौधे को नहलाते हैं, इसमें ऐसा आपको नहीं करना है। जब ये फ्लड जेट नोजल का आप उपयोग कर रहे हैं तो एक सामान्य गति से हैंडल को जो है एक निश्चित ऊंचाई पर रखें, घुटने की ऊंचाई पर, और आसानी से चलते हुए पूरे खेत को कवर करें।
1: कवर एला हमला तो भाई भूया में डालना है।
0: हाँ, भूमि में डालना है या पौधों पे डालना है तो सभी पौधों पर एक समान रूप से पड़े दवाई, तो इस तरह से जो है इसका उपयोग करना चाहिए, तभी हमारी रासायनिक दवाइयाँ प्रभावी होती हैं।
1: अच्छा, बहुत सुघर आज के विषय ऊपर आप मन के जानकारी रही से, पूरा जेन विषय में जेन जेन आयाम के बात होना रही से, पूरा आप मन करे है किसान भाई मन जुड़ी अपन समसामयिक विषय से संबंधित उमन सवाल करें और आपसे निदान पाएं। आज के विषय रही से धान के फसल में खरपतवार नियंत्रण, चाहे धान हम कोनो भी विषय से लगाई रही, अवे विषय ऊपर आप आज विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच आए डॉक्टर गीत शर्मा जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर, आप मनला बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद जीतू भाई, साथ ही साथ सभी किसान भाइयों को राम राम, आपकी फसल बढ़िया हो यही शुभकामनाओं के साथ।
1: तो चला किसान भाई हो, अगला हफ्ता फिर मिलबू, नवा विषय नवा विशेषज्ञ बनसु, तब तक देवा कार्यक्रम ले विदा, जीतू भाईला राम राम।
2: संगवारी ए तुरी सवाए फोरिन कार्यक्रम, आज के विषय री सवाए धान रोपाई ब्यासी की खरपतवार नियंत्रण हमन कौन प्रकार से करी। विशेषज्ञ रहिन हवाए डॉक्टर गीत शर्मा, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर ले, और कार्यक्रम रा संचालन करते रहे हमर संगवारी जीतू भैया। तो यही कार्यक्रम के संग पंचु भेला देव विदा, जय जोहार राम राम।
3: ग्राम सभा अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजने वाले हैं। भिलाई में संपन्न अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन की रेडियो रिपोर्ट हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: रहे। लीजिए सुनिए भिलाई में संपन्न अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन की रेडियो रिपोर्ट। आलेख वाचन और प्रस्तुत करता है प्रकाश उदय।
1: रेडियो श्रोताओं के समर्पण और सम्मान का प्रतीक अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन गत 19 और 20 अगस्त को भिलाई नगर में आयोजित किया गया। श्रोताओं के इस महाकुंभ में 18 राज्यों के रेडियो श्रोताओं ने भाग लिया, जिनमें बड़ी तादाद में महिलाओं ने भी शिरकत की। 20 अगस्त को आयोजित मुख्य समारोह दुर्ग सांसद माननीय श्री विजय बघेल के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न हुआ। आयोजन के आरंभ में प्रख्यात लोक गायिका स्वर्गीय तीजनबाई को सामूहिक श्रद्धांजलि दी गई। तत्पश्चात आकाशवाणी रायपुर के प्रसारकों का स्वागत किया गया।
2: कि आवाज की दुनिया के दोस्तों, आपने ही हमें मशहूर किया है और आपने ही आवाज की ये दुनिया सब लोगों तक पहुंचाई है। जैसे हिंदुस्तान में घूमता है हर किसी को चाहिए पानी, वैसी है अमृत तुल्य हमारी आकाशवाणी। तो संतोष जी के लिए इतना ही। गगन की शान सितारे और चमन की शान बहारे है, हमारी शान बस यही है कि आज आप यहाँ पधारे हैं, आज आप यहाँ पधारे। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं मेरी बात रखूंगा, बस इतना ही। सबके चेहरे में वो बात नहीं होती, थोड़े से अंधेरे से रात नहीं होती। सबके चेहरे में वो बात नहीं होती, थोड़े से अंधेरे से रात नहीं होती। यूं तो मिलते लोग बहुत सारे अक्सर दुनिया में, पर क्या करे जो दिल के करीब होते हैं उन्हीं से तो मुलाकात बार बार नहीं होती, उन्हीं से तो मुलाकात बार बार नहीं। जय श्रोता जगत, जय श्रोता जगत, जय श्रोता जगत।
3: धन्यवाद विकास जी।
1: इसके बाद माननीय सांसद श्री विजय बघेल ने श्रोताओं को संबोधित करते हुए कहा,
4: भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, वंदे वंदे। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मेरे कर्म क्षेत्र, मेरी जन्मभूमि इस भिलाई दुर्ग के पावन धरती में पूरे देश भर से, देश के कोने कोने राज्यों से हमारे रेडियो श्रोता संघ के समस्त सदस्यगण, पदाधिकारीगण यहाँ पर भिलाई में आप सब अखिल भारतीय रेडियो श्रोता संघ सम्मेलन में आज उपस्थित हुए हैं। मैं यहाँ के एक सेवक होने के नाते, यहाँ के एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन।

0: वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं दिल से, आत्मा से। आज वाकई में इसलिए भी बड़ा प्रसन्नता हो रही है कि मैं चाहे छोटे स्तर का आपके रेडियो श्रोता संघ का कार्यक्रम हो, यहाँ कोई छोटी संगोष्ठी हो, मैं लगभग प्राय जगह पहुँचता हूँ और ये मुझे अच्छा लगता है। और हमारे दोनों यहाँ मंच में बैठे सम्मानी जन, आदरणीय अशोक बजाज जी संरक्षक हैं, साथ ही साथ हमारे परशुराम साहू गुरु जी जो राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त कर चुके हैं, और मेरा गांव उनका गांव आस पड़ोस है, 1 किलोमीटर में हम दोनों का गांव है, इसलिए सालों सालों से प्रगाढ़ता उनसे है। सिर्फ रेडियो श्रोता संघ के पदाधिकारी के रूप में नहीं या मैं सांसद के रूप में नहीं, एक आत्मिक पारिवारिक संबंध आदरणीय परशुराम जी से है। और मैं बचपन से उनके जो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनसे हम सब प्रेरणा लेते हैं, सीखते हैं, चाहे वो आदिकाल से लेके अभी तक के सिक्के की बात हो कलेक्शन करने की, चाहे डाक टिकट कलेक्शन की बात हो, चाहे जो रेडियो के अनेक प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसकी बात हो, ग्रामोफोन, वो सब का कलेक्शन एक अद्भुत है इनका। ऐसे आदरणीय परशुराम साहू जी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सभी सम्माननीय अन्य पदाधिकारीगण और मंच संचालन कर रहे भाई तारक जी, उपस्थित पत्रकार बंधुगण, आप सबका एक बार फिर से मैं हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मेरे परिवार में मेरे दादाजी तो एक बड़ा रेडियो लेकर आए, वो जाली वाला रेडियो हुआ करता था पहले, उसको एक जगह टेबल में वो रखे रहता था। लेकिन जिस दिन वो बांस गीत आता था छत्तीसगढ़ का, तो उसको बाहर में रखवाते थे, क्योंकि उस दिन पूरे गांव भर की भीड़ लगती थी उसे सुनने के लिए, और लोग देख के आश्चर्यचकित रहते थे ये क्या, कहां से आवाज आ रही है। मतलब ऐसे उपकरण भी है जिससे इस तरह के संगीत गीत, इस तरह के बोली भाषा और इस तरह के आयोजन का प्रसारण किया जा रहा है। आकाशवाणी चलती थी और धीरे धीरे जब हम बड़े हुए तो उसका स्वरूप बदलता गया, और जब फिर बड़े हुए तो टीवी आया, अनेक प्रकार के और इंस्ट्रूमेंट आए, लेकिन रेडियो की महत्ता कम नहीं हुई। आज भी आप जैसे लोग उसकी महत्ता को समझते हैं, आप उस कालखंड को याद करते हैं रेडियो सुन के, हमारे पूर्वज उसको सुना करते थे। मतलब हमारी ये मानव सभ्यता में जब इस तरह के आविष्कार हुए, उसके रक्षक और उसके संरक्षक आप सब बने हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आज राष्ट्रभर से आप सब भाई बहन यहाँ आए हैं, इतनी दूर से आए हैं एक दूसरे से परिचय करने, एक दूसरे से मिलने, कि कौन कौन प्रदेश में कौन कौन लोग हमारे इस जो संस्था में सदस्य हैं और जो रेडियो आज भी सुनते हैं, आज भी सुनता है। मैं भी अपने घर में रखा हूँ, दिल्ली में भी एक रेडियो रखा हूँ और यहाँ भी एक रेडियो रखा हूँ। तो आज मुझे फिर से एक बार आप सब के बीच में आने का अवसर मिला, और आप सब हमारी भिलाई नगरी को देखे भी, यहाँ हैं भी, जो समिति के पास बन पड़ी आप सबके लिए व्यवस्था किए हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप सब संतुष्ट होंगे। बाकी अच्छे अनुभव आप सब साथ लेके जाइएगा। पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, और आप सब अपनी आने वाली पीढ़ी को भी ये संदेश दे रहे हैं, ताकि आपके बाद हमारे बाद हमारी आने वाली पीढ़ी भी इस परंपरा को लगातार चलाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: इस आत्मीय सम्मेलन के खुले मंच को बेहद उत्साह के साथ श्रोताओं ने साझा किया और अपने अनुभव सुनाए।
2: मैं गुलमंडी छत्रपति संभाजी नगर से जगन्नाथ बसवे बंधु बात कर रहा हूँ।
3: अच्छा। कितने साल से रेडियो से जुड़े हो?
2: ये रेडियो तो मैं बचपन से सुन रहा हूँ, मेरे माता पिता के गर्भ से सुन रहा हूँ। ग्रामोफोन था हमारे पास, बड़े बड़े फिलिप्स हॉलैंड के रेडियो से, बड़े भैया के पास, वो सुनते सुनते सुनते सुनते अब हम 73 साल में पहुंच रहे हैं।

0: ऐसा लगता नहीं कि 73, ऐसा लगता है 16 साल का छैला है।
1: आज यहाँ भिलाई में अखिल भारतीय श्रोता सम्मेलन जो हो रहा है, यहाँ तक पहुँचना और यहाँ उन श्रोताओं के साथ रूबरू होना जिनका नाम कभी रेडियो में सुनते थे, आज उनसे मुलाकात हुई, आपको कैसा लग रहा है?
0: बहुत अच्छा, न भूतो न भविष्यति। हमारे साहूजी साहब जो है, गुरुजी जिनको कहते हैं, उन्होंने मेरे को बोला था अहिल्या नगर में 2025 के समारोह सम्मेलन में, जगन्नाथ भाई आपको आना ही होगा। अब ही बोले तो विशेषण है, मैं बोला तो फिर आइए बोले। मैंने सब काम छोड़ के वहाँ से निकला, 900 किलोमीटर से मैं कार से आया हूँ। क्यों आया? केवल प्रेम। जा घट प्रेम मन संचरई, सो घट जान मशान, जैसे खाल लोहार की सांस ले तब बिन प्राण। प्रेम, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए बोलते, या 3 मिनट का गाना बजता है। तो वो हमारे मित्र ने मुझको कहा आना ही होगा छत्तीसगढ़ के भूमि में, तो मैं उनके कहने पे और श्रोताओं के सब आने, जितने भी हजारों श्रोता है हमारे, सबके दर्शन, साक्षात्कार, रूबरू, प्रत्यक्ष मिलन, इसके लिए मैं खास आया हूँ।
1: तो इसे कैसे देखते हैं आपकी आधुनिकता की होड़ में, जहाँ आज सोशल मीडिया अपनी पैठ बना रहा है, बना चुका है, वहाँ रेडियो कैसे जीवित है?
0: अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब ने जो मन की बात रखी है ना, हर रविवार को बोलता है प्रधानमंत्री जी, ने मृत प्राय रेडियो में जान फूंक दी है, जिसके कारण हर सप्ताह में लोग मन की बात से एक एक विषय पे अपने मंथन होता है। उसके लिए लोगों ने हजारों हजार लाखों लाख रेडियो लिए है, जो जिंदे हो चुके रेडियो, जो मृत प्राय पड़े थे। रेडियो का आनंद अलग आता है, मोबाइल में अलग आता है, मगर रेडियो के अंदर जो मिठास आती है वो मोबाइल में नहीं आती। और रसिक श्रोता जितने भी हमारे भारत भर में, वो रेडियो ट्रांजिस्टर के ऊपर ही गाने सुनेंगे, मोबाइल पे नहीं सुनेंगे। और पुराने रेडियो में आजकल एक FM की किट आती है, अब वो हमने मेरे रेडियो में किट बिठाए हूँ, उसमें पूरे 100-230 FM आते हैं। हम बटन दबा देते हैं, मगर रेडियो में से ही FM से सुनते हैं हम आवाज़। रेडियो को हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा बचपन चले गया, अभी और 30 साल हमारे बाकी है, 103 साल हम अभी आखिर तक रेडियो को हम साथ छोड़ने वाले नहीं है। तो इस रेडियो को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। जो जुड़े हैं, इतने श्रोता जो आए हैं, ये बने हट्टी से हमारे भाई आए वाले, महालिंगपुर से आए वाले, कितने दूर दूर से लोग आए हैं, क्यों आए? रेडियो श्रोता सम्मेलन, सबका मिलन मधुर, ये श्रोता जगत है। यहाँ कोई संप्रदाय नहीं है, एक ही नारा चलता है, रेडियो जगत जिंदाबाद।
1: छत्तीसगढ़ के जो श्रोता संघ है, इनसे आपकी मुलाकात यहाँ हुई है, इससे पहले पिछले साल बुलढाणा में शायद हुआ था एक सम्मेलन, तो वहाँ भी आपकी मुलाकात हुई। तो छत्तीसगढ़ के जो श्रोता हैं, उनसे मिलके आपको कैसा लगा और उनके लिए क्या संदेश छोड़ के जाएंगे?
0: छत्तीसगढ़ बोले तो छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ बोले तो धान का कटोरा है। भोजन के अंदर अगर भात नहीं रहेगा, चावल नहीं रहेगा, तो परिपूर्ण भोजन नहीं होता। ये वो छत्तीसगढ़ है, जब भी हम चावल खाते हैं तो छत्तीसगढ़ आह बोल के खाते हैं, करके हम यहाँ पधारे हैं। और यहाँ के लोग बड़े प्रेम से बात करने वाले हैं, विनय, शालीनता, एकदम जिसके देखे चेहरे पे ना प्रसन्नता रहती है। ये छत्तीसगढ़ की खास बात है, धान का कटोरा। फूलों की डाली पर शबनम गिरने से डाली नम नहीं होती, फूलों की डाली पे शबनम गिरने से डाली नम नहीं होती, हो जुदाई लाख पर मोहब्बत कम नहीं होती। श्रोता जगत जिंदाबाद।
2: अशोक जय भाई, मैं औरंगाबाद से हूँ।
1: तो ये जो श्रोता सम्मेलन यहाँ हो रहा है, श्रोता सम्मेलन भिलाई में हो रहा है, यहाँ आकर कैसा लगा?
2: साहू साहब का जो एडमिनिस्ट्रेशन है और उनका जो एडजस्टमेंट है और जो अतिथि देवो जो बोलते हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने बहुत अच्छा अरेंज किया है और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन रहा है, हम तो खुश हो गए सर।
1: तो सारे श्रोता जो संघ यहाँ पर आए हैं, किन किन श्रोता संघों से आपकी मुलाकात हुई, जिनसे आप, जिनके सिर्फ आपने नाम सुने थे और यहाँ आकर मुलाकात हुई?
2: यहाँ आकर हमारी मुलाकात श्रीकांत फड़, बाद में फिर मास्टर फड़ जो थे, RG फड़, उनके जो बच्चे हैं चिरंजीव है, वो श्रीकांत फड़ से बात होगी।
3: मैं सतीश वैरालकर, दैनिक दिव्य मराठी, दैनिक भास्कर ग्रुप, छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से हूँ, और यहाँ हिंदी गीत और हिंदी जो गायन है, पत्रकारिता से जुड़ा होने की वजह से मुझे बड़ी रुचि है गायन के क्षेत्र में। हम आकाशवाणी हमारे यहाँ भी है, आपके छत्तीसगढ़ आकाशवाणी के भी हम बहुत बड़े फैन रहे हैं। जब भी कभी हिंदी चैनल हमको चलाना पड़ता है आजकल, तो हम छत्तीसगढ़ होते हैं, मध्य प्रदेश का भी सुनते हैं, ऑल इंडिया रेडियो सुनते हैं दिल्ली का, तो इस वजह से हमें बड़ी रुचि इसमें प्राप्त हुई। और हमारे दोस्त जो है बसे ये बंधु, छत्रपति संभाजीनगर से जगन्नाथ बसे बंधु, इनकी बड़ी कृपा रही है कि ये कई सालों से हमारे पीछे थे और आज हम इसमें सम्मिलित होने का मौका मिला है।
1: अभी जन संचार का जो माध्यम है रेडियो।

0: इसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
1: आज भी देखिए हमारा देश जो है इसे देहातों का देश कहा जाता है। 70% आबादी आज भी देहातों में रहती है। आज से 25-40 साल पूर्व हम देखते हैं तो रेडियो एक ही जरिया ऐसा था जो कि हर एक इंसान को एक इंसान दूसरे इंसान से जोड़ा जाता था, और मैं समझता हूँ आज वो स्वर्णिम जो युग है फिर से आज लौट रहा है। लोग इस थकान भरी धका धकी की जिंदगी जो है, भीड़ भाड़ वाली जिंदगी, इसे कहीं ना कहीं मिजाज चाहते हैं, और इसी के मैं बोलता हूँ कि आज भी जो आकाशवाणी की लोकप्रियता बढ़ी है, विविध भारती की लोकप्रियता बढ़ी है, ऑल इंडिया रेडियो की बढ़ी है, तो यही एक कारण है कि लोग फिर से आज इधर जुड़ रहे हैं।
0: आज हमारे साथ है डॉक्टर
2: श्रीकांत आर जी
0: फड़, ये महाराष्ट्र से हैं। तो अखिल भारतीय श्रोता सम्मेलन आज जो हुआ है भिलाई में कला केंद्र में, ये भी आए हैं महाराष्ट्र से, तो इनसे जानेंगे कि ये जो यहाँ का आज माहौल है कैसा है और यहाँ आकर आपको कैसा।
3: आज का जो हमारा 20 अगस्त का जो सम्मेलन है वो सही में हमारा एक कुंभ मेला रहता है। हर साल हम सभी श्रोता सम्मेलन में जाया करते थे और जो ऊर्जा हमें सम्मेलन से मिलती है वो हमारी ऊर्जा पूरे साल भर चलती है। आज जो यहाँ पर आयोजन किया है हमारे वरिष्ठ श्रोता भाई परसुराम साहू गुरु जी और दूसरे उनके साथी तारक सदेव जी, मुकेश शर्मा जी, इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, और हम सभी श्रोता इस कार्यक्रम के संबंध में बहुत दिनों से प्रतीक्षित थे और आज यहाँ आकर बड़ी खुशी हो रही है। तो ये सम्मेलन का जो हमारा हर साल का जो एक ऊर्जा है वो हमें काफ़ी कुछ देती है। हर तरह के श्रोता यहाँ पर, हर स्टेट्स से श्रोता आता है और सबकी मुलाकात होती है। जो लोग अनजान हमें, हम रेडियो पर उनका नाम सुनते हैं लेकिन प्रत्यक्ष उनको देखकर बड़ा ही आनंद मिलता है, भी हम इस श्रोता सम्मेलन से हमें ऊर्जा मिलती, यही मुझे कहना है।
0: अपना नाम बताएं।
4: दिनेश कुमार वर्मा, ग्राम रिंगनी।
0: यह श्रोता सम्मेलन आज यहाँ हो रहा है तो इस श्रोता सम्मेलन में आप उपस्थित हुए हैं, तो अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन है, तो यहाँ आकर आपको कैसा लगता है?
4: जिन श्रोताओं का नाम रेडियो में सुनते थे आज सभी लोगों से साक्षात मुलाकात हो रही है, जिन अनाउंसरों का मधुर आवाज सुनते थे आज उनसे सामने मुलाकात हो रही है। ये कार्यक्रम हर साल पूरे इंडिया में होता है, इस साल भिलाई छत्तीसगढ़ में हो रहा है, सभी श्रोताओं से मिलकर बड़ी खुशी हुई।
0: जी जी, और किन किन श्रोता संगठनों से आपकी मुलाकात हुई? जैसे बोला आप कह रहे हैं कि रेडियो में ही सुना है, उनसे आपकी मुलाकात हुई है, तो छत्तीसगढ़ के बाहर के किन किन श्रोता संगठनों और श्रोता संघों से आपकी मुलाकात हुई?
4: हर साल श्रोता सम्मेलन होता है, उसमें कई जगह मैं गया हूँ, उसमें हमारे श्रोताओं से मुलाकात हुई है, जैसे पांडे जी हैं, रवि कुमार राहुल जी हैं, बहुत सारे श्रोता हैं जिनसे मुलाकात हुई है, जो सम्मेलन में मुलाकात होती रहती है।
0: आप अपने?
5: सर जी नमस्कार, मैं रेवाराम साहू बोला हूँ, दहिहान माधव बाजार, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। क्योंकि अभी अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन के कार्यक्रम है 2026 में, वो कार्यक्रम अपना छत्तीसगढ़ में हो रहा है सर जी, यह भिलाई स्थान है, भिलाई में, दुर्गा भिलाई में, तो श्रोता मित्रों में उनसे मुलाकात करवे ना तो बहुत अच्छा लगता है सर जी, काबर की फोन से बातचीत हो रही है, लेटर के माध्यम से सुना रेण की को नाम, अब संवाद आपके आमने सामने मुलाकात होवे ना कंपेयर मन से या श्रोता मित्र से, तो बहुत खुशी लगते सर जी। और श्रोता दिवस के पावन अवसर पे आकाशवाणी परिवार है और श्रोता संगवारी मल्ला बहुत बहुत बधाई, गाढ़ा गाढ़ा चेहरा चेहरा टुकना टुकना बधाई सर जी,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप बताएं, आप करनाल से आए हैं तो छत्तीसगढ़ से काफ़ी दूर है करनाल, हरियाणा प्रदेश में है, तो आज आप यहाँ पर आए हैं श्रोता सम्मेलन में, कैसा लग रहा है?
6: सबसे पहले तो मैं रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा की ओर से सबको अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन, ये छत्तीसगढ़ श्रोता जो ग्रुप है वो करवा रहा है, वो बहुत बधाई का पात्र है। ये बहुत ही एक बेहतरीन एक स्टेज है सारे भारत के श्रोताओं को एक मंच पे इकट्ठा करने की, इसमें सब लोग आपस में मिलते हैं, अपने विचार साझा करते हैं और इससे भाईचारा भी बढ़ता है। 2022 में कोरोना के बाद जो पहला अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन था वो स्नेहित रेडियो लिसनर क्लब का मैं अध्यक्ष हूँ, ज्ञान भूषण शर्मा।

0: हमारी अध्यक्षता में ही वो जो करनाल में हुआ 2023 में हमने पटियाला में करवाया, उसके बाद बुलडाना में हुआ 24 में, 25 में बागपत में, और आज भिलाई स्टील नगरी में हो रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम। और मैं एक ये बात कहना चाहूँगा कि जितनी संख्या श्रोताओं की 2026 में आई है, इतनी आज तक नहीं आई। और मैं जो इसके संयोजक हैं परशुराम साहू जी और उनकी जो कमेटी है, मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ। उन्होंने इतनी बेहतरीन आयोजन का भाई ये कार्यक्रम आयोजन किया,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नमस्कार जी, मेरा नाम यशमीत यशु है, मैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से आई हूँ। और रेडियो सुनने का शौक तो मुझे बचपन से रहा है, लेकिन रेडियो जो सम्मेलन अभी 3-4 साल से मतलब ज्वाइन करना शुरू किया है, और रेडियो सम्मेलन में आके बहुत अच्छा लगता है। जिन लोगों के नाम मैंने बचपन से रेडियो पे सुने थे, उन सबसे मुलाकात हुई तो बहुत अच्छा लगा है। भिलाई में आकर जो सम्मेलन है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत लोगों से मुलाकात हुई तो बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा लगा भिलाई आकर, क्योंकि सपना था, इधर कभी आए नहीं थे इस रूट पे, तो भिलाई आकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ का जो कल्चर है, जो बच्चों ने प्रोग्राम पेश किया, मतलब मन गदगद हो गया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: विनोद वंडलकर, दीनदयाल उपाध्याय नगर, रायपुर से हूँ।
1: यहाँ जो श्रोता सम्मेलन जो हो रहा है, अखिल भारतीय श्रोता सम्मेलन, ये कैसा लग रहा है? और भिलाई की धरती पे आयोजन किया जा रहा है, यहाँ कहाँ कहाँ से जो है श्रोता सम्मेलन के लिए, श्रोता संगठन से लोग आए?
3: सबसे पहले ये सम्मेलन रायपुर छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ है समझो, और उसके बाद धीरे धीरे पूरे देश और पूरे प्रदेश में फैलते हुए पूरा भारत, मैंने भारत भर के श्रोताओं लोग को इकट्ठा होना शुरू हुए, और हर साल 20 अगस्त के दिन निर्धारित किया गया कि इस दिन रेडियो श्रोता दिवस मनाया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, श्रोताओं एक दूसरे से मेल मुलाकात होते हैं, जिनमें वही श्रोता होते हैं जिनका नाम रेडियो पर हमेशा आते रहता है।
4: मध्य प्रदेश के सागर से पधारे श्रोता चंद्रेश गौहर ने इस आयोजन की प्रशंसा करते हुए बताया।
5: सर, सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ की इस धारा को प्रणाम करता हूँ, और यहाँ आकर मुझे बहुत एक अलग प्रकार की अनुभूति हुई, जो रेडियो से सुनने के बाद मुझे जो अनुभूति मिलती थी। आज देश भर के तमाम मेरे जो श्रोता साथी यहाँ पर मौजूद हुए हैं, उनका देखकर मुझे एक अलग प्रकार की अनुभूति हुई। रेडियो ने मुझे बहुत कुछ दिया, जहाँ तक मैं ये बताना चाहूँगा कि आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, उसमें रेडियो का एक बहुत बड़ा, बहुत अमूल्य, बहुमूल्य योगदान है। रेडियो ने मुझे दुखों में हंसना सिखाया है और सुखों में मुस्कुराना सिखाया है, ऐसा है मेरा रेडियो। रेडियो को मैं कभी मनोरंजन का माध्यम नहीं मानता, रेडियो मेरे लिए सूचना, ज्ञान, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन तमाम प्रकार की हमें सुविधाएं घर बैठे ही हम लोग को मिल जाती हैं, तो इससे सशक्त माध्यम रेडियो को मैं अन्य किसी उसको नहीं मानता, मेरा ऐसा मानना है।
4: वहीं खंडवा के श्रोता योगेश गुजराती ने कहा।
6: खंडवा से योगेश गुजराती बोल रहा हूँ, और इस वर्ष 2026 का जो राष्ट्रीय सम्मेलन भिलाई में आयोजित किया गया, बहुत ही अभूतपूर्व कार्यक्रम है। क्योंकि मैं 12 वर्ष से लगभग इस रेडियो से जुड़ा हुआ हूँ, रेडियो सिलोन पे जब हम सुनते थे तो हमारे वरिष्ठ जो श्रोता कार्यक्रम सुनते थे तो उनके पीछे बैठ के मैं रेडियो सुनता था, और उनके पत्र वगैरह जो है लिफाफे में पैक करना, और बाय एयर वो SLBC श्रीलंका जाते थे, उसको देख देख के मेरे मन में भी बहुत रेडियो के प्रति प्यार जगा असीम, और धीरे धीरे करके रेडियो से फरमाई से भी भेजना शुरू कर दी। तब से अभी तक मैं रेडियो से जुड़ा हूँ, और 2018 में इसी तरह का राष्ट्रीय आयोजन हमारे खंडवा मध्य प्रदेश, क्योंकि किशोर दा की जन्मभूमि है, माखन दादा की जन्मभूमि है, श्री दादाजी महाराज की जन्मभूमि है, और सुभद्रा कुमारी चौहान जो है उनकी कर्मभूमि है। तो हमारा जो खंडवा शहर है वो सब दादाओं से मिलकर बना है, शिक्षा, साहित्य, कला, संस्कृति, गायन के क्षेत्र में हो या किसी अन्य क्षेत्र में हो, हमारा खंडवा का नाम बहुत सदा इन बातों में अग्रणी रहा है। तो मैं मध्य प्रदेश से भिलाई के छत्तीसगढ़ के श्रोता सम्मेलन में वहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, और यहाँ की आयोजन समिति को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना शानदार जानदार कार्यक्रम आयोजित किया, और अगले वर्ष भी शायद हो सकता है कि हमारे मध्य प्रदेश में आयोजन करने की चर्चाएं चल रही है, कभी ऐसा होगा तो जरूर हम इसकी सूचना आपको देंगे।
4: इसके बाद रंगारंग प्रस्तुतियों ने सबका मन मोह लिया। पेश है एक झलक।

0: कार्यक्रम के अंत में आकाशवाणी रायपुर के सहायक निदेशक कार्यक्रम श्री पंकज मेश्राम ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया।
1: यहाँ के ज़्यादातर लोग मुझे जानते हैं कि मैं भिलाई का ही निवासी हूँ और तारक भाई से मेरा बचपन से नाता है, हम दोस्त रहे हैं और श्रोता के तौर पर तो बाद में उनसे पहचान हुई, लेकिन मेरी जान पहचान उनसे बचपन से रही है। और इस आयोजन के बारे में मुझे कम से कम 2 महीने पहले ही सोम कुंवर जी और तारक भाई से पता चल गया था कि ये आयोजन 19 और 20 अगस्त को होना है और भिलाई में इसके वेन्यू तय किए जा रहे थे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि छत्तीसगढ़ को पुनः ये मौका मिला कि अखिल भारतीय स्तर का श्रोता सम्मेलन हम भिलाई में आयोजित करें, जहां देश भर से हमारे जो श्रोता साथी हैं वो आ सकें। और इस आयोजन को सफल बनाने में हमारी आयोजन समिति के सारे सदस्यों ने जो दिन रात मेहनत की, सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, ख़ासतौर पे अशोक बजाज साहब, यहाँ के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, बधाई के हकदार हैं। दूसरा, आज जब ये 2 दिन का आयोजन संपन्न होने जा रहा है और आप 18 राज्यों से जो हमें इस बात की सूचना मिली है कि श्रोता साथी इस आयोजन में आए हैं और जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान किया है, आज इतनी भारी तादाद को देखते हुए एक बात बड़े यकीन और उम्मीद से की जा सकती है। लोग अक्सर हमसे ये कहते हैं कि क्या आज भी रेडियो सुनने वाले लोग मौजूद हैं। आपकी इतनी बड़ी तादाद में ये उपस्थिति इस बात को दर्शाती है कि यदि प्रमाण इस बात का चाहिए, सबूत चाहिए, तो वो यहाँ आकर एक बार देख लें कि कैसे लोगों ने अपनी मेहनत से, अपने खर्चे से, देश के कोने से, कोने कोने से इकट्ठा होकर इस आयोजन को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाई है। और मैं अब इस मौके पर एक दो बातें और भी करना चाहता हूँ कि रेडियो ने समय के साथ अपनी सेवाओं का विस्तार किया है। अब ट्रांजिस्टर रेडियो के अलावा हम मोबाइल ऐप के जरिए भी रेडियो के कार्यक्रम सुन सकते हैं। दूसरा, कई हमारे श्रोता साथी हैं जिन्हें इस बात की शिकायत है कि न्यूज़ ऑन AIR पर ये कार्यक्रम थोड़े से साफ नहीं सुनाई दे रहे हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि वेब्स का वो सहारा लें, वहाँ पर उसकी क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन आती है, आप इन कार्यक्रमों का मज़ा दुगने उत्साह से ले सकते हैं। साथ ही साथ आकाशवाणी के अलावा रेडियो के भी कार्यक्रम वहाँ पर सुने जा सकते हैं। फिर से यहाँ पर जितने लोग आए हैं प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, सारे लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और आप सब ने अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को, इस आयोजन को सफल बनाया, इसके लिए तहे दिल से आप सबका शुक्रिया, पुनः आभार कि आपने अपना बहुमूल्य समय इस आयोजन को सफल बनाने के लिए दिया, धन्यवाद एक बार पुनः।
0: इस श्रोता सम्मेलन में श्रोताओं के साथ साथ प्रसारकों और आम नागरिकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी के साथ भिलाई नगर में संपन्न अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन की ये रेडियो रिपोर्ट।

0: अब समाप्त होती है। संपादन रमाशंकर, आलेख और प्रस्तुति प्रकाश उदय।
1: भिलाई में संपन्न अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन की रेडियो रिपोर्ट अभी आप सुन रहे थे। आलेख वाचन और प्रस्तुतकर्ता थे प्रकाश उदय। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
2: ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। FM बैंड 103.2 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। रात्रि के 8:28 और 43 सेकेंड्स हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम रजनीगंधा।

कहते हैं कुछ खुशबुएं हवाओं में घुल कर भी दिखाई नहीं देती, बस महसूस होती हैं। कुछ एहसास ऐसे भी होते हैं जिन्हें कहने के लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं और जिन्हें सुनने के लिए बस एक खूबसूरत शाम चाहिए। तो आइए आज की इस नर्म महकती शाम को मोहम्मद के कुछ नगमों, कुछ खूबसूरत बातों और कुछ अनकहे एहसासों के नाम करते हैं। मैं आपकी रेडियो साथी अपेक्षा और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम रजनीगंधा। स्वीकार कीजिए मेरा स्नेहिल नमस्कार। श्रोताओं, आज की शाम एक ऐसी शख्सियत के नाम है जिनकी कलम में बेबाकी थी, मगर उस बेबाकी के पीछे इंसानी दिल की बहुत गहरी समझ भी थी। इस्मत चुगताई। उर्दू अदब की इस मशहूर लेखिका ने औरत को सिर्फ एक किरदार की तरह नहीं देखा, उन्होंने उसके भीतर धड़कते हुए दिल को देखा, उसकी चाहत, उसकी तन्हाई, उसके सपने, उसकी नाराजगी और सबसे बढ़कर उसकी अपनी पहचान। इस्मत की खूबसूरती शायद यही थी कि उन्होंने मोहब्बत को सिर्फ फूल, चांद और सितारों में नहीं खोजा, उन्होंने उसे रिश्तों की सच्चाई में खोजा। और इसी एहसास के साथ सुनिए।

श्रोताओं, आज इस्मत चुगताई के जन्मदिन पर आइए उनकी किताबों के कुछ पन्ने खोलते हैं और उन पन्नों से निकलती मोहब्बत, अपनापन, तन्हाई, उम्मीद और ज़िंदगी की खुशबू को महसूस करते हैं, क्योंकि इस्मत को सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि उन्हें महसूस करना है। इस्मत चुगताई की सबसे चर्चित रचनाओं में है लिहाफ। इसके भीतर एक औरत का अकेलापन है, ऐसा अकेलापन जो भीड़ में भी साथ रहता है। कभी कभी रिश्ते मौजूद होते हैं मगर उनमें अपनापन नहीं होता, और तब एक खामोश कमरा भी बहुत कुछ कहने लगता है, और इस खामोशी को महसूस करते हैं इस गीत में।

इस्मत का मशहूर उपन्यास टेढ़ी लकीर एक लड़की के बचपन से युवावस्था तक के सफर के बहाने समाज और स्त्री जीवन की कई परतें खोलता है। समाज अक्सर लड़कियों के लिए एक सीधी लकीर खींच देता है, ऐसे जीना है, ऐसे बोलना है, इतना ही सपना देखना है। लेकिन इस्मत की कलम कहती है, जिंदगी अगर मेरी है तो रास्ता भी मेरा होना चाहिए। लकीर सीधी हो या टेढ़ी, बस इतनी सी बात है, उस पर मेरे कदमों के निशान होने चाहिए, और इसी आज़ादी की खुशबू के साथ।

तो श्रोताओं, आज इस मच्छुकताई को याद करते हुए हमने उनकी किताबों से ज्यादा उनके दिल को पढ़ने की कोशिश की। एक ऐसा दिल जो समाज को बहुत करीब से देखता था, जो औरत की चुप्पी सुनता था, जो रिश्तों के बीच छिपी दूरी पहचानता था, और जो ये कहता हुआ मालूम पड़ता था कि मोहब्बत सिर्फ किसी को पाने का नाम नहीं, मोहब्बत तो शायद उस जगह का नाम है जहाँ इंसान को बिना बदले, बिना परखे बस समझ लिया जाए। और इस खूबसूरत एहसास के साथ कार्यक्रम रजनीगंधा में आज की ये मुलाकात यहीं थामते हैं। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। समाचार संध्या और अंग्रेजी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय फोरम को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था है, 10,000 से ज्यादा लेवल क्रॉसिंग गेट्स को भी इंटरलॉकिंग से जोड़ा जा चुका है। इससे ह्यूमन एरर से होने वाले हादसों की आशंका बहुत कम हुई है। साथियों, जब 2014 में हमारी सरकार आई तो करीब 9,000 फाटक ऐसे थे जो अनमैन्ड थे। इन्हें हटाना कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अनमैन क्रॉसिंग की वजह से हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन पहले की सरकारों को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता था। हमने मिशन मोड में गत 10 वर्ष में इन अनमैन क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया।
0: प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3

0: तीन नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधान नगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता BNS के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता।
0: श्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में कहा कि पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित है।
2: मैं बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख, जैन शरणार्थियों को वादा कर जाता हूँ कि 6 माह में आप सभी को हम नागरिकता दे देंगे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अपने सारे अधिकार बंगाल सरकार के 8 कलेक्टरों को दे दिए हैं। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर पश्चिम बंगाल से निकालने का मैं फिर से एक बार बंगाल की जनता को वादा करना चाहता हूँ।
0: गृह मंत्री ने कहा कि अवैध प्रवासन कतई बर्दाश्त न करने की नीति जारी रहेगी और अवैध प्रवासियों को पहचानने, नाम हटाने और निर्वासित करने की प्रक्रिया सख्ती से लागू की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि हर अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। उन्होंने कहा कि जनसांख्यिकी बदलाव को भी सख्ती से रोका जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी संख्या में उपस्थित कॉलेज, विश्वविद्यालय तथा कानून के विद्यार्थियों तथा अन्य नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि 3 नए कानूनों से देश व राज्य की जनता और अधिक सुरक्षित होगी। उन्होंने आगे कहा कि जुलाई 2024 से ही देश में यह कानून लागू हो गया था, परंतु विगत की TMC की ममता सरकार ने इसे पूर्ण रूप से लागू होने नहीं दिया, परंतु भाजपा की सरकार आते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस कानून को पूर्ण रूप से लागू कर दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिलीगुड़ी से अशोक चौरसिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। रिपोर्ट।
4: सरकार चीनी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मंत्रालय ने पाया कि कुछ चीनी मिलों और व्यापारियों द्वारा जमाखोरी की वजह से भी चीनी की कीमतें बढ़ी हैं। सरकार ने 1 अगस्त से 30 नवंबर तक पूरे देश में चीनी व्यापारियों के लिए अधिकतम 400 टन का स्टॉक रखने की सीमा तय की है। इसके अलावा थोक उपभोक्ताओं को 1 सितंबर से 15 दिन की खपत से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने की इजाजत नहीं होगी। सरकार द्वारा राज्यों और चीनी मिलों को 15 अक्टूबर से पेराई शुरू करने की सलाह दी गई है। इससे अक्टूबर में चीनी का उत्पादन सामान्य 3 से 4 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 10 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिससे त्योहारों के मौसम में चीनी की उपलब्धता और बेहतर होगी। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वो स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना MPMS का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी। मंत्रालय ने योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। योजना का उद्देश्य उत्पादन का स्तर बढ़ाकर मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत और व्यापक बनाते हुए घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को सशक्त बनाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देश की स्थिति मजबूत करना है। इस योजना से भारतीय मोबाइल ब्रांड को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर सृजित करने में भी मदद मिलेगी। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना भारतीय स्वामित्व वाले मोबाइल ब्रांड, बौद्धिक संपदा और डिजाइन के विकास को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगी।
5: भारत में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट का इकोसिस्टम बहुत वाइड स्प्रेड हो गया है। MSME और फाइनल प्रोडक्ट्स के बीच में

0: पूरा एक वैल्यू चेन का रिलेशन है। उस तरीके से ये चीज डेवलप हो रही है। पीएलआई केवल एक प्योरली प्रोडक्शन बेस्ड था, इसमें डोमेस्टिक वैल्यू के लिए अलग से, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन के लिए अलग से रखा गया है, और साथ ही साथ इंडियन ब्रांड को डेवलप करने के लिए, इंडियन आईपी को डेवलप करने के लिए, इंडियन डिजाइन को डेवलप करने के लिए अलग से प्रोविजन रखे गए।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि योजना की अवधि के दौरान देश में मोबाइल फोन का संचयी उत्पादन करीब 39 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। श्री जायसवाल ने विदेशी ध्वज वाले दो जहाजों से संबंधित घटना के बारे में कहा कि सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है।
2: टू शिप्स विच आर फॉरेन फ्लैग,
3: दो जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं। उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
2: वी आर इन टच विद द अथॉरिटीज दैट आर कंसर्न्ड इन दिस।
1: विदेश मंत्रालय की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन की फिलिस्तीन यात्रा के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने फिलिस्तीन के विकास साझीदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रवक्ता ने बताया कि सुश्री रंगनाथन ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फिलिस्तीन सरकार को सौंपी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब डॉलर का है। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इन प्रस्तावों में सूचना प्रौद्योगिकी, एआई, संचार, विनिर्माण, औषधि, डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब कुछ खेल खबरें। FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज अम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल भारत ने पूल डी के अपने अंतिम मैच में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलकर दूसरे दौर में प्रवेश किया था। भारतीय महिला पहलवान काजल ढोचक ने लगातार दूसरी बार अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में काजल ने फाइनल में चीन की जिंगरू सून को 7-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। 72 किलोग्राम वर्ग में भारत की तनु शर्मा और 62 किलोग्राम वर्ग में सविता ने रजत पदक अपने नाम किया। 68 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक के लिए फाइनल में भारत की मानसी लाथेर का मुकाबला चीन की चेंग लिंग से होगा और 59 किलोग्राम वर्ग के रैपिचेस राउंड में कोमल स्पेन की रोजा मोलिना के साथ खेलेंगी। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस जीत के साथ इस जोड़ी ने भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर दिया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित भारत के उत्तर पूर्वी भागों में भी इस महीने की 24 तारीख तक तेज बारिश की आशंका है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल।

0: सोमवार।
1: सेंसेक्स 3 अंक की बढ़त के साथ 77,541 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 20 अंक की तेजी दर्ज करता हुआ 24,252 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में लगभग सपाट रहते हुए 95.71 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a global bright spot for growth amid concerns over global growth and weaponization of resources. Home Minister Amit Shah reiterates government's commitment to deport every illegal immigrant from the country. Government assures availability of adequate sugar stocks to meet domestic demand. Union Minister Ashwani Vaishnav launches mobile phone manufacturing scheme with outlay of over 62,000 crore rupees to enhance domestic supply chain and global competitiveness. Health and Family Welfare Minister JP Nadda reviews situation and preparedness for H1N1 influenza in the country. And in Hockey World Cup, Indian women's team to take on the Netherlands in the second pool phase match. Prime Minister Narendra Modi has said India has been seen as a bright spot of growth throughout the globe, even as the world has many concerns regarding growth and resources are getting weaponized. Addressing the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi this evening, the Prime Minister said India continues to take several steps to ensure continued growth momentum and reforms are commitment of his government.
3: Duniya ne bada bhayankar ek roop dekha hai in dino. Resources ka weaponization ho raha, avishwas ka vatavaran vishwa ke liye anek nayi chunautiyan lekar ke aa raha. Lekin aise samay mein bhi duniya Bharat ko growth aur hope ke ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
2: The Prime Minister said India has moved away from production-linked punishment model during earlier governments to production-linked incentives now. He alleged it was a policy of earlier regimes to keep people in scarcity so that they beg before the government for even basic needs. Mr. Modi said license raj of earlier governments was used to increase unemployment while his government's production-linked incentive model creating opportunities. We now go over live to the Prime Minister's address.
3: Focus कर पा रहे हैं, साथियों, politics में अक्सर वही फैसले headlines बनते हैं जिनका असर आज दिखाई दे, यानी उसकी उम्र 24 घंटे हो। पहले की सरकारों ने इलेक्शन सामने देखकर भी घोषणा करने का फॉर्मूला अपनाया, लेकिन ऐसी घोषणाओं से देश नहीं बदला। देश बदलने वाले फैसले वो होते हैं जिनका प्रभाव जमीन पर दिखे, जो वर्तमान और भविष्य दोनों को ध्यान में रख करके लिए गए होने चाहिए। साथियों, पीएम कुसुम योजना और पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना इसका बहुत बड़ा यूनिक एग्जाम्पल है।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में गंगा जमुना फिल्म का गाना, गीतकार थे शकील बदायूनी और संगीतकार नौशाद। हमारी अगली पेशकश लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में मुग़ल-ए-आज़म फिल्म से, गीतकार हैं शकील बदायूनी और संगीतकार नौशाद।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
2: करो वादा,
4: हाँ जी वादा।
5: और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मन्ना डे की आवाज में वक्त फिल्म से, गीतकार साहिर लुधियानवी और संगीतकार रवि।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: यशोदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोदा आ गई सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: वाह।
4: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार। आप सभी को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में जिक्र है जानी मानी अभिनेत्री अरुणा ईरानी का।

अभिनेत्री अरुणा ईरानी की फिल्मों में शुरुआत 1961 की फिल्म गंगा जमुना से हुई थी, जिसमें उन्होंने अभिनेत्री आजरा के बचपन की भूमिका अदा की थी। गंगा जमुना फिल्म यदि दोस्तों आपने देखी हो तो आपको याद होगा ये गीत भी, जिसमें अरुणा ईरानी स्कूल के गुरुजी और बच्चों के समूह में पर्दे पर गीत गाती दिखाई देती हैं।

मुंबई में जन्मी अरुणा ईरानी के पिता फरीदुन ईरानी नाटक मंडली चलाते थे और उनकी माँ सगुना अभिनेत्री थीं। परिवार के हालात ठीक नहीं थे, इसलिए अरुणा जी को बचपन में पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी। जिम्मेदारी का एहसास उन्हें हो चुका था क्योंकि 8 भाई बहनों में वो सबसे बड़ी थीं। इसलिए बचपन से ही फिल्मों में काम करना उनका आर्थिक सहारा बन चुका था।

0: 60 के दशक में कुछ फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम करने के बाद 1967 में फिल्म फर्ज में उन्हें अच्छा मौका मिला जंपिंग जैक जीतेंद्र के साथ।
1: मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे

दोस्तों, अरुणा ईरानी को बतौर चरित्र अभिनेत्री पहचाना जाता है, लेकिन उन्होंने कई फिल्मों में बेहतरीन सहायक भूमिकाओं में भी काम किया है और कमाल का काम किया है। कई बार तो उन्होंने खलनायिका बनकर भी पर्दे पर एक नया ही मंजर पैदा किया है। अभिनय के अलावा पर्दे पर उन्हें बेहतरीन डांसर भी माना जाता रहा है। उनके हिस्से में कई मशहूर गाने आए हैं जो सुनते ही हमारी जुबान पर चढ़ जाते हैं। 1971 की फिल्म कारवा में अरुणा जी का काम बेहद सराहा गया और चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी गीत के अलावा ये गीत भी अरुणा जी के डांस की वजह से काफी लोकप्रिय हुआ था।

जहां आरा आया सावन झूम के, और उपकार कुछ ऐसी फिल्में हैं जिसमें अरुणा जी ने अलग अलग चरित्रों को पर्दे पर उभारा और लोगों के दिलों में जगह बनाई। 1972 में अरुणा ईरानी के फिल्मी जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया। अभिनेता महमूद ने उन्हें तत्कालीन संघर्षशील कलाकार अमिताभ बच्चन के साथ बतौर हीरोइन मौका दिया और वो फिल्म थी बॉम्बे टू गोवा।

हालांकि ये भी सच है कि कई फिल्मों में सहायक भूमिका निभाते हुए भी वो हीरोइन पर भारी पड़ जाती थी और लोग अरुणा ईरानी को पसंद भी करते थे। 1973 में राज कपूर साहब की फिल्म बॉबी में छोटी लेकिन एक दिलचस्प भूमिका में उन्होंने अपनी खास छाप छोड़ी थी।

शुरुआत में अरुणा ईरानी को लेकर फिल्मकारों की सोच ये रही कि उनके रोल में कुछ नकारात्मकता का पुट बरकरार रहे, यानी उन्हें वैंप बना दिया जाए। लेकिन रफ्ता रफ्ता ये सोच बदली और अरुणा जी ने हिंदी फिल्मों में लगातार भूमिकाएं करके एक सशक्त चरित्र और सहायक भूमिकाएं निभाने वाली बेहतरीन अभिनेत्री का दर्जा हासिल किया। अभिनेता महमूद के साथ तो उनकी कई फिल्में आईं। फिल्म औलाद का ये गीत हम कैसे भुला सकते हैं।

अपनी अदाकारी के साथ साथ अरुणा ईरानी के साथ खूबी ये रही दोस्तों कि उन पर कई हिट सुपरहिट गाने फिल्माए गए हैं जो हरदम हमें बहलाते हैं, फुसलाते हैं। द ट्रेन फिल्म का ये गाना

कुमार गौरव की फिल्म आई थी लव स्टोरी, और फिल्म में एक सीन के दौरान उन्हें लुभाती पर्दे पर अरुणा ईरानी ये गीत भी गा चुकी हैं।

इन गीतों और फिल्मों के अलावा हम जोली, देवी, नया जमाना, गरम मसाला, दो फूल, मिली, लैला मजनू, शालीमार, कुर्बानी, दयावान, अंगूर, फकीरा, सरगम, रेड रोज, रॉकी और बेटा जैसी फिल्मों में अरुणा ईरानी ने बेहतरीन अभिनय की छाप छोड़ी है। दोस्तों, अरुणा जी को फिल्म फेयर के अवार्ड्स के लिए कई बार नॉमिनेट किया गया, लेकिन 1984 की फिल्म आई थी पेट प्यार और पाप और इसके बाद 1992 की फिल्म बेटा के लिए भी अरुणा ईरानी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार

1980 के उत्तरार्ध से लेकर 90 के दशक तक तमाम फिल्मों में अरुणा ईरानी ने माँ की भूमिका को अपनाकर अपनी अदाकारी को एक नया आयाम दिया। इसी दौरान कई फिल्मों में कॉमेडी का तड़का भी लगाया। लोगों ने उनके इस अंदाज को भी खूब पसंद किया।

0: दोस्तों 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम करने के बाद अरुणा ईरानी ने अपनी एक्टिंग के साथ बहुत ही गहरा संबंध बना लिया। इमोशनल और परिपक्व हो चुका था उनका अभिनय के साथ ये ताल्लुक। कुछ मराठी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है। सन 2000 से उन्होंने टीवी धारावाहिकों में भी एक्टिंग की शुरुआत की है, जो लगातार जारी है। कई सीरियल्स को उन्होंने प्रोड्यूस भी किया है और बड़े और छोटे दोनों ही पर्दों पर अरुणा जी वर्तमान में भी सक्रिय हैं। फिल्म निर्देशक इंद्र कुमार उनके भाई हैं और अरुणा जी के पति हैं फिल्मकार कुकु कोहली। हालांकि सन 2012 में अरुणा जी को 57वें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। लेकिन दोस्तों, अरुणा ईरानी को आज भी फिल्मों से और फिल्म देखने वालों से बेहद प्यार है, बहुत ही बेशुमार मोहब्बत है। हम उनके स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं और उन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि वो हमेशा ही सक्रिय बनी रहें।
1: हाँ।

0: तो दोस्तों ये था आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था जानी मानी अभिनेत्री अरुणा ईरानी पर, और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

छाया गीत सुनने वालों को अनुराधा उपाध्याय का प्यार भरा नमस्कार। जिंदगी के इस चढ़ते उतरते सफर में अचानक किसी का यूं मिल जाना कि लगे जैसे न जाने कितनी सदियों पुराना है ये रिश्ता हमारा। दुनिया की भीड़ में इधर हटकर उधर हटकर ये नजरें बस उस एक चेहरे को देखना चाहती हैं, वो शख्स जो जाना पहचाना लगता है। मिला तो बस अभी अभी, फिर क्यों एक अजनबी सी कशिश होती है। लफ्जों से भी ना बोला अब तक वो, बस आंखों से कुछ बयां होता है। दो जोड़ी आंखें जब मिलती हैं तो वक्त थम सा जाता है। हम हैं यहां इस वक्त, पर यादें एक जहां घूम आती हैं। हां, यही वो चेहरा है जिसे तलाश रही थी अब तक मैं। यही तो चेहरा है जिससे नूर बरसता है, वो चेहरा जो किसी चांद से कम नहीं चमकता।

जिसका साथ हो गुनगुनी धूप सा, आंखों में सुबह शाम उसी का ख्वाब उतर आता है, पास ना होते हुए भी हर पल उसका ख्याल घेरे रहता है, जब वो ना हो तो इंतजार उसका, जब कभी करीब पाऊं तो वो मौन हमारा, सचमुच कितना प्यारा है ये साथ तुम्हारा। वो जो हम कुछ कहते कहते एक ही शब्द पर ठहर जाते हैं ना, थोड़ा रुक जाते हैं और मुस्कुरा देते हैं, बस वो एक पल मोहब्बत में घुला हो जैसे हम एक दूसरे की बाहों में सिमट गए हो जैसे।

कभी सोचा है मोहब्बत की सबसे खूबसूरत बात क्या होती है? सबसे प्यारा है उसका एहसास, वो एहसास जो किसी की हंसी सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कान ला दे, उसे उदास देखकर आपकी आंखें नम हो जाएं, लव्स जहां चुप हो जाएं, उसकी खामोशी पूरी दास्तां कह जाए, वो उसकी प्रतीक्षा जिसमें शिकायत कम और दुआएं ज्यादा हो, वो आंखें जो अपने आप में समाए हैं मेरा पूरा संसार, जिसके बस पास आते ही मौसम बदल जाते हैं।

अंतराल के इस पार आप सबका एक बार फिर स्वागत है। उस गगन पर चमकते चांद को देखा है कभी गौर से? तुम हो वो चांद मेरे लिए। चांद तो एक है और तारे अनगिनत। इसीलिए तो चांद इतराता है, इठलाता है। उस चांद के सबसे करीब वो जो एक छोटा सा सितारा है ना, बस मैं वो सितारा बनना चाहती हूं तुम्हारे सबसे करीब और सबसे खास।

तुम्हारी बाहों में आते ही जीवन की सारी थकावट बिखर जाती है, बेचैन सांसों को चैन मिल जाता है, हसरतें सर उठाती हैं, सपने महक जाते हैं, वक्त ठहर जाता है, मन प्यार की धुली चांदनी में शीतल हो उठता है। सच मानो सबसे महफूज जगह तुम्हारी बाहों की पनाह है मेरे।

तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत आदत हो। तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरी सबसे प्यारी याद है। जैसे पहली बारिश याद रखती है सूखी जमीन को, जैसे पहला सपना याद रहता है मासूम से मन को, तुम रच बस गए हो मेरी रूह में। सुकून हो तुम मेरा, बसेरा हो मेरा।

आज का छाया गीत संपन्न करने के लिए अनुराधा उपाध्याय को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

0: सुनिए एक खुशखबरी। कहिए
1: ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
1: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
2: वादा,
3: हाँ जी वादा।
0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
4: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी

0: गांव में घटित होता है शाम को बारूद में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती।
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
3: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहां, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
2: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
4: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अभी हम रिले कर रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी।

0: का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। समाचारों को हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में विकास और संसाधनों को लेकर कई चिंताओं के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विकास के उज्ज्वल उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। नई दिल्ली में आज शाम इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड्स लीडर फोरम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत विकास की गति बनाए रखने के लिए लगातार कई कदम उठा रहा है और सुधारों के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों की नीति लोगों को अभाव में रखने की थी, ताकि वे बुनियादी जरूरतों के लिए भी सरकार के सामने हाथ फैलाने को मजबूर रहें। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार केवल नियमों में बदलाव नहीं कर रही, बल्कि नियमों से जुड़ी पूरी नीति में बदलाव ला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाला नशा मुक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है, जब तक घुसपैठ नहीं रोकती, ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है, ना भारत सुरक्षित रह सकता।
1: श्री शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में कहा कि पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है, जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वह स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पुरस्कार के लिए चुने गए 48 शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से हैं। इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल हैं। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर

0: For the semi-finals, India trailed Netherlands 0-1 at half-time. And that is the end of this news bulletin.
1: समाचारों को हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। समय हो चला है आज के सभा की समाप्ति का। कल प्रातः 5:53 पर हम पुनः आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। जय हिंद।